0: मत छोड़िए, स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी ऑल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रोस्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.

0: अबे
1: डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के। दिस इज इपी द हिपी बैक इन द हाउस एंड यू आर लिसनिंग टू माय शो एन इवनिंग इन डालस ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन ऑन अ ट्यूसडे इवनिंग। आई होप यू हैड अ वंडरफुल ट्यूसडे। आई होप ट्यूसडे को आपने अपने जितने भी गोल्स थे या जो भी थे सारे अचीव किए हैं। And I hope you didn't get stuck in too much of traffic at this hour because I know traffic is brutal. मैं तो थोड़ा ट्रैफिक में फंस के आई हूँ लेकिन मैं फिर भी आ गई सिर्फ आप लोगों के लिए क्योंकि आप मेरे बेस्टीज हैं। तो इसीलिए without further ado, let's get the show on.

भाई लाइफ में ना स्ट्रेस नहीं लेने का, क्योंकि पता है स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस से हमें नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है तो मेरी तरह उल्टी सीधे आप सपने देखोगे, और फिर सपने तो नहीं, खैर आजकल तो मेरे सपने भी नहीं आते, बट मेरी तरह फिर आपको नींद नहीं आएगी, रात में जगे रहोगे, फिर उसको काउंटर एक्ट करने के लिए फिर हम बड़ी सारी चीज़ें करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत टाइम पहले, आपको याद होगा शायद, वन आई वॉज लाइक मैं तो रात को ईयरप्लग लगा के सोती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर वाले जो पड़ोसी हैं वो पता नहीं सुबह 5:30 बजे उठ के कौन सा तांडव नाच रहे होते हैं, एंड इट इज़ सो अनोइंग, पूरी मेरी नींद खराब हो जाती है। तो भाई स्कूल शुरू होने वाला है, वो दोबारा शुरू हो गया है, अभी समर में वो बंद हो गया था, लेकिन कल से फिर से दोबारा से तांडव शुरू हो रहा है 5:30 बजे। लेकिन मुझे याद है जब मैंने बोला था, याद है आपको, कि मैं ईयरप्लग्स लगा के सोती हूँ, वहाँ पे आप ही में से किसी ने मुझे कॉल बैक करके बोला कि प्लीज़ वी लाइक यू सो मच, प्लीज़ आप ईयरप्लग्स लगा के मत सोइए, क्योंकि अगर आप ईयरप्लग्स लगा के सोंगे कभी कहीं आग वाग लग गई तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स गोना ब्लॉक आउट ऑल द नॉइज़, फिर आपको नहीं पता चलेगा कोई नॉक भी कर रहा होगा, कुछ ज़रूरी हो सकता है, यू नो इट्स वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। तो मैंने कहा हाँ भाई वो तो सही है। पता है वाई आई एम शेयरिंग दिस इज़ बिकॉज आपने देखा न्यूज़ में 2 दिन पहले बिशप आर्ट्स में दिस अपार्टमेंट बिल्डिंग एब्सोल्यूटली बर्न डाउन, तो थैंक गॉड उन्होंने जो मुझे ये चीज़ बोली कि भाई कान में ईयरप्लग्स मत लगाना, बी इन योर होश एंड हवास, ताकि इस तरह की अगर चीज़ें हों देन वी कैन यू नो सेव आर सेल्व्स फ्रॉम एनी डैमेज इन द फ्यूचर, ठीक है, एनी लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स। तो गाइज प्लीज़ डोंट यूज़ ईयरप्लग्स लाइक मी, आई ऑल्सो डोंट यूज़ देम एनी मोर, बट भाई आग तो लगती रहती है यार, डैलस में क्या करें क्या करें।

भाई आग तो बिशप आर्ट्स में लगी है, अपार्टमेंट बिल्डिंग पूरी जल गई, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आप तो सेफ हैं। आई होप हमारी जनता में से कोई उस बिशप आर्ट्स की उस बिल्डिंग में नहीं थे, बिकॉज अदरवाइज हम तो बड़ा दुखी हो जाएंगे। आपको मस्त रहना चाहिए क्योंकि हमारे साथ ये कुछ नहीं हो रहा है। हाउएवर आई नो इस गर्मी में थोड़ा मस्त रहना मुश्किल है, लेकिन अगर आपके इस गर्मी में कभी, कई बार क्या होता है ना, गर्मी में लोग वैसे ही दे आर ऑन द एज, तो अगर आप इस एज में रहते हैं और कई बार अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या ट्रक एक्सीडेंट हो गया, और इफ़ यू हैड अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट अटर्नी ओमर ख्वाजा। लेट हिम हैंडल द लीगल बैटल वाइल यू कैन फोकस ऑन हीलिंग। ही विल फाइट फॉर द कॉम्पनसेशन दैट यू गाइज आर एंटाइटल्ड टू, एंड यू पे नथिंग अनलेस योर केस इज एक्चुअली वन। तो भाई इट्स अ विन विन सिचुएशन। कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomer.com फॉर योर फ्री कंसल्टेशन। ओके, दिस पार्ट ऑफ द सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा। वेल आई डोंट नो हुज वेयर द ट्रैफिक अपडेट्स आर, वेयर द ट्रैफिक इज, बट आई विल टेल यू, इफ यू आर टेकिंग द 75, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन I-75। दैट्स द वन दैट आई टुक, एंड ट्राई टू अवॉइड इट इफ यू कैन।

0: इनकी तो लिप्स लकी हो गई, लेकिन अगर आपके वीजा में लक नहीं निकला है तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स, बिकॉज वीजा एंड ऑल दैट का चक्कर, वेदर इट्स H1B, F1, L1, अ लॉट ऑफ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लक, स्पेशली अगर लॉटरी की बात करें तो डेफिनेटली. और अगर नहीं निकला है आपका लॉटरी में, देन यू नीड अटर्नी, यू नीड एन इमिग्रेशन लॉयर, एंड शी कैन हेल्प यू फाइंड योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी ऑफिस ऑल्सो. Law offices of Seema Mehta can help. Attorney Seema Mehta and her experienced team, they specialize in immigration law, including EB-5, investor visas, and much more, perm labor certification and US citizenship. For more
1: information... At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges. Plus, zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
3: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
2: सच में? सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
8: ये तारा वो तारा हर तारा.
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
9: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
10: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं.
9: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
10: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
9: इंडिया तक.
10: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
4: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
11: होको. अरे बस भी करो यार.
12: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
11: नाम होको हो या होचो, क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
4: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको, अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
13: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

भाई इश्क में तो बहुत लोग खो जाते हैं, लेकिन जो मैं बोल रही थी ब्रेक में जाने से पहले, अगर आपको वीज़ा हेल्प चाहिए देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट info@seemamehtalawfirm.com. ठीक है, शी विल हेल्प यू आउट विद वीज़ा. अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के कहीं और चली गई है एंड यू नो यू आर लुकिंग टू गेट योर ग्रीन कार्ड और वट एवर एंड सेटल डाउन, मे बी फाइंड अनदर गर्लफ्रेंड ओवर हियर, आई डोंट नो, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स.

And guys, we are back. Yes, you're still listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. आज हम खेलेंगे हमारा गिव अवे गेम एट द सेम टाइम एज ऑलवेज अराउंड 8:05. लेकिन आज का होगा कंप्लीट द आइकॉनिक डायलॉग. दैट्स राइट गाइज. तो पता है आज मैंने मेरे फीड पे आया आई सॉ दिस लाइक रियली यूनिक केस ऑफ दिस 16 साल का बच्चा. ठीक है, इंडिया में ये बच्चा है. तो वो ना सारे दिन भर तालाब में ही डूबा रहता है. मतलब ही इज इन द पॉन्ड, अपने गांव के लोकल पॉन्ड में सारे दिन वो रहता है. तो क्यों रहता है वो सारे दिन? क्योंकि वो जैसे ही अपनी पानी से निकलता है एंड ही स्टेप्स ऑन द ग्राउंड, उसकी स्किन बर्न होने लग जाती है. मतलब हिज स्किन गेट्स दीज लाइक बर्न्स एंड रैशेस विद इन मिनट्स ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ द वाटर. और डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि भैया तुम पानी से बाहर निकलो, क्योंकि पानी में इतना रहोगे तो स्किन सॉफ्ट हो जाती है. स्किन सॉफ्ट होती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है. इट्स लाइक व्हाट यू कॉल दिस, इट्स लाइक अ साइकिल. भाई वो पानी में नहीं रहेगा तो उसकी स्किन जल जाएगी, पानी में रहेगा तो उसकी स्किन पे इन्फेक्शन आ जाएगा. और वो सब कुछ पानी में ही करता है, खाना भी पानी में खाता है. मतलब ही डज नॉट स्टेप आउट ऑफ द वाटर. तो सम डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सम फिजिशियंस फिगर्ड आउट कि भाई इसको टेस्ट करना ज़रूरी बनता है. सो दे फ्लू हिम ऑल द वे टू मुंबई एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि चल क्या रहा है इसके साथ. व्हाट अ यूनिक केस. हैव यू एवर सीन एनीथिंग लाइक दैट? आई हैव नेवर सीन और इवन हर्ड एनीथिंग लाइक दैट. दिस इज माई फर्स्ट टाइम. बट इफ यू हैव देन यू कैन कॉल मी एंड टेल मी. तब तक के लिए आप ये गाना एंजॉय करिए.

Guys, Pakistan Association of North Texas, get ready for a spectacular celebration. North Texas, Pakistan Society of North Texas is presenting Qued Mela 2026, a celebration of heritage, culture and community. Aap enjoy kar sakte hain live music, delicious food, shopping and cultural festivities and family fun for all ages. Live performances by Raga Boys. Exactly, guys. तो भूलना मत, सैटरडे 22nd अगस्त को है फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोक रैंच इन पार्कर टेक्सस. डोर्स ओपन एट 2 PM एंड सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इट इज एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री. एग्जैक्टली. तो अपनी फैमिली को लेके जाइए, दोस्तों को लेके जाइए एंड कम सेलिब्रेट क्वेद मेला 2026. एंड ऑफकोर्स Fun Asia is the media partner for this. तो इसी की खुशी में मैं आपको बड़ा अच्छा सा प्यारा सा one of my favorite songs from this incredible Pakistani artist हसन जहांगीर सुना रही हूँ. ये गाना आपको पता ही है, हवा हवा. और हम डायलस की गर्मी में वी कैन ओनली वी रिक्वेस्ट ऊपर वाले से कि भैया यहाँ भी थोड़ी हवा और बारिश ला दो सो दैट वी कैन ऑल्सो इन्जॉय इट. लेकिन आप तब तक के लिए ये गाना इन्जॉय करिए.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route, rerouting.
4: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
5: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
4: क्यों?
5: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
4: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो.
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
7: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाय, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO अपॉर्चुनिटी and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: जीत उनकी होती है, जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
9: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
10: मेंशन फन एशिया एंड गेट 50% off on tryout session.
11: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com. मोर इन्फो 2148692668. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

0: भाई दुनिया में तो बहुत झोल हैं, ये तो आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन कई बार आकाश वो झोल चिकन के साथ होता है, चिकन का झोल या माछिर झोल। आई एम तो बंगाली तो वी मेक आवर झोल्स अ लिटिल बिट डिफरेंटली, नॉट दैट काइंड ऑफ झोल, बट इट्स अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ अ झोल दैट वी लाइक टू डू। तो गाइज विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू आवर गिव अवे। आज का हमारा गिव अवे है फ्रॉम फूडिस्तान। आपने नाम तो सुना ही होगा, इन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बहुत सारे स्थान होते हैं, लेकिन काश ऐसा कंट्री भी होता जहाँ सिर्फ फूड ही फूड मिलता, लाइक इमेजिन। बट कोई बात नहीं, कंट्री तो नहीं है, ग्रोसरी स्टोर ज़रूर है, एंड इट इज़ कॉल्ड फूडिस्तान। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज, हलाल मेड, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी, वाह, लाइव गोलगप्पे, फ्रेश गन्ने का जूस, केटरिंग सर्विसेज एंड इवन एन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस, यू नीड टू विजिट फूडिस्तान इन ऑबरी। दे ब्रिंग एवरीथिंग देसी ऑल इन वन प्लेस, प्लस दे ऑफर द लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज एंड कंपेयर टू अदर स्टोर्स। सो गाइज दैट्स अ बिग रीजन वाई यू शुड प्रॉब्ली गो देयर। एंड दे गिव फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $30 विद इन 5 miles। ठीक है, अगर आप फनेशिया मैंशन करेंगे फूडिस्तान पे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ओह, वी ऑल लव टू सेव अ लिटिल मनीज, डोंट वी? एंड लेट्स गो इनटू आवर गिव अवे। तो आप क्या जीत सकते हैं आज के गिव अवे में? यू कैन गेट वन फ्री डिश फ्रॉम द वाइब रेस्टोरेंट, व्हिच इज एन अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट इन साइड फूडिस्तान। तो भाई फूडिस्तान सिर्फ इज नॉट जस्ट फॉर ग्रोसरीज, इट्स फॉर लाइक अदर प्री, लाइक फुल्ली कुक्ड खाना ऑल्सो, नॉट जस्ट प्री कुक्ड खाना, इट्स पोस्ट कुक्ड खाना ऑल्सो। सो यू मस्ट गो एंड चेक इट आउट एंड यू कैन विन अ फ्री डिश विद आवर गिव अवे। तो खेले, माई नंबर इज 9722355555। अभी तक तो आपको याद ही हो गया होगा। और हम खेलते हैं, आज का हमारा गेम है कंप्लीट द आइकॉनिक डायलॉग। तो कौन सा डायलॉग है भाई? आज का डायलॉग है फ्रॉम द अमेजिंग मूवी देवदास। मतलब देवदास दुखियारी हो के हम डायलॉग तो क्यों नहीं बोलेंगे, मतलब इतना आइकॉनिक डायलॉग लिखा था तो क्यों नहीं। तो मैं पहली लाइन बोलूंगी, आपको पूरा उसका डायलॉग कंप्लीट करना है। उसमें 4-5 लाइनें हैं, ठीक है, और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बोलना है। तो अगर आपको आंसर पता है तो वेरी गुड, और अगर आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप गूगल भी कर सकते हैं। मैंने आपको चीट कोड दे दिया ऑलरेडी, लेकिन उसमें भी गड़बड़ किया तो सॉरी ब्रो, आप नेक्स्ट कॉलर के पास हम जाएंगे। ठीक है, तो द डायलॉग स्टार्ट्स लाइक दिस, कोर्ट ओपन्स एंड वी से, और थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ बोलना है बाय द वे। ठीक है, डायलॉग ऐसे नहीं बाबूजी ऐसे करके हम रोबोट की तरह नहीं बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे। तो चलो खेलें, मैं बोलती हूँ पहला लाइन, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, बाकी का आप कंप्लीट करो। ठीक है, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, फिर आप क्या बोलोगे? कंप्लीट द डायलॉग 9722355555। कम ऑन, जब तक हमारे पास कॉल नहीं आ रही है तब तक हम एक गाना लगाते हैं, एंड देन जब कॉल आ जाएगी तब हम गाना थोड़ा पॉज कर देंगे। आ गया कॉल, दैट वाज प्रीटी फास्ट एक्चुअली। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हाय,
1: हेलो,
0: कैन यू हियर मी?
1: यस।
0: ओके, गो फॉर इट। अब पहले तो अपना नाम बताइए एक्चुअली।
1: नाम विशाख।
0: विशाल,
1: विशाख,
0: विशाख, ओके विशाख, गो फॉर इट। पूरा डायलॉग बोलना है, हाँ, वर्ड टू वर्ड।
1: आई विल ट्राई। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा जब वो कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो।
0: क्या बात है विशाख, आप जीत चुके हैं आज का गिव अवे, लेकिन बड़ा डेड होके बोला यार, थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ भी बोलो, मतलब एक और ट्राई, चलो एक और ट्राई। वैसे गिव अवे तो मैं आपको दे ही रही हूँ क्योंकि आपने पहली कॉल करी, लेकिन थोड़े ड्रामे के साथ बोलना है, इतना ड्रामेटिक डायलॉग है, लेट्स गो फॉर इट।
1: बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा जब वो कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो।
0: अरे वाह, शानदार प्रदर्शन, चलो तालियां हो जाते हैं आपके लिए। मेरा तालियों वाला ऑडियो का ये रहा गया, क्या बात है भाई। शाहरुख खान की नौकरी तो अब खतरे में है, क्योंकि विशाख ने इतने ड्रामेटिक अंदाज में ये डायलॉग बोला है। आप ही को अगली बार कास्ट करेंगे देवदास 2 में, ठीक है? तो विशाख आप लाइन पे बने रहिए, आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग एंड देन आई वांट टेक योर इन्फॉर्मेशन। ओके
1: ओके
0: ओके गाइस, आप ये गाना एंजॉय करिए, वी विल बी राइट बैक।

मेरी, कितना प्यारा गाना है, पर वो गाना अभी मैं नहीं बजाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ, सोनू निगम इज कमिंग टू डैलस। आई थिंक एवरीबडी हैज रियलाइज दैट डैलस इज द प्लेस टू गो, क्योंकि सारी देसी जनता डैलस में ही रहती है। एग्जैक्टली, तो इसीलिए इतने सारे अमेजिंग अमेजिंग कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं डैलस में, और हो भी रहे हैं पिछले एक साल से। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आंखें खोलो जनता, एंड गो टू सम ऑफ दीज इनक्रेडिबल कॉन्सर्ट्स दैट आर हैपनिंग अराउंड डैलस। द वन एंड ओनली सोनू निगम इज कमिंग लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन September 26, 8:30 PM। टिकट्स आर ऑलरेडी ऑन सेल बिकॉज इट्स लाइक जस्ट अबाउट अ मंथ अवे, एंड इट्स गोइंग टू बी एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। योर फेवरेट सॉन्ग्स, दैट आइकॉनिक वॉइस, एवरीथिंग इज लाइव, ऑल ऑफ दैट इज लाइव। इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग शो बिकॉज आई हैव सीन हिम परफॉर्म लाइव एंड इट इज क्वाइट अमेजिंग। ओके, टिकट्स आर अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 855-360-SHOWS, या फिर यू कैन ऑल्सो जस्ट स्ट्रेट अवे गो ऑन टू टिकट मास्टर एंड बुक द टिकट्स। ओके, रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव, दैट्स वॉट हिज कॉन्सर्ट इज कॉल्ड। तो इसीलिए इसी खुशी में एक सोनू निगम का गाना, इट्स दिस वन्स अ लिटिल बिट हटके, क्योंकि आपने शायद सुना है शायद नहीं सुना है। इन माई ओपिनियन दिस इज, वैसे सोनू निगम के तो सारे गाने बहुत अच्छे हैं, आई मीन ऑल द वे, लाइक द 30 years ऑफ करियर दैट ही इज हैड, आई गेस 30, 25, आई डोंट नो, वी कैन करेक्ट मी लेटर, लेकिन दिस इज सो कूल। जब मैंने ये गाना सुना था आई वॉज लाइक ब्लोन अवे बिकॉज इट मिक्सेज इंडियन क्लासिकल विद जैज एंड इट हैज लाइक दिस रियली कूल बेस लाइन एंड आई वॉज लाइक वाओ। कभी मेरे पास इतनी नॉलेज होगी तो मैं भी ऐसे गाने बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास इतनी नॉलेज एक्चुअली है आज की डेट में, तो है, मैंने इतनी पढ़ाई करी है म्यूजिक को लेके, मे बी आई कैन एक्चुअली मेक अ सॉन्ग लाइक दिस, बट आई डोंट थिंक आई कैन सिंग लाइक सोनू निगम बिकॉज देयर इज ओनली वन सोनू निगम। पर आप गाना इंजॉय कर सकते हैं, क्यों नहीं।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: जिंदगी एक रंगमंच है,
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
3: वेट, इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं हीरोइन हूं.
5: आई एम सो स्ट्रेस्ड. क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
9: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं.
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं.
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं.
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTechs, your growth, our strategy.
0: AG FinTechs, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
12: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: Dallas, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए.
14: Pakistan Society of North Texas presents Kayad Mela 2026, a tribute to our heritage and a celebration for all. Enjoy live music, delicious food, shopping, cultural activities, and family fun for every age.
15: Live performance by Raga Boys.
14: Saturday, August 22nd, from 3 p.m. to 11:45 p.m. at South Fork Ranch in Parker, Texas. Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
15: Media partner, Fun Asia Network.
16: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

गाइज, आपको पता है ना, फ्लेवर लाउंज, वैसे डिनर टाइम तो हो चुका है. आई होप यू आर एंजॉयिंग योर डिनर. फ्लेवर लाउंज इज नाउ इन फ्रिस्को एंड सर्विंग इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलिशियस डिशेस, एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल, फ्रेश फ्लेवर्स, एंड यू विल कीप गोइंग बैक फॉर मोर. ऑल ऑफ दिस इज ओनली फॉर $24.99 पर पर्सन. दैट इज राइट गाइज, $25, and you can eat all the food that you can. Okay, enjoy the buffet from Saturday to Sunday, 12 PM to 3 PM. Saturday and Sunday, 12 PM to 3 PM. ऐसा नहीं है कि आप सैटरडे 12 बजे पहुंचो कि फिर संडे को 3 बजे निकलना. आई विश वैसा भी होता कुछ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा है नहीं. सो टेक योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेक योर वीकेंड डिलिशियस एट द फ्लेवर लाउंज, 5855 प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. द फ्लेवर लाउंज, गुड फूड एंड ग्रेट मेमोरीज. तो गाइज, कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट कॉकटेल टू, राइट? आपको याद है, वी वर हैविंग दैट डिस्कशन अबाउट कॉकटेल टू, अबाउट द कैरेक्टर्स. एंड आफ्टर सीइंग दैट मूवी आई वाज लाइक, यार ये तो मतलब द लेडीज इन दिस मूवी आर जस्ट फुल ऑफ रेड फ्लैग्स. एंड यू नो, मुझे शर्म नहीं आती है बोलने में. आई मीन, आई नो यू शुड ऑल्सो, यू शुड बी अ गर्ल्स गर्ल एंड सपोर्ट ऑल द गर्ल्स. गाइज, आई मीन, आई वुड सपोर्ट द गर्ल्स, बट समटाइम्स यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव एंड यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव परस्पेक्टिव विदाउट सपोर्टिंग द जेंडर रोल्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ठीक है, देर वॉज समथिंग सो रॉन्ग एंड दैट इज वाई आई थिंक दे मेड द मूवी ऑल्सो. इट वॉज अ लिटल बिट फ्रेश परस्पेक्टिव, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसी वाली कैरेक्टर्स नहीं दिखाते हैं. तो वी विल कंटिन्यू दैट डिस्कशन, बिकॉज कल जो मैं बोल रही थी, आई कुडंट फिनिश इट, वी रन आउट ऑफ टाइम. लेकिन आज हम उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस लिटिल बिट ऑफ गाना. तो स्टिक अराउंड एंड वी विल टॉक मोर अबाउट दैट.

भाई प्यार का तो पता नहीं, लेकिन एली तो हमारी पूरी रेड फ्लैग निकली। याद है हम एली की बात कर रहे थे, द सेकंड गर्ल कैरेक्टर हु इज नॉट द गर्लफ्रेंड, द फ्रेंड इन कॉकटेल 2। तो एली का जब कैरेक्टर आता है, यू थिंक लाइक अच्छा शी इज फ्री एंड दिस एंड दैट, लेकिन आई मीन थिंक अबाउट इट, आपकी ऐसी कौन सी दोस्त होगी एंड वुड यू इवन ट्रस्ट दैट फ्रेंड टुमारो? कि आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, ठीक है, आप अपनी फ्रेंड को बोल रहे हो गाइज मेरे बॉयफ्रेंड पे या मेरे पार्टनर या मेरे हस्बैंड, जो भी आपका पार्टनर है, उस पे डोरे डालो एंड लेट हिम फॉल फॉर यू एंड देन वी विल सी। और एली मतलब उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बोल के कुछ है कि नहीं, वो मजाक में कह रही है हाँ हाँ लेट्स ट्राई इट, इट्स गोना बी अ फन गेम। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? अगर मैं उसकी जगह होती मैं तो बोलती भाई नो थैंक यू, देर आर समथिंग नोन एज बाउंड्रीज एंड आई लव यू एज अ फ्रेंड एंड आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर माई फ्रेंड, और मैं किसी फ्रेंड के रिलेशनशिप के बीच में दरार नहीं डालूंगी। लेकिन वो तो खैर मेरी बात है, आई एम अ नाइस पर्सन, तो मैं अपने बारे में नहीं बात कर रही, यहाँ पे हम एली के बारे में बात करें हु हैज़ सीरियस इशूज व्हेन इट शी अग्रीड टू डू समथिंग लाइक दिस। आई एक्चुअली नो समबडी हु इज़ एग्जैक्टली लाइक एली, और अगर आपको उसकी उस लाइक रियल लाइफ पर्सन के बारे में जानना है तो आप सुनते रहिए। मे बी आई विल टेल यू अबाउट दैट स्टोरी विच इज़ वेरी सिमिलर टू एक्चुअली कॉकटेल 2 की स्टोरी। आई मीन इट्स ऑलमोस्ट लाइक किसी ने कॉकटेल 2 की स्टोरी कॉपी करके डाल दी, थोड़ा सा अलग है, लेकिन वी विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर दिस लिटल सॉन्ग। लेकिन वेन आई सॉ इट एंड आई वॉज लाइक गॉड एली गर्ल, आई मीन हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, और अपनी कुछ जिंदगी में कुछ पर्पस भी लाओ कि दूसरों के बॉयफ्रेंड पे तुम मजाक में डोरे डालने के लिए। चलो एक दिन के लिए ठीक है, यू नो जस्ट लाइक इफ यू आर प्लेइंग अ गेम और समथिंग लाइक दैट जस्ट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स देन इट्स मे बी ओके आई गेस, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट्स देन ओके देन एज वेल। हाउएवर इफ यू आर डूइंग इट लॉन्ग टर्म फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 3 or 4 days एंड देन वट काइंड ऑफ अ गर्ल आर यू कि तुम पहले तो मजाक में डोरे डाल रही हो, फिर तुम्हें प्यार हो गया, तुम पहुंच भी गई शादी तोड़ने, मतलब 2 दिन के प्यार में तुम्हें इतना ज्यादा प्यार हो गया कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुला के पहुंच गई उसकी शादी में, कहती है नहीं आई एम फाइटिंग ओवर योर हस्बैंड नाउ बिकॉज योर हस्बैंड शुड बी विद मी एंड नॉट यू बिकॉज आई एम अ बेटर फिट। लाइक कम ऑन, समटाइम्स पीपल स्पेंड ईयर्स गेटिंग टू नो ईच अदर, और तुम 2 दिन की जान में, मतलब 2 दिन की जान पहचान में तुम्हें लग गया ये तुम्हारा सोलमेट है, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ भी, मतलब एली का कैरेक्टर मतलब कुछ भी बनाया गया था। तो वी विल टॉक मोर अबाउट दिस आफ्टर दिस सॉन्ग।

भाई आपको पता है 28 को क्या है? डू यू नो और नॉट? 28 को तो मेरा जन्मदिन के अलावा रक्षाबंधन भी है। दिस रक्षाबंधन फन एशिया रेडियो एंड चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरॉन्ट वॉन्ट हियर योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विथ योर ब्रदर और सिस्टर। प्लीज सेंड अस अ 1 मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप एट नंबर 2148377147 और आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरॉन्ट। तो अगर भाई आपका साथी, आपका भाई या बहन बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ गया था, तो यही इसी प्राइस से आपको दोबारा मुलाकात हो जाएगी, मतलब दोबारा मिलान मिलन हो जाएगा आपका। मतलब इट्स नॉट कुंभ का मेला, लेकिन चौकटा कैसीनो तो है यार, इट्स मोर फन देन कुंभ का मेला। मतलब थोड़ा गैम्बलिंग शैम्बलिंग कर लेना, दारू वारू भी पी लेना, व्हाई नॉट। फॉर कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स चेक आउट फन एशियाज रेडियो, फन एशिया रेडियो सोशल मीडिया पेजेस, चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट एट ड्यूरॉन्ट वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। यू मस्ट बी 21 एंड ओल्डर टू पार्टिसिपेट, सो इफ यू आर लाइक 12 एंड 14 आई डोंट थिंक यू आर क्वालिफाइड। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, स्पेशली एट चौकटा कैसीनो।

0: पर गाइस कॉकटेल से ना हमें एक सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट मैंने जो एनालाइज किया, हमेशा हमें ये लगता है कि एनीथिंग रूटीन्ड जो है, जो बोरिंग चीज़ होती है, मतलब बोरिंग नहीं होती एग्जैक्टली, रूटीन इज़ नॉट बोरिंग. समटाइम्स वी गाइस आर नर्वस सिस्टम्स, वी आर सो यूज टू डीलिंग विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ऑन एन एवरी डे बेसिस, हमें लगता है कि हाई स्ट्रेस हाई एंग्जाइटी ही इज़ केमिस्ट्री. यू नो, जब आप किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हैं, किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हैं, इट्स ऑब्वियसली एक्साइटिंग बिकॉज आप किसी को जानते नहीं हो, एंड दिस न्यू एनर्जी कम्स इन, एंड देन यू नो आर नर्वस सिस्टम इज़ ऑन अ वेरी वेरी वेरी हाई अलर्ट. हाउ एवर अगर आप सोचो तो वही जो हाई अलर्ट वाली चीज़ होती है, जब आपको एक सेफ पर्सन मिल जाता है, एक फेमिलियर पर्सन मिल जाता है, वो उतना हमारे हाई अलर्ट नहीं रहता. वी आर एक्चुअली इन अ मच मोर कामर रिलैक्स्ड पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, एंड समटाइम्स वी थिंक दैट ओ दिस इज़ गेटिंग बोरिंग, दिस इज़ गेटिंग रूटीन, बिकॉज वी आर सो कंडीशनड, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड कंडीशनड हियर, वी आर सोशली कंडीशनड टू बिलीव दैट अच्छा एक्साइटमेंट नहीं हो रही तो मतलब बोरिंग है. एक्साइटमेंट का मतलब लैक ऑफ एक्साइटमेंट का मतलब बोरिंग नहीं होता है, लैक ऑफ एक्साइटमेंट का मतलब पीस भी हो सकता है. कभी इस बारे में आपने सोचा है? वही चीज़ आई थिंक जो दिया को खा रही थी, दिया वॉज द अदर कैरेक्टर हु वॉज द गर्ल कैरेक्टर, जो कुणाल की गर्लफ्रेंड थी, उसको अंदर ही अंदर खा रही थी बिकॉज दे वर इन अ नाइस रूटीन पीसफुल सिचुएशन. दे हैड ट्रस्ट मोर और लेस, कुणाल हैड ट्रस्ट ऑन दिया, लेकिन दिया को क्योंकि वो रूटीन लाइफ में सेटल हो रही थी, इसीलिए वो अपने आप को डाउट करने लगी थी कि वाई इज इट सो पीसफुल, क्योंकि मे बी शी केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड और इन हर फैमिली और हर चाइल्डहुड वेयर पीपल आर ऑलवेज फाइटिंग, पीपल आर ऑलवेज गेटिंग इट इन टू ईच अदर फॉर लाइक स्मॉल लिटल थिंग्स, एंड सो वेन थिंग्स एक्चुअली बिकेम पीसफुल, शी थॉट अच्छा इतना पीसफुल कैसे हो गया, मतलब डज ही लव समवन एल्स, इज ही गोना चीट ऑन मी, मे बी आई शुड टेस्ट हिज लव, मे बी आई शुड टेस्ट आर यू नो आर रिलेशनशिप. इसीलिए उसने अपनी फ्रेंड को बुला लिया टू क्रिएट दैट एक्साइटमेंट. उसके लिए वो एक्साइटमेंट था, बट मे बी डीप डाउन इन अ नर्वस सिस्टम आई डोंट थिंक दैट वॉज एक्साइटमेंट, वॉज एंग्जाइटी, क्योंकि वो बाद में तो आ गया ना एंग्जाइटी की तरह से, वेन शी एक्चुअली गॉट सर्टन हिंट्स, लाइक अच्छा नहीं ये तो ज़्यादा ही चल रहा है यार, जब उसको अंदर से इंट्यूशन हुई कि भाई इनके बीच में फ्रेंडशिप के अलावा, इसने बोल तो दिया कि फ्रेंडशिप चल रही है, लेकिन फ्रेंडशिप के अलावा कुछ और भी चल रही थी. तो गाइज हम और भी बातें करेंगे इस बारे में आफ्टर दिस रियली शॉर्ट ब्रेक. दिस इज इपी द हैप्पी, आई एम स्टिल हियर विथ यू फॉर वन मोर आवर. सी यू सून.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: यार मॉडर्न मंगल सूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ.
4: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र.
3: सीरियसली कैसा कलेक्शन है?
4: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स. यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग.
5: फाइंड द मंगल सूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्रस. Carrot Lane, now open in Frisco, next to Tanish.
6: ड्यूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
7: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
8: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
11: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
9: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
11: Fikar not. We have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25+ dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया।
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया।
12: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
14: Visit www.sanadainc.com today.
15: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
16: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

नाउ कुणाल की तरफ आईना घुमाते हैं, ठीक है. हमने तो जैसे बोला था कि एली एंड दिया वो काइंड ऑफ लाइक मिरर्स, दे बोथ हैव एंक्शियस अटैचमेंट बट कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बट डीप डाउन देयर अटैचमेंट स्टाइल इज स्टिल द सेम. नाउ इफ यू लुक एट कुणाल, ओके, आई मीन एट फर्स्ट यू गोना थिंक लाइक, ओ ही इज लाइक द स्कूल नॉनशलांट गाय, ओके, ही इज काइंड ऑफ लाइक यू नो चिल, सीम्स प्रिटी सिक्योर, सीम्स लाइक एन अवॉइडेंट बट स्टिल सिक्योर. यू नो मेनी एंग्शियस पीपल गेट ऑल द अटेंशन इन कॉन्वर्सेशंस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अटैचमेंट, बट अवॉइडेंस जो है दैट कैन बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि जैसे ही शादी की बारे में आती है ही इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली टालोइंग द सब्जेक्ट. ओके, अवॉइडेंस कैन बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव. इफ योर पार्टनर इज एंग्शियस, द राइट आंसर इज इंट लाइक शी इज टू मच, बट द राइट आंसर एट समटाइम्स कैन बी, समटाइम्स द एंग्शियस बिहेवियर इज एम्पलीफाइड बिकॉज मे बी द अदर पार्टनर इज इंट इमोशनली अवेलेबल. कुनाल्स क्वाइटनेस मे फील सेफ टू हिम बिकॉज ही इज एन अवॉइडेंट, बट साइलेंस इज एन ऑलवेज न्यूट्रल. साइलेंस कैन समटाइम्स रिजल्ट टू कन्फ्यूजन, एम्बिग्विटी, ठीक है. और ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो नो मैंस लैंड में है, ये जो ग्रे एरिया में रहता है, इट इज़ लाइक गैसोलीन फॉर एन एंग्शियस अटैचमेंट पर्सन. तो ये जो एंग्शियस और अवॉइडेंट अटैचमेंट की जो केमिस्ट्री होती है ना, मतलब एक पर्सन वो जानबूझ के अपने अंदर बातें रख रहा है एंड द एंग्शियस पर्सन ऑन द अदर हैंड वो चीज़ लेके वो मतलब वैसे ही दे आर गेटिंग स्ट्रेस्ड एंड पागल हो रहे हैं, ठीक है. इफ़ समवन आस्क्स आर यू ओके, अगर आपसे कोई आके पूछे आपका पार्टनर आर यू ओके एंड यू रिस्पॉन्ड ऑफ कोर्स, बट नेवर एक्सप्लेन हाउ यू आर ओके, वाई वी आर ओके, नेवर रीअश्योर, नेवर एंगेज, यू नेवर टेल देम वॉट यूर फीलिंग. यू मे ऑलवेज बिलीव दैट यू नो यू आर ट्राइंग टू अवॉइड ड्रामा, बट वॉट यू आर डूइंग इज एक्चुअली क्रिएटिंग मोर अनसर्टनिटी. समटाइम्स द इमोशनली अवॉइडेंट पर्सन ही कैन ऑल्सो से लाइक, आई डोंट वॉन्ट मेक दिस इन टू अ बिगर इशू. द एंग्शियस पर्सन विल से, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो इस बारे में, टॉक टू मी, ऑल आई एम आस्किंग इज दीज क्वेश्चन, वाई कॉन्ट यू जस्ट आंसर मी. एंड द अवॉइडेंट पर्सन गोज लाइक, आई डोंट वॉन्ट ड्रामा इन माई लाइफ, आई जस्ट वॉन्ट लिव माई हैप्पी लाइफ. आई मीन डज दैट सीम फेमिलियर? आई हैव, ट्रस्ट मी, आई हैव हर्ड सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स टॉक अबाउट द एग्जैक्ट सेम इक्वेजन विद देयर पार्टनर्स. बोथ आर ट्राइंग टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, हाउएवर the sometimes when you're in a relationship and when you're in a companionship, the discomfort is not just about your own needs but also your partner's needs. So sometimes you need to learn the other person's language also. But isse kya hota hai, one reduces discomfort through distance and through connection. To agar aap distance kam karoge apne beech mein, actually communicate karoge, baatein karoge, you know, without feeling ki nahi yaar I don't want to have this dramatic conversation, it's too much, I can't do it. If you actually go through that, if you allow yourself to feel those feelings, maybe you might create less drama in future for a long time. Yeah.

guys. It is 9:24 on the clock. This is Ippy the Hippie, still listening to Funisha Radio 104.9 FM, and this is my show. An evening in Dallas. हम थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है ना, तनिष्क का डायमंड फेस्टिवल चल रहा है. दैट इज तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स. And enjoy up to 25% off on diamond value and making charges, plus 0% deduction on the exchange of old gold above 18 carats. Celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Terms and conditions apply. So guys, ek hum chota sa gana sunte hain. Uske baad, gaane ke baad, jab hum wapas aayenge, then I will tell you what happens if I mean, now I'm not a writer or a screenwriter or a script writer or a director. Actually, technically, I am. क्योंकि मैंने बच्चों के म्यूजिकल्स बहुत डायरेक्ट किए हैं, लेकिन ये ग्रोनअप्स वाली मूवी मैंने नहीं करी है. हाउएवर, बच्चों के म्यूजिकल्स मैंने बड़े सारे डायरेक्ट करे हैं, स्पेशली इस समर में. तो ब्रेक के बाद आएंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट वॉट इफ आई वर टू एक्चुअली री राइट दिस कॉकटेल टू from a little bit more of a secure and a healthy relationship perspective. उसमें पता है क्या होता, उसमें ये होगा कि वो जो मूवी है थोड़ी सी बोरिंग और ड्राई हो जाएगी, इतना मस्ती और पार्टी. क्योंकि भाई जब यू नो थोड़ा टेंशन रहता है, तभी तो चीज़ें एक्साइटिंग रहती है. एज अ व्यूअर, दैट्स वेन वी एन्जॉय इट. वी लाइक द गॉसिप, वी लाइक वेन देर इज ड्रामा. लेकिन अगर आपको मतलब अपनी लाइफ के साथ उसको रिलेट करना है, चाहे नहीं भी करना हो, अगर करना है तो वील री राइट द स्क्रिप्ट लिटिल बट मोर रियलिस्टिकली, तो क्या होगा. लेकिन उसके पहले ये छोटा सा गाना.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. अब हर bite के साथ मिलेगी extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
5: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी. टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanaa Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम.

0: हाय गाइस।
1: तो गाइस, जैसा मैंने वादा किया था, हम आके थोड़ी सी रीराइट करेंगे कॉकटेल टू। एंड आई एम नॉट सेइंग लाइक वी आर राइटिंग द स्क्रीन प्ले, बट व्हाट इफ वी हैड टू रीराइट द रिलेशनशिप एंड हाउ इट वुड काइंड ऑफ अप्लाई इन एक्चुअल लाइफ। ओके, इमेजिन दिया कहती है, कुनाल आई नीड टू टेल यू समथिंग, आई हैव बीन फीलिंग अ लिटिल इनसिक्योर, मुझे ना थोड़ी रीअश्योरेंस चाहिए। आई नो हम बहुत साल से साथ में हैं एंड वी लिव टुगेदर एंड एवरीथिंग, एंड सबका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, सब कह रहे शादी कर लो शादी कर लो, एंड आई नो यू लव मी, बट लेटली आई हैव बीन थिंकिंग एंड आई हैव बीन वंडरिंग, आर वी चूजिंग ईच अदर और जस्ट सिंपली कंटिन्यूइंग टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप बिकॉज वी हैव बीन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग। हम लोग बचपन से अपने एक दूसरे को जानते हैं, लाइक कॉलेज टाइम से। आर वी जस्ट विथ ईच अदर बिकॉज वी हैव बीन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग एंड वी आर काइंड ऑफ अफ्रेड टू सी व्हाट्स आउट देयर, और आर वी जस्ट यू नो डू वी एक्चुअली रियली लव ईच अदर। कुनाल कहते हैं, वॉट डज कुनाल से, कुनाल डजेंट डिसमिस हर, पहली बात तो ये, ही डजेंट से हियर वी गो अगेन, ही सेज ओके well those are some interesting feelings, tell me more. One sentence can really change a lot of things in a relationship. The correct way to communicate can change a lot of things, guys, and that not just applies to your relationship, it applies to your kids, to your friends, it applies to anything and everything in life. Okay, then Kunal says, I don't really know how to reassure you, Dia, बट इट डजेंट मीन कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। दिया सेज, देन सीख लो, दिस इज द पर्सन दैट आई एम। एंड कुणाल सेज, ठीक है फाइन, आई लर्न, वॉट डू यू वॉन्ट मी टू लर्न नाउ, दैट इज सिक्योर अटैचमेंट। द इवन दो देव बिन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग, बट अक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट कि आप चाहे 10 साल से हो, 15 साल से साथ में हो, पीपल चेंज, एवरीबडी, यू मी एवरी वन, वी ग्रो इन आर पर्सनैलिटीज, वी ग्रो बाय इंटरैक्टिंग विद अदर काइंड ऑफ पीपल, वी ऑल चेंज। और उसके साथ रिलेशनशिप को भी अडेप्ट करनी पड़ती है, योर पार्टनर्स ऑल्सो हैव टू अडेप्ट विद इट, एंड दैट रियलाइजिंग दैट कि ठीक है मेरा पार्टनर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यू नो दैट इज समथिंग अक्नॉलेजिंग, दैट इज अक्नॉलेजिंग चेंज, दैट इज अक्नॉलेजिंग ग्रोथ। ओके, द गोल इज नेवर टू ट्रिगर ईच अदर, ठीक है, द गोल इज टू बिकम बेटर एट रिपेयरिंग वट एवर प्रॉब्लम इट इज। ओके, सो वन ऑफ माई सेइंग्स दैट आई ऑलवेज लाइक टू लिव बाय, एंड दिस अप्लाइज टू एनी थिंग एंड एवरी थिंग यू डू इन लाइफ, डोंट ड्वेल ऑन द प्रॉब्लम। बार बार इस चीज़ को बोल के कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम है, उसके बारे में ये सोचो कि इस प्रॉब्लम को मैं दूर कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वॉट इज द सोल्यूशन टू ऑल ऑफ दिस। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू रिलेशनशिप्स एज वेल, राइट? बाय द वे, दैट राइट वॉज नॉट अ क्वेश्चन, दैट वॉज लाइक, इजंट इट?

एंड सो व्हाट डज कॉकटेल टू अल्टीमेटली टीच अस, ठीक है, मे बी दिस दैट डोंट टेस्ट द पर्सन यू लव, बिकॉज भाई अगर आपको अपने प्यार पे भरोसा नहीं है और अपने पार्टनर को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है तो भाई ब्रेकअप वहीं पे कर देना चाहिए. मतलब टेस्ट मत करो अपने पार्टनर को, यू शुड ट्रस्ट योर पार्टनर, ठीक है. और अगर ट्रस्ट में डाउट आ रहा है, जो कि नॉर्मल है, कई बार आ जाता है, जस्ट टॉक टू देम इंस्टेड ऑफ उनके पीठ पीछे उनके कोई टेस्ट लगाने के लिए, जस्ट टॉक टू देम. डोंट पनिश समवन फॉर नॉट रीडिंग योर माइंड, क्योंकि भाई हम सब यू नो साइकिक्स नहीं होते हैं. वी नॉट एवरीबडी हैज़ दोज काइंड ऑफ स्पेशल पावर्स, ओके. सो सम पीपल डू, आई मीन सम एटलीस्ट सम पीपल क्लेम टू डू दैट, और सम पीपल डोंट इवन हैव दैट इंटुएशन वाली आदत. क्योंकि लड़कियों की आदत, लड़कियों को इंटुएशन होती है, हमें पता चल जाता है जब कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, लेकिन लड़कों का दिमाग वैसे नहीं चलता है. तो दैट्स वाई डोंट अज्यूम कि उनको पता होगा कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है. डोंट कन्फ्यूज बटरफ्लाइज एंड न्यू एक्साइटमेंट विथ कंपैटिबिलिटी. एनीथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग न्यू दैट यू हैव नॉट ट्राइड इन दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू गिव यू बटरफ्लाइज एंड एक्साइटमेंट. लेकिन ज़रूरी नहीं है आप वो रोज़ करोगे. मतलब

एक दिन रोलर कोस्टर पे बैठोगे तभी भी बहुत मजा आता है, पहले दिन बैठोगे, लेकिन इमेजिन अगर आप रोज रोलर कोस्टर पे बैठने लग गए तो रोलर कोस्टर भी बोरिंग हो जाती है. एंड देन डोंट कन्फ्यूज काम विद बोर्डम, ठीक है? जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग काम, जस्ट बिकॉज एवरी थिंग फील्स सेटल्ड एंड एवरी थिंग फील्स नॉर्मल, दैट्स नॉट इक्वल टू बोर्डम, दैट्स इक्वल टू पीस. एंड समटाइम्स वी फॉरगेट इट, इंक्लूडिंग मी. आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन अ वेरी हाई स्ट्रेस एन्वायरमेंट एंड आई हैव डेल्ट विद अ लॉट ऑफ स्टफ, यू नो. एंड जब मेरी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस कम होने लगा एंड थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम अ लिटिल मोर ऑर्गेनाइज, इट जस्ट स्टार्टेड फीलिंग लाइक भाई लाइफ में कुछ हो क्यों नहीं रहा है. आई नीड सम एक्साइटमेंट, आई नीड सम दिस, आई नीड सम दैट. एंड देन आई टॉक टू माई सेल्फ एंड आई एम लाइक नो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ थिंग्स आर एक्चुअली गुड. वाई डू आई वॉन्ट मोर ड्रामा वेन थिंग्स आर एक्चुअली पीसफुल एंड गुड? ओके, मे बी द डीपर क्वेश्चन इज इंट विल दे चूज मी एवरी टाइम इवन आफ्टर 10 ईयर्स, मे बी इट इज डू आई फील सेफ इनफ टू बिलीव दैट आई एम ऑलरेडी चोजन. एंड इफ द आंसर इज नो, डोंट क्रिएट अ टेस्ट, जस्ट क्रिएट अ कॉन्वर्सेशन. सिंपल. क्योंकि लव डजेंट बिकम सिक्योर वेन समबडी पासिस द एग्जाम. ओके, लव बिकम सिक्योर वेन यू आर unafraid of having those tough conversations, but you still have it because the long-term goal is to be in a peaceful state of mind, right? Exactly. तो guys, यहीं से मैं थोड़ा सा अलविदा लूंगी. सिर्फ 10 मिनट बचे हैं मेरे शो में. उस 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगी आपके लिए बड़े मजेदार मजेदार गाने सुनाऊं. This is Ippy the Hippy. Thank you again for joining me today here on Tuesday from 7 to 10 PM. I will be back again tomorrow. लेकिन और थर्सडे इस हफ्ते मैं कल भी आऊँगी, मैं परसों भी आऊँगी. लेकिन जाने से पहले, क्या आपको पता है फॉर द लास्ट 13 ईयर्स टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी. नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन इंक्लूडिंग लनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स and so many more things like Himalayan Med Spa services all under one roof. They are open 7 days a week from 8 AM to 8 PM. You can walk in anytime. No appointment needed. तो आज की रात यहीं पे खत्म की जाती है. मैं आपके लिए सिर्फ गाने बजा रही हूँ. Have a beautiful night and sweet dreams and I will talk to you tomorrow. Bye.

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: बेटा, 95% आए?
2: हाँ मम्मी.
1: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
3: मेरा?
1: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
6: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त. ओनली ऑन फन एशिया रेडियो.

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Time Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Panacea
2: Hi I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US 104.9 FM Fun Asia Radio

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

0: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

सुबह और शाम हर पहर आपके नाम फनेशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Hey everybody, this is Asim, and you're listening to the rocking music of my film, only on Fun Asia Radio.

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: और मैं फूल फेंक रहा हूं।
1: तुम?
0: अरे और फिर तुम जाने लगती हो और मजाक कर रहा था ना बिल्ली।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: उठता धुआं तो कैसे छुपाए
1: सुधी है शहर ला गमंग गमंग वाला अपन अपनी मुंडी कर दे என்ன விட்டுருங்க
0: அக்கியா கரே ஜி ஹஜூரி

tracks that put you on the right track.

FM turns up the heat in Dallas.

0: फकीरा घर आजा।
1: Oh baby,
2: variety is the spice of our station. 104.9 FM.

0: Amaron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: खुशियाँ लगाओ।
1: तुम क्या मैरिनेट हुए बैठे हो यार?
2: PVS मॉल में बबीता आ रही है।
3: कौन बबीता यार?
2: कौन बबीता? बबीता कुमारी जहाँ पना, आपकी बेगम बब, मेरी भाभी, वही बबीता जिसके हाथ पे मेहंदी से लिखा जाना था बउआ सिंह।
3: मोहब्बत देख गुड्डू, तेरे भाई के दफन होने से पहले अपना आखिरी सलाम देने चली आई।
2: पूरी की

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: झुमका।
1: Rest a while and run a mile with Fun Asia Radio.

KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
5: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: अब क्या?
1: क्लॉस्ट्रोफोबिया। व्हाइट हाउस की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया, प्लीज चेक।
2: अच्छा, कौन सा, वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर, कोर्ट में बात कीजिए।
2: अशरत, सिक्योर लाइन है, प्लीज डोंट इरिटेट मी, नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा। हाँ, फाइनल चेक्स एवरीवन, शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है, कम ऑन, गेट रेडी।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 shows True Payment presents Sonu Nigam live in Dallas.
5: Hi. तुमसे मिलके दिल का है।
4: Saturday, September 26th, 8:30 PM onwards at the Credit Union of Texas Event Center, Allen.
2: Tickets available at Ticketmaster. For more info, call 855-360-SHOWS. Exclusive media partner, Fun Asia Network.
6: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स.
3: सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया. उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम ऑन दिस लवली वेंसडे मॉर्निंग. इट्स द 19th ऑफ अगस्त टुडे.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में सब संभाल लेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
5: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
3: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
5: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
12: भूख लगी
13: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
15: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
15: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts, facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
3: सुनो कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
15: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
3: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
15: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
12: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
15: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
17: तुमसे मिलके दिल का है.
12: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
15: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: Let's round off this hour of the program. I have another busy hour coming up. And if there's anything you want to listen to, call me in the studios. 972-235-5555. We have a whole hour ahead of us. It is 9 a.m.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
6: लैपटॉप में.
5: इन्वेस्टमेंट?
6: गूगल ड्राइव.
5: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
6: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
5: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
7: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
8: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
7: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
9: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
10: हेलो,
11: मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
10: Fikar not, we have the perfect solution.
12: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
11: सच में? सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
19: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
12: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
19: इतना सब और प्राइस?
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
2: मैं हीरो.
1: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं,
20: हमारी यादें हैं और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 214-869-2668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।
0: व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट कुमार सानू, let's play this track of his as we start this first hour of our program, final hour of our program, I beg your pardon. He sung this track for Shah Rukh Khan.

0: Whenever you hear any traffic updates or accident reports on the airwaves of the Fun Asia Network, please remember they are brought to you by attorney Omar Khwaja's offices. An accident can happen in seconds, but recovering from it can take much longer. If you've been involved in a car crash, a truck accident, or a slip and fall incident, let attorney Omar Khwaja handle that legal battle while you focus on healing. He'll fight for compensation that you're entitled to, and you pay nothing unless your case is won. Please call the offices of attorney Omar Khwaja, and that number is 469-300-5046, 469-300-5046, or you can visit his website for more details, and that's attorney Omar, OMAR.com. OMAR.com for a free consultation. You can make an appointment. We're going to get you some more messages from our sponsors and advertisers. You'll listen to them. I will have the world news coming up right after that. And of course, plenty of music all lined up for you. But still, if there's something that I'm not playing for you, call me. 972-235-5555 is the number.
1: यार मॉडर्न मंगल सूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ
2: तो कैरेट लेन चलो दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र
1: सीरियसली कैसा कलेक्शन है
2: मिनिमल डायमंड एलिगेंट एवरीडे स्टाइल्स यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग
3: फाइंड द मंगल सूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क
4: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-87-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर मस्ट बी 21 ओल्डर टू पार्टिसिपेट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई प्लीज प्ले रिस्पांसिबली
5: ड्यूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है
5: कैसे
6: पेज 3 ईटरी
5: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
6: ड्यूड इट्स पेज 3 स्टार्ट विद द बार सिग्नेचर कॉकटेल्स क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट Every craving, every appetite.
5: मतलब great food, great drinks and great company. यानी कि मैं.
7: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
8: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
8: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
8: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
8: Construction ho ya renovation, business kharidna ho ya refinance karana ho. For all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA loan experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
10: Mere kal wale khane mein dosa. आने वाले खाने में डोसा
11: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश योर सर्च एंड्स हियर
12: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स क्रिस्पी डोसास फ्लफी इडलीज कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस
11: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन
13: उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा ये बॉक्सेस उठा ले रे
14: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं
13: अच्छा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो
14: डॉक्यूमेंट्स बॉक्सेस पूरा घर रिलोकेशन इवन कार ट्रांसपोर्ट
13: इंडिया तक
14: सिर्फ इंडिया नहीं विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज
11: SFL वर्ल्ड वाइड घर हो गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव सब सेफली पहुँचता है विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1800 691 2335
1: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
15: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
1: कहाँ?
16: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
17: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
18: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
19: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
20: तुमसे मिलके दिल का है।
19: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
21: इश्क इश्क है।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
3: Coughing or sneezing at home, your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
0: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
0: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को
6: अरे 3 पे क्यों अटक गया?
7: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी 3 पे पहुंच गया।
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
8: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

ladies and gentlemen, this is Wednesday morning that I am here with all of you on Fun Asia Radio 104.9 FM. Subah ki shuruaat Shabnam ji se ho chuki hai aap logon ki, and I know that you had a terrific time with her. A well-rounded show that I always say that she brings for all of us, and so much of information in her world news that we get ki subah hame kuch aur कहीं और से कुछ लेने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ न्यूज. बस Fun Asia Radio 104.9 FM ट्यून इन करो एंड यू कैन बी एब्सोल्युटली रेडी फॉर द डे. एंड वंस अगेन दिस इज गपशप गली विथ मी टू. आ गई हूँ मैं आप लोगों के बीच में. इट इज माय एब्सोल्युट प्लेजर टू बिगिन प्लेइंग द म्यूजिक दैट यू लाइक, दैट आई लाइक, दैट ब्रिंग्स अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म.

लव दिस सॉन्ग लेडीज एंड जेंटलमैन, बैक टू बैक ज्योतिका टांगड़ी की आवाज में आपने ये गाना सुना. होपफुली यू एंजॉयड इट एज वेल. इट इज अबाउट ब्रिंगिंग एनर्जी टू द मच नीडेड वेंसडे दैट वी हैव इन आर लाइफ, क्योंकि वेंसडे कम्स विद द प्रॉमिस ऑफ ब्रिंगिंग वीकेंड लेडीज एंड जेंटलमैन. और ये ना एक क्लियर डिमार्केशन है इन द मिडल ऑफ द एंटायर वीक दैट वी हैव, वर्क वीक दैट वी हैव. दो दिन इधर और दो दिन इधर उधर, और सीधे फिर वीकेंड को डाइव करने को आप रेडी होते हो. तो बस वो रेडी ही कर रहे हैं हम आपको, ताकि वो पूरी एनर्जी रहे. क्योंकि क्या है ना कि गर्मी बहुत है, गर्मी के कारण एग्जॉस्टन बहुत है, और इसीलिए एनर्जी की जरूरत है, अ बिग डोज ऑफ दैट. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई आल्सो वांट टू पॉइंट आउट, कि एनर्जी जो है ये बहुत जरूरी है, कि इन टर्म्स ऑफ यू नो द होम एसोसिएटेड दैट इट इज विथ, वो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ. क्योंकि टेक्सस बिजनेस ओनर्स के लिए ये खास अनाउंसमेंट है कि अगर आपको स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन चाहिए, तो आपको तारा कमर्शियल एनर्जी के साथ कनेक्ट करना ही चाहिए. दे हैव बीन सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002. काफ़ी वक्त हो चुका है, और ये कंपेटिटिव रेट्स देते हैं, रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स भी आप लोगों के लिए बनाते हैं. तो इसीलिए आप उनके साथ बात कीजिए, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है. इट्स जस्ट समटाइम्स दैट वी डोंट कम टू नो ऑफ दीज प्लेसेस, बट जिन्होंने भी यूज़ किया है वो जानते हैं. दे हैव बीन हैप्पी विद देम. एंड आई ऑलवेज टेल माई लिसनर्स यू नो कि आप ज़रूर कॉल करो, बात करो, फिगर आउट करो, देखिए इफ दे आर राइट फॉर यू. 8444282808. TaraEnergy.com is the website. Ek aur energetic gana hai. This is Gupshup Gali with me.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: इस रक्षाबंधन चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
2: चौकटॉ कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांत, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली। हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
4: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग।
5: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
4: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
5: क्यों?
4: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
5: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
0: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग। हु आर द एम्प्लॉइज योर कंपनी सिंपली कैनॉट अफोर्ड टू लूज? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
10: Tracks that put you on the right track.

वेदिका पिंटो इज अ डिस्कवरी फॉर मी इन मुसाफिर कैफे द सीरीज दैट इज ऑन नेटफ्लिक्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, यस, जिन्होंने काफ़ी सारा और काम किया है, काफ़ी नहीं, चलिए थोड़ा और काम किया है, लेकिन मेरी नज़र पहली बार उन पर और उनकी एक्टिंग पर इस सीरीज के साथ पड़ी है. एंड आई बिलीव एंड आई होप दैट शी गोज अ लॉन्ग वे. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू. होपफुली आप लोग सब बढ़िया हैं, चंगे हैं, और अगर हैं तो बड़ी अच्छी बात है. बट आई एम श्योर देर आर पीपल जिनको ना कुछ लीगल हेल्प की ज़रूरत हो, इन टर्म्स ऑफ यू नो कि जहाँ पर कुछ स्लिप और फॉल का कुछ एक केस बना हो कि आपको लगता है कि आपको अगली पार्टी से कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, कुछ कार या ट्रक एक्सीडेंट में आप हो कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन हु गोज़ इनटू द हसल बसल ऑफ गोइंग बैक एंड फोर्थ विद द इंश्योरेंस कंपनी. एंड दैट्स वेयर अटर्नी ओमर ख्वाजा कम्स इनटू पिक्चर. ही एंड हिज टीम कैन सर्टनली हेल्प यू. और पता है ये सबसे बड़े प्रॉमिस के साथ जो आते हैं, जो हर बार कहती हूँ लेकिन कहना ज़रूरी है क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि हर दिन हमारे साथ कोई ना कोई एक नया लिसनर जुड़ रहा है, तो इसीलिए उन तक ये भी ये बात भी पहुँचा देते हैं कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अंटिल यू विन योर केस. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. और फ्री कंसल्टेशन जो आपको इनसे मिल सकती है उसके लिए कनेक्ट ज़रूर करें उनके साथ 4693005046. एंड रिमेंबर इट इज़ attorneyomer.com दैट यू मस्ट गो एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम. और उन्हीं के तरफ से आपके लिए ट्रैफिक अपडेट. दो मेजर कुलिजन्स की बात करने वाली हूँ यहाँ पर. एक कुलिजन जो कि I-35 ईस्ट एट मार्केट सेंटर बुलेवार्ड नॉर्थ बाउंड, वहाँ पे तीन लेन्स, राइट लेन्स पूरी तरह से बंद हैं, राइट शोल्डर बंद है. इफ़ यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, इफ़ यू थिंक यू कैन टेक अ डिटोर, प्लीज़ डू. देर इज़ अ मेजर बैकअप देर. एंड देन देर इज़ अनदर कोलिजन ऑन I-30 एट लूप 12 वेस्ट ऑफ ईस्ट बाउंड, जहाँ पे दो राइट मोस्ट लेन पूरी तरह से बंद हैं. सो दीज आर द टू मेजर कोलिजन्स दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट. एंड एक्चुअली देर इज़ अनदर वन दैट हैज़ जस्ट एडेड ऑन बीन added on, and it is US 80 at Lawson Road, Kaufman County line, eastbound, जहाँ पे left shoulder और left lane पूरी तरह से बंद है. इसके अलावा कुछ traffic signal issues that I was looking at just now, and it has been taken out of consideration. I guess the traffic signal problem is resolved, I guess, and good for you. Thank you once again for tuning into Gapshap Gali with me too. यहाँ पर हम कुछ हटके गानों के सिलसिले में जो आपको एक के बाद एक गाने सुनाते हैं, तो ये गाना जो कि बिल्कुल हटके नहीं है, बहुत ही मेन स्ट्रीम गाना बना और इतना पॉपुलर हुआ, लेकिन कुछ एक हटके वर्जन जो मैं आपके लिए लेकर आना चाहती हूँ, फ्रॉम लापता लेडीज द क्लासिक.

0: Hello guys, मैं आप सब
1: Did you enjoy this version of the song? And this is a song. Let me see, Swatantra official. If you enjoyed the song, you must know कि ये किसने recreate किया. तो this young lad who has sort of reimagined this song in a very beautiful way, and I thought it was worth playing it for all of you right here. थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन. मैं आप लोगों के साथ ना ये हमारी जो बातें चलती हैं उनके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती हूँ. फिलहाल तो भाई इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर, लेडीज एंड जेंटलमैन. वेंसडे एक और बहुत ही गर्म दिन होने वाला है. एक्सट्रीम हीट वार्निंग्स वंस अगेन इन प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस अंटिल 8 PM टुडे, एंड द फोरकास्ट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यस्टरडे, इंक्लूडिंग अनदर एक्सट्रीम रिस्क ऑफ फायर डेंजर दैट वी हैव. और हमारा आज हीट इंडेक्स के साथ टेम्परेचर कुछ 108 और कुछ जगहों पर 109 तक जाएगा. There is no relief in sight for all of us. So hang in there, ladies and gentlemen. That's what I can tell you. This heat advisory is going to continue going into Thursday as well, yani ki tomorrow. And yahi main keh sakti hoon ki bas hang in there, ladies and gentlemen. Well, we have a very slim, almost next to nothing chances of rain in the forecast over the next 7 days, which means our drought conditions will likely worsen. तो बस या एज आई सेड हैंग इन देयर लेडीज एंड जेंटलमैन. आज का हाई 106 डिग्रीज, बट बिकॉज ऑफ हीट इंडेक्स इट इज गोइंग टू फील इवन मोर हॉटर एज आई टोल्ड यू. और थर्सडे को 105 डिग्रीज इज द हाई एंड द लो विल बी अराउंड 83 डिग्री, एंड नथिंग इज शिफ्टिंग अंटिल फ्राइडे एंड सैटरडे. और संडे को तो भाई एक एक डिग्री और बढ़ाते जाओ, एंड दैट्स आवर टेम्परेचर फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक. I thought let's give you this hot update and dive straight into this next gana right here on Fun Asia Radio 104.9 FM.

0: this is a sweet song and I happen to listen to this song in some other voice और ये कल ही मैंने सुना एक broken but beautiful करके कोई series होता है होता था मेरे ख्याल से starring विक्रांत मासी उसी का ये गाना था and I really liked it and I think this was विक्रांत मासी's wedding song as well and therefore that other voice that I was talking about इसे शायद recreate किया गया था या something I don't know ये YouTubers ने किया था कि ये actual में उनकी wedding गाना था ये मुझे नहीं पता nonetheless it was a good song I thought and I thought I'll play it for all of you you know what because we are on this platform jahan music ke sath jankari jati rehni chahiye aati rehni chahiye aap logon ke paas to my time equity led by cpa sudhir pai main aapko batana chahti hu ki ye wo hain jinhone individuals of families ko smarter financial strategies banane mein madad ki hai through portfolio management real estate opportunities and alternative investments to agar aap long term wealth kuch us pe you know प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट या ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स माई टाइम एक्विटी कैन वेरी वेल हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट माई टाइम एक्विटी डॉट कॉम इज द वेबसाइट एंड द नंबर टू कॉल इज 4697021272 मिलते हैं ब्रेक के बाद
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अरे तीन पे क्यों अटक गया
3: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया
4: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन साल्स हॉट चिकन कमिंग सून
5: तारा वो तारा हर तारा
6: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
9: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
8: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
11: बेटा 95% आए
12: हाँ मम्मी
11: गुड अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
13: मेरा
11: हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
13: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे
15: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी कॉल तो करो 888-888-9914
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम
16: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर
17: डैलस तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए
18: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास presents Kayad Mela 2026, a tribute to our heritage and a celebration for all. Enjoy live music, delicious food, shopping, cultural activities, and and family fun for every age.
12: Live performance by Raga Boys.
18: Saturday, August 22nd from 3 p.m. to 11:45 p.m. at Southfork Ranch in Parker, Texas. Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
12: Media partner, Fun Asia Network.
13: Tracks that put you on the right track.

इट इज द सेगमेंट दिस डे इन सिनेमा हिस्ट्री, और इसीलिए ये गाना आपने सुना फिल्म बेल बॉटम का, क्योंकि आज के दिन 2021 में दिस फिल्म रिलीज्ड, और ये अपने आप में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि ये फर्स्ट मेजर बॉलीवुड फिल्म थी जो कि जिसने रिस्क लिया था फॉर अ थिएट्रिकल रिलीज आफ्टर द डेडली सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक, और 50% ऑक्यूपेंसी थिएटर्स में चल रहा था उस वक्त, और मेजर मार्केट्स की बात कर रहे हैं पर महाराष्ट्र जहां पर ये 50% ऑक्यूपेंसी पे थिएटर्स चल रही थी, वहां पर ये फिल्म रिलीज हुई और नहीं चल पाई डिस्पाइट द हाई प्रेज ऑफ अक्षय कुमार टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टू रिवाइव सिनेमास. ये स्ट्रिक्ट पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस हैविली ऑब्वियसली इम्पैक्ट कर गई इस फिल्म को, और ये फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर की गई. एंड इन फैक्ट देर वर कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स आई थिंक इन द फिल्म. आई हैवंट वॉच द फिल्म, आई कैन नॉट कॉमेंट. दिस इज वॉट आई एम गैदरिंग फ्रॉम ऑल द मीडिया इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिल्म बेल बॉटम, जो बताती है कि ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म थी, और सऊदी अरेबिया, कुवैत और कतार में ये डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स के कारण इस फिल्म को बैन कर दिया गया था. And that's bell bottom for all of us, ladies and gentlemen. All right, आज के दिन की एक और रिलीज की बात करने वाली हूँ, and वो है फिल्म दोबारा 2022. I don't know how many of you watched this one. अनुराग कश्यप की ये फिल्म थी स्टारिंग तापसी पन्नू, और ये एक sci-fi mystery थी, एक ऑफिशियल अडेप्टेशन ऑफ द 2018 स्पैनिश फिल्म मिराज, और ये टाइम ट्रैवल थ्रिलर था, और काफ़ी रेयर है बॉलीवुड में, तो उसी का एक गाना लगाने वाली हूँ आप लोगों के लिए. द फिल्म डिड नॉट वर्क, बट आई फेल दैट तापसी पन्नू एज ऑलवेज वॉज प्रिटी गुड वंस अगैन.

August 19, 2022 is when Dobara released and did not do well. और अनुराग कश्यप की ये फिल्म वैसे तो पिट गई, लेकिन लोग इसे देखते हैं क्योंकि अनुराग कश्यप की फिल्म अनुराग कश्यप की फिल्म होती है. And there is always something different that he offers. And इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ था. Time travel thriller that it was. I enjoyed watching it honestly. And I liked तापसी पन्नू a whole lot and अनुराग कश्यप films as well. तो आगे बढ़े. अभी तक जो फिल्मों की बात की ना, ये दोनों ही फिल्म जो है वो फ्लॉप हुई थी आज के दिन जो रिलीज हुई थी. वन बीइंग बेल बॉटम एंड दी अदर वन बीइंग दोबारा. लेकिन ये फिल्म इसकी बात की जाए क्योंकि ये एक स्लीपर हिट थी और ये जो एक है रोमांटिक कॉमेडी थी, क्रॉस बॉर्डर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें डायना पेंटी वॉज द लीड एक्ट्रेस एंड अभय देओल वॉज द लीडिंग मैन. और डायना पेंटी मतलब 4 साल के बाद शी वॉज कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन एंड सक्सेसफुल डेब्यू किया था यार कॉकटेल में, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. और उसके बाद ये उनकी अगली फिल्म थी एंड द फिल्म वॉज वाइडली प्रेज फॉर हैंडलिंग एन इंडियन पाकिस्तान नैरेटिव प्योरली थ्रू सिचुएशनल कॉमेडी, अवॉइडिंग द यूजुअल यू नो पोलिटिकल या फिर कोई जिंगोइस्टिक अंडरटोन्स उसके नहीं थे. तो येस, दिस वॉज द फिल्म हैप्पी भाग जाएगी. अब ये फिल्म इतनी अच्छी चली थी कि मेकर्स ने सोचा यार हैप्पी को फिर भगा देते हैं और इसीलिए आई थी हैप्पी फिर भाग जाएगी. आई थिंक 2 years आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस फिल्म विच वॉज इन 2016 ऑन दिस डे, फिल्म वो वाली नहीं चल पाई. लेकिन ये फिल्म और इसका गाना चलिए सुनवाते हैं.

0: दिस इज अ मूवी जो वर्ड ऑफ माउथ के कारण एक स्लीपर हिट बनी एंड दैट्स हैप्पी भाग जाएगी, जो आज के दिन रिलीज हुई थी 10 साल पहले 2016 में. एंड यस, लेट मी टेल यू ऑल्सो कि ये इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव जो उसने हैंडल किया था विदाउट बींग जिंगोइस्टिक एज आई वॉज टेलिंग यू वॉज फैंटास्टिक एंड दैट इज वॉट पीपल लव्ड ऑल्सो. एंड टॉकिंग अबाउट विच, एक हाल ही में मैंने ना एक रील देखा जो वायरल हो गया है एंड दिस इज अ वीडियो, ए सोशल एक्सपेरिमेंट इन पाकिस्तान that has gone viral, जहाँ पे जो है एक content creator जिनके चैनल का नाम बता सकती हूँ क्या मैं, आई एम नॉट श्योर, बट इफ़ यू वॉन्ट टू नो यू कैन डेफिनेटली कॉल मी. ऑल राइट, तो ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने लोगों को अप्रोच किया, रैंडमली लोगों को अप्रोच किया और कहा कि मैं आपको ये लाइटर दे रहा हूँ और कुछ पैसे दूंगा, अगर जो भी मैं जलाने को कहूंगा वो आप जला दोगे. एंड दैट इज़ व्हेन आफ्टर दे अग्रीड द पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने इंडिया का फ्लैग दिया और उन्होंने साफ जिनके पास भी वो गए साफ सबने मना कर दिया. एंड दैट वाज सच ए हार्ट वार्मिंग रील रियली. एंड बहुत सारी तारीफें इंडियन जनता से भी जो मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड आई थॉट आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू. एंड एवरीबडी सेड कि अगर पाकिस्तान का फ्लैग ऐसे ही इंडिया में जलाया जाए क्या आपको अच्छा लगेगा. दैट वॉज द रिप्लाई ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल पार्टिसिपेटिंग एंड विच टेल्स मी दैट आई नीड टू टॉक अबाउट पाकिस्तान्स कैद मेला 2026 विच इज़ हैपनिंग ऑन सैटरडे, दिस सैटरडे अगस्त 22nd. बात करें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आऊंगी ना तो कैद मेला 2026 के बारे में बात.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन.
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax.
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभाल लेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
6: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
3: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
6: Fear not, we have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
7: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
8: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails, and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
5: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
7: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
9: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
10: Tracks that put you on the right track.

हमें अपने देश से भी है। एंड अगस्त का महीना वो नशा लेकर आता है जो इंडिया पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट लव दैट वी हैव फॉर आर कंट्रीज़, राइट। तो पाकिस्तान सोसाइटी नॉर्थ टेक्सस आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक स्पेक्टैक्युलर सेलिब्रेशन, कैद मेला 2026। एंड दिस इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ हेरिटेज, ऑफ कल्चर एंड कम्युनिटी एज वेल। तो एंटायर कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी इज़ इन्वाइटेड, क्योंकि ये शुरू होगा 3 PM और रात के 12:15 बजे तक, 11:45 PM तक चलने वाला है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके आएँ क्योंकि पूरी तैयारी है, पूरे दिन की तैयारी है। इट इज़ गोइंग टू बी फन फॉर ऑल ऑफ़ यू। बहुत सारा खाना पीना है, लाइव म्यूज़िक होगा, शॉपिंग की का मौका जो मिलेगा आपको, फिर ऑफकोर्स कल्चरल फेस्टिविटीज़ दैट यू कैन इन्जॉय विथ योर फैमिली, मतलब बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक हर कोई इन्जॉय कर सकता है। एंड परफॉर्मेंस बाय Raga boys, ladies and gentlemen, that you absolutely cannot miss. And I cannot miss the fact ki entry aur parking bilkul free hai aapke liye. To zarur aaye August 22nd, this Saturday, ladies and gentlemen, from 3 PM to 11:45 PM at South Fork Ranch in Parker. And media partner, of course, your one and only Fun Asia Radio 104.9 FM.

एंड दैट इज आर रिक्वेस्ट टू यू यार, कि अगर किसी ने पहले कभी नहीं कॉल किया, देर हैज टू बी ए फर्स्ट टाइम फॉर दैट, एंड मे बी टुडे इज द डे फॉर यू. जी हाँ, मुहूर्त निकालें और कॉल करें 9722355555, क्योंकि हम इतने रिलेटेबल टॉपिक्स लाने की कोशिश करते हैं, हम सभी कोशिश करते हैं. हम ये चाहते हैं कि हमारी ना कॉन्वर्सेशन हो. एक तरफा बात का क्या मजा, एक तरफा प्यार का सुना था, बातों का भी, इजंट इट? कोई सुनने वाला होना चाहिए और कोई बात करने वाला होना चाहिए, तभी तो ये गपशप गली कहलाएगी, है ना. तो इसीलिए आज मैं जो टॉपिक लेकर आने वाली हूँ, इट इज़ टू डू विथ नेशनल डे टुडे, क्योंकि इट हैज़ ऑलवेज अम्यूज्ड मी द वेरियस नेशनल डेज जो लोग लेकर आते हैं. फॉर इंस्टेंस, जो आज अगस्त 19 की जो तारीख है, इट इज़ फॉर नेशनल पोटैटो डे सेलिब्रेशन. इट इज़ अ डेडिकेटेड सेलिब्रेशन. एंड देर इज नेशनल सॉफ्ट आइसक्रीम डे टुडे, देर इज नेशनल हॉट एंड स्पाइसी फूड डे टुडे, दैट पीपल आर सेलिब्रेटिंग, सर्टन ग्रुप्स आर सेलिब्रेटिंग, लेट्स जस्ट से दैट. तो मुझे लगा कि इन तीनों का ना हम एक्चुअली एक अमेलगमेशन कर सकते हैं, कि आप पोटैटो डे को सेलिब्रेट करने के लिए फ्राइज को हॉट स्पाइसी सॉस में डिप करो और उसके बाद सॉफ्ट आइसक्रीम खाओ. यू नो, इट इज एब्सोल्यूटली इन टैंडम दैट यू कैन डू एंड सेलिब्रेट थ्री नेशनल डेज इन वन गो, है कि नहीं. लेकिन मैं जो आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आई हूँ, इट इज़ मोर ऑफ ए सेलिब्रेशन ऑफ यू नो मेमोरीज दैट वी आर गोइंग टू डू. तो वो क्या सेलिब्रेशन है आज के दिन का, बताने वाली हूँ इस गाने के बाद, फिर डिस्कशन करते हैं. स्टूडियो का नंबर बस याद रखें और सेव करके रखें, लेकिन इससे कुछ नहीं होता क्योंकि कॉल करना पड़ेगा भाई, तभी तो फ़ायदा है. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो.

You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Ladies and gentlemen, ये वो वक्त होता है कि जब हम आपके साथ कुछ बातचीत छेड़ने की कोशिश करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी फोन उठाएंगे, कुछ अपना इनपुट देंगे, जो भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा उस पर. 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है. आज जो मैंने टॉपिक ढूंढा है ना, वो हमारे नेशनल सेलिब्रेशन नहीं, वर्ल्ड सेलिब्रेशन पे ढूंढा है मैंने. एंड इट इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ऑन एयर. क्योंकि आप ये देखें कि आज का दिन ये स्पेशली क्यों मनाया जाता है, ये पहले बता दिया जाए. क्योंकि 1839 में ना फ्रेंच गवर्नमेंट ने पहली फोटोग्राफिक प्रोसेस का पेटेंट जो है वो खरीद कर उसे दुनिया को गिफ्ट किया था. एंड दे वर वेरी पॉपुलर फॉर फैमिली पोर्ट्रेट्स फ्रॉम द 1840s टू द 1850s बिफोर न्यूअर मेथड्स सॉर्ट ऑफ टुक ओवर. अब जरा सोचिए, हम उस टाइम से कहां आगे पहुंच गए हैं, ये ना ये तो मानना ही पड़ेगा. नहीं याद है वो 90s का जमाना, जब हमारे पास एक वो कोडाक का या फ्यूजी फिल्म का रोल होता था और उसमें सिर्फ 36 फोटोग्राफ्स दैट यू कैन क्लिक एट अ गो, यानी कि एक रील में इतने सारी पिक्चर्स लिए जा सकते थे. तो एवरी सिंगल फ्रेम वॉज वेरी वेरी प्रेशियस. किसी की आंख बंद नहीं होनी चाहिए एंड यू हैड टू वेट अ होल वीक फॉर द स्टूडियो टू डेवलप द प्रिंटेड रिजल्ट्स. आजकल ये हाल है कि हम मतलब क्या ही कहा जाए, हम एक ही कॉफी कप की 47 बस फोटोज लेते हैं एंड वी नेवर इवन लुक एट देम अगेन. हाउ सैड इज दैट रियली. आई रियली यूज टू लव दोज हार्ड कॉपीज ऑफ आर पिक्चर्स, वो जो एक ऑकवर्ड मोमेंट्स, कभी कभी एम्बेरसिंग, कभी कभी बड़े कैंडिड मोमेंट्स जो कैप्चर हो जाते थे हो जाते थे. देर वॉज नो रेक्टिफिकेशन फॉर दैट, देर वर नो फिल्टर्स फॉर दैट एंड इट यूज टू बी जस्ट अमेजिंग टू सी देम लेटर. जी हाँ, ये भी मानती हूँ कि जो कुछ हमारे जब खराब पिक्चर्स आते हैं ना, उसके लिए भी देर वॉज अ नेवर अ सेकेंड चांस. सो येस, अ प्लस एंड अ माइनस दैट यू गेट फ्रॉम एवरी थिंग दैट यू कैन इमेजिन. तो जी हाँ, फोटोग्राफी का भी यही हाल है. इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आप लोगों से भी करना है कि यार मतलब आई वुड रियली लाइक टू नो कि आपका वो सबसे फैंटास्टिक पिक्चर विथ योर ब्रदर या सिस्टर क्या था, यादगार इन एनी विच वे दैट यू कैन थिंक. इट वॉज a candid moment that was captured, it was a very embarrassing moment or a some sort of embarrassment that that picture brings to you in terms of ki kis tarah se aap hans rahe the ya kha rahe the ya kuch anything to do with your brother and sister. Agar aapke paas bhi aise koi picture hai jisme aapke bhai ya behan hai, to fir bhai aake aap hame sunaye apna qissa. We would love to know. Choktaw Raksha Bandhan celebrate kiya jayega. Fun Asia Radio and Choktaw Casino and Resort in Durant, they are bringing this amazing celebration for all of you. Aur ye celebration in the form of giveaways, ladies and gentlemen. 1 minute ka voice note aapko bhejna hai WhatsApp pe at 214-837-7147. Main to kehti hu seedhe call kijiye aur apne sabse yaadgar photo ke bare mein baat kijiye of yours with your sibling, theek hai. Aur aap automatic entry aapki is contest mein ho jati hai. Main aapko batau ki bhai daily exciting prizes hain, including dining experiences, entertainment, resort stays and grand prize of course sibling reunion weekend at Choktaw Casino and Resort in Durant. You must be 21 or older to participate, or please play responsibly when you visit that place. All right. Now, given that, बताइए मुझे कुछ अच्छा सा आप अपना सिबलिंग के साथ एक पिक्चर जो बहुत यादगार है आपके लिए, फॉर एनी रीजन दैट इट इज, जरूर जरूर जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ राइट हियर 972-235-5555. मैं भी अपने एक पिक्चर के बारे में बताती हूँ आपको. इट्स वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स सेलिब्रेट.

बैक टू बैक म्यूजिक फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर. एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एंड आपके कुछ एनेक्डोट्स जो हम सुनना चाहेंगे राइट हियर ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
10: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
11: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
12: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
15: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
16: ना सब और प्राइस
15: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
17: मैं हीरो।
18: डैलस, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए।
19: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल। एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज।
18: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज,
19: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास। Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
18: Media partner, Fun Asia Network.
20: Tracks that put you on the right track.

0: You are tuned into Gupshup Gali with me too, ladies and gentlemen. आगे बढ़े उसके पहले ना मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भाई कुमार शानू अनफॉरगेटेबल 90s के टिकट्स आपने eventbrite.com पे जाके खरीद ली कि नहीं, क्योंकि नॉस्टैल्जिया इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंड दीज आर द सॉन्ग्स फ्रॉम द 90s दैट वी जस्ट कैन नॉट मिस ऑफ कुमार शानूज. जैसे कि मैंने कहा ना, हमारे जिंदगी के हर मोड़ पे कुमार शानू का कोई गाना बिल्कुल भी फिटिंग होता था. तो बस उसी एक्सपीरियंस को, उन्हीं अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स को फिर से जिंदा करने के लिए कुमार शानू इज गोइंग टू परफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस ऑन सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. तो जल्द से जल्द अपने टिकट्स खरीद लीजिए एंड देर इज फ्री पार्किंग फॉर एवरीबॉडी. लिमिटेड सीट्स हैं, तो येस यू डू नीड टू गो ऑन टू eventbrite.com एंड क्विकली बाय योर टिकट्स एंड यू हैव द ऑप्शन फॉर मीट एंड ग्रीट as well, that exclusive meet and greet for all of you ladies and gentlemen. So get in touch with the right people to book your place there. 214-869-2668. This is for more information and eventbrite.com is for the tickets, ladies and gentlemen. It is presented by Focus Entertainment and Fortune Group. And this is Gupshup Gali with me too, jahan pe hum World Photography Day ke baare mein baat kar rahe hain. फोटोग्राफ्स जो कि हमारे लिए एक नॉस्टैल्जिया है अभी, क्योंकि अगर वो 90s की ही बात कर रही हूँ तो 90s में ही चलती हूँ मैं आपको. और वो टाइम याद कीजिए जब हमारे पास ना वो रील्स हुआ करती थी हमारे कैमरा में, और वो बिल्कुल वो लिमिटेड पिक्चर्स होती थी जो आप ले सकते थे. तो हर फ्रेम बड़ा प्रेशियस होता था कि मतलब हर कोई अपना अपना बेस्ट पोज दे और यू नो आँखें खुली रखें, क्योंकि हर ऐसे फैमिली पिक्चर्स में या ऐसे पिक्चर्स में जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें किसी ना किसी की एक की आंखें ना हमेशा बंद होती थी. और हमारे केस में आई वुड बी दैट पर्सन कि मेरी आंखें हमेशा यार बंद आती थी, और जहां मैंने एक्सक्लूसिवली ये कोशिश की है कि खोल के रखूँ, वहाँ पर मैं सच में एक डायन सी लग रही हूँ. That's what I feel, and we are so critical about our pictures. But there is something different to holding a picture in your hand. You know that hard copy that you would have, और उसे फिर देखना और उसके मज़े लेना. आज भी जब वो हार्ड कॉपीज अभी कभी आपके सामने अगर आते हैं ना, तो आपको पता होता है कि एग्जैक्टली उस मोमेंट में आपके दिमाग में क्या चल रहा था. जैसे फॉर इंस्टेंस आई टॉक अबाउट अ पिक्चर दैट आई हैव विथ मी. सो टेल मी अबाउट योर पिक्चर्स फ्रॉम द 90s और आफ्टर दैट दैट यू हैव टेकन दोज हार्ड कॉपी पिक्चर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो बताइएगा ज़रूर मुझे, एंड आई'd रियली लाइक टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू वॉट is so special about that particular picture that you are thinking about. Call me, huh? 972-235-5555.
1: Kise chhi mein sap de dang varga, aaj din chadya tere rang varga.

0: रंग बनता।
1: और अगर आप फन पिज्जा के किचन के रंग में रंगना चाहते हो तो बेशक इफ मेक्सिकन फूड इज व्हाट यू हैव ऑलवेज एंजॉयड, गेस व्हाट, मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइन अप दैट देयर इज फॉर ऑल ऑफ यू एट फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो फ्रेश फिएस्टा वेजी हो या फिर फायरी पोलो लोको, सारा कुछ आपको मिलेगा। एंड साथ में सी फूड पैक सीनियोर कैमेरॉन दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ बिग बाइट ऑफ, एंड दीज बोल्ड फ्लेवर्स coming for all of you. Actually, it is already there for you. So, आप जाएं अपने friends और family के साथ और किसी एक को मिलने वाला है यहाँ पर Fun Pizza Kitchen की तरफ से $10 का gift card. तो ये gift card अगर आपको चाहिए तो आपको phone उठा के call करना ही पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा आपको about that one picture from a wedding that you have always enjoyed looking at and you know exactly what was going on in your mind. I'll talk about a picture from my middle school years. और मुझे याद है कि हमारे इन कजिन की शादी थी और सारी फैमिली इकट्ठा हुई थी और क्या मज़ेदार हमारी तैयारियां चल रही थी और उसमें आज भी मुझे याद है कि वो सबको एक जगह पकड़कर एक वो बिग फैट इंडियन वेडिंग पिक्चर जो एक हमारी होती है हमेशा शादियों में ना, वो कर पाना मुश्किल था फोटोग्राफर के लिए। और फाइनली जब हुआ तो सब अपने बेस्ट यू नो पोज में और साड़ी वाड़ी ठीक करके सूट वूट ठीक करके सब खड़े हुए। आई स्टिल रिमेंबर आई वोर दिस वाइट ड्रेस एक्चुअली और मैंने नेल पॉलिश लगाई थी। आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि इंडिया में भी स्कूल में नेल पॉलिश के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल था कि नो नेल पॉलिश एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये मुझे मौका मिला था नेल पॉलिश लगाने का और अच्छे से एक बड़ा अच्छा शेड था जो कि मैंने लगाया था। तो आई मेड श्योर कि मेरी ना उंगलियाँ दिखें पिक्चर में मैंने अपने हाथ ऐसे रखे हुए हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली एक यू नो जब वेडिंग पिक्चर्स होती है ऐसे पूरी फैमिली की तो जो टॉल होते हैं वो पीछे खड़े होते हैं एंड देन जो सीनियर्स हमारे होते हैं वो बैठे होते हैं चेयर पे और नीचे सारे बच्चे कच्चे, तो मैं नीचे बैठी हुई हूँ और अपने जो उंगलियां हैं ना वो दिखाने के लिए मैंने अपने गोद पे वो रखा हुआ है अपने हाथ को ऐसे स्प्रेड करके कि दिखे मेरी उंगलियां कि कितनी सुंदर मैंने ये शेड लगाया हुआ है। दैट इज़ वन पिक्चर दैट विल ऑलवेज स्टे इंटैक्ट इन माय मेमोरी फ्रेम एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू नो कि भाई क्या है आपकी मेमोरी में एक ऐसी पिक्चर किसी वेडिंग की या किसी की अगर आपके पास है वो आपके दिमाग में। आई मस्ट गेट अ कॉल फ्रॉम ऑल ऑफ यू राइट नाउ 972-235-5555। वेडिंग पिक्चर हो या कोई भी सेलिब्रेशन का पिक्चर जहाँ पे ना वो फोटोग्राफर बिल्कुल जी जान से कोशिश कर रहे होते हैं कि यार सब फ्रेम में आ जाए, सब ढंग से बैठे, वो इंस्ट्रक्शंस भी देते रहते हैं, अंकल जी थोड़ा लेफ्ट, आंटी जी थोड़ा सा स्माइल करो, वो सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं, राइट? सो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दैट एंड गिव मी अ कॉल।

0: अब यादों की अगर बात हो ही रही है आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे, तो लेट्स टेक यू बैक टू योर स्कूल डेज. आपको याद है वो जब क्लास पिक्चर हुआ करती थी एंड यू वर टोल्ड बिफोर हैंड सो दैट आपका यूनिफॉर्म जो हो बिल्कुल कंप्लीट हो, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी यू नो टाई और बेल्ट लेट्स से और एनीथिंग एल्स एंड यू लुक शार्प. और इसीलिए पहले से बता दिया जाता था कि फलाने दिन पे ना स्कूल पिक्चर्स ली जाएंगी, क्लास पिक्चर्स ली जाएंगी. एंड देन हमारे होते थे कि प्रिंसिपल जो होती थी सिस्टर एंसिला, माई गॉड वॉट अ ब्यूटी शी वॉज, शी वॉज शी इज सच अ ग्रेसफुल वूमन, क्या ही बताएं हम आपको. लेकिन हाँ वो होती थी, देन हमारी मेरी जो क्लास टीचर हुआ करती थी वो होती थी और साथ में वाइस प्रिंसिपल एज वेल. एक कॉल ले लूँ अगर इट इज अबाउट वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, इट इज श्योर ए वेलकम कॉल. यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हेलो, अभी आपका प्रोग्राम सुन रही थी. आप बता रहे थे पिक्चर का, तो हमारी भी सिस्टर की शादी हुई थी तो हम सब फैमिली ने मिलके पिक्चर बनाई थी.

0: Day, it is sure a welcome call.
1: हेलो,
0: You are live on air.
1: हेलो. अभी आपका प्रोग्राम सुन रही थी. आप बता रहे थे पिक्चर का, तो हमारी भी सिस्टर की शादी हुई थी, तो हम सब फैमिली ने मिलके पिक्चर बनाई थी.
0: अरे जी, क्या बात है, क्या बात है. यही तो यादें हम आज ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. एक्चुअली ऑन दैट नोट सईदा, आप ज़रूर मुझे कॉल करिएगा, क्योंकि आपका कॉल आया था. एंड यू नो व्हाट, मैं अपनी बातों में ये तो बताना भूल ही गई कि आप फन पिज़्ज़ा किचन के विनर हैं. तो प्लीज़ कॉल मी बैक इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी. प्लीज़ गिव मी अ कॉल बैक एंड आई वुड बी हैप्पी टू गिव यू दैट फन पिज़्ज़ा किचन $10 गिफ्ट कार्ड. लेडीज एंड जेंटलमैन, जी हाँ, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे कुछ यादें ही तो ताज़ा कर रहे हैं हम यहाँ पे आपकी. और तब की यादें क्यों, अब की भी यादों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आजकल ना क्या ही कहा जाए कि हमारे जो कैमराज हैं, दे ईट द फूड फर्स्ट एंड देन वी ईट. क्योंकि रेस्टोरेंट में अगर खाना सर्व किया जा रहा है, सबसे पहले पिक्चर्स ली जाती हैं, उसके बाद हम नोश फरमाते हैं, राइट? तो यस, आवर कैमराज ईट फर्स्ट डेफिनेटली. एंड दैट्स वॉट टूडेज टाइम इज, जहाँ पर हम बेस्ट पिक्चर्स लेते हैं, यानी कि एक के बाद एक 10,000 पिक्चर्स ले लेते हैं, और फिर उसके बाद उनमें से शायद कोई उतने जाकर हम देखते भी नहीं हैं. या तो चुनते हैं वो जो बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन परफेक्ट में थोड़ी ना वो मज़ा है जो वो कैंडिड पिक्चर्स में हुआ करती थी. मानते हैं कि नहीं?

0: जी हाँ, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हमने कुछ फोटोग्राफ्स को लेके ही बात की। होपफुली यू हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू ऑल दोज एनेक्डोज दैट आई शेयर एंड फ्यू ऑफ यू शेयर, जिनमें से मैं सईदा जी को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भाई यू हैव वन फ्रॉम फन पिज्जा किचन। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। अगर मुझे नहीं मिलता है तो अफसोस कि मुझे ये गिफ्ट कार्ड किसी और को देना पड़ेगा। और अफसोस, ये इतना भारी भरकम शब्द मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फन पिज्जा किचन में वाकई में द पिज्जा with that twist, that Indian twist and the Mexican twist that is very very new that you can enjoy. तो चाहे तो Indian twist या Mexican twist का जो pizza lineup है आपके लिए वो आप enjoy कर सकते थे, लेकिन अगर आप call नहीं करेंगी तो फिर मैं आपको कैसे दूंगी। इसीलिए ज़रूर call करें और जल्द call करें। Once again, keep listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. And while we are talking about various things, why not talk about AG FinTechs? Because this part of my show is brought to you by AG FinTechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the US, ladies and gentlemen. तो चाहे आपका startup हो या आपके established एक business हो, कोई भी need हो आपकी, AG FinTechs offers innovative financial solutions tailor made for you, particularly you. तो बुक कीपिंग से लेकर पेरोल अकाउंटिंग, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकॉन्सिलेशन से लेकर प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बिजनेस advisory services that you can avail with them. They help keep your finances absolutely organized और आपको बिल्कुल future ready, बिल्कुल ढिंचाक रखने वाले हैं अगर आप इनके साथ connect करते हो तो ही। AG FinTechs ज़रूर याद रखिएगा, agfintechs.com is the website and the number is 469-942-9888.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
9: अरे सारे तो सेम है।
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
9: ओ हाँ, ये तो अलग है।
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
12: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
13: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
10: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
12: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
14: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
15: लैपटॉप में।
14: इन्वेस्टमेंट?
15: गूगल ड्राइव।
14: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
15: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
14: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
10: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
16: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
10: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth.
17: डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान।
18: भूख लगी जोरों की, भूख लगी।
19: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
20: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू। ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
17: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एंबियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
21: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
22: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
21: Kya matlab?
22: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
21: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
22: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
21: Ab to karna hi padega, madam.
23: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
24: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
25: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
24: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
25: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
24: इंडिया तक।
25: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
17: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
26: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
27: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
26: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
27: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
26: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
27: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
26: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
28: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
29: Tracks that put you on the right track.

0: यू आर ट्यून्ड इन टू गपशप गली विथ मी टू और मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ी हैं. शी इज जॉइंट सेक्रेटरी इन पाकिस्तान सोसाइटी नॉर्थ टेक्सस दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग ऑन बोर्ड राइट नाउ. नाजिया खान जी के साथ बातचीत होने वाली है क्योंकि ऐसा है कि अगस्त का महीना जो है ना हमारी पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए हमेशा जश्न और खुशियों का महीना होता है और इन्हीं खुशियों को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस यानी कि PSNT. वो लेकर आ रहे हैं अपना शानदार कैद मेला 2026 विच इज़ दिस सैटरडे एंड वील टॉक अबाउट द टाइमिंग्स द वेन्यू और क्या एक्सपेक्ट कर सकती है पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जब वो अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ वहां पहुंचते हैं. गुड आफ्टरनून टू यू नाजिया जी, कैसी हैं आप?
1: हाय मी टू, आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग?
0: आई एम डूइंग फैंटास्टिक, थैंक यू फॉर आस्किंग. और बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करने में क्योंकि ये जो जश्न का पूरा एक मंजर एक जो तैयार है हमारे सामने वो आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि क्या तैयारियां हैं हमारे जो लिसनर्स हैं पाकिस्तान से वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
1: जी बिल्कुल, पहले मैं इस जश्न के बारे में बताऊं, इससे पहले आई मस्ट से आई एंजॉय योर शो, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस एंड व्हेनेवर आई गेट अ चांस आई ट्यून इन एंड आई लिसन टू योर शो, सो थैंक्स फॉर हैविंग मी.
0: एब्सोल्युटली माय प्लेजर एज वेल.
1: अच्छा, ये जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस हर साल कायद मेला ऑर्गेनाइज करता है ताकि हम जो मुल्क से दूर पाकिस्तानी हैं वो अपने इस दिन मिस करते हैं, स्पेशली इस दिन अपने मुल्क को के एक मुल्क से दूरी का एहसास होता है
0: जी.
1: तो वो इस एहसास को मिटाने के लिए इस मेले का इनकाद करते हैं और बड़ा लार्ज स्केल पे बड़ा जबरदस्त किस्म का ये मेला होता है. और आपने बिल्कुल वर्ड सही यूज किया कि ये जश्न की तरह होता है. और जब आप किसी ऐसे मेले में किसी जश्न में जाएं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि शॉपिंग हो ऑफ कोर्स, जब स्पेशली खवातीन शॉपिंग चाहेंगी और डिलिशियस फूड हो ताकि वहां पर होंगे तो भूख भी लगेगी तो फूड बूथ हो. और इसके अलावा एक आपका दिल करता है कि जबरदस्त किस्म की कोई लाइव सिंगिंग हो तो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस ने इन सब चीजों का इंतजाम किया है आपके लिए. वहां पर फूड कोर्ट होगा बाकायदा, उसमें जबरदस्त किस्म के खाने टेक्सस इंक की तरफ से होंगे और इसके अलावा शॉपिंग है के लिए डिफरेंट किस्म के बूथ्स होंगे और फिर जबरदस्त परफॉर्मेंस है रागा बॉयज की. और रागा बॉयज के बारे में बताती चलूं कि ये जो है सूफी रॉक बैंड है एंड दे आर नोन फॉर देयर लाइव परफॉर्मेंस, तो वो बड़ा जबरदस्त किस्म की इनकी परफॉर्मेंस होने वाली है. और इन सब चीजों से बढ़कर भी मैं कहूँ मीतू तो जो चीज है वो अपना कल्चर देखने को मिलेगा, अपने लोग और वो जो एक मिलकर इंडिपेंडेंस डे मनाने का मजा है ना वो इस दिन होगा.
0: बिल्कुल मेले जैसा माहौल होने वाला है, एक शानदार मेला होने वाला है कायद मेला जो कि आप जिसका हिस्सा बन सकते हैं. तो मुझे आप बताएं कि एक तो डेट मुझे पता है कि अगस्त 22 को है, सैटरडे, इसी सैटरडे को होना है और 3 बजे से शुरू होगा और कब तक चलने वाला है और वेन्यू क्या है?
1: जी बिल्कुल, आपने सही बताया, सैटरडे अगस्त 22 हमारे जो आपके जो लिस्टर्स हैं वो इस डेट को याद रख लें और टाइम है 3 PM ऑनवर्ड्स और रात 12 बजे तक ये मेला चलेगा. लेकिन जितनी आप जल्दी आएंगे तो जरा एक जो होता है ना शुरू में एक वो जो मजा होता है शॉपिंग का फूड का तो वो जल्दी ही आना चाहिए. और जो वेन्यू है वो साउथ फोर्क रेंच है और वेन्यू और जो इस सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग. अच्छा, आप किसी इवेंट में जाएं तो आज़फा फ्री एंट्री तो होती है मगर पार्किंग आपको मार देती है.
0: बिल्कुल,
1: यहाँ पर फ्री पार्किंग है, एम्पल पार्किंग है, आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. और ये सब चीजें जो अभी मैंने मेंशन की सब फ्री होंगी, फ्री एंट्री है और पार्किंग भी फ्री है, तो बस फिर आप लोगों का एक आना बनता है ताकि हम मिलकर इस मेले को एंजॉय करें.
0: एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि भाई बेहतरीन शॉपिंग एक्सपीरियंस और लाजवाब देसी खाना होने वाला है, ज़बरदस्त कल्चरल फेस्टिवल के तरह एक जो माहौल बनेगा रागा बॉयज के साथ. और मैं इनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी एंड यहाँ पे मुझे पता चलता है कि 200 साल की लेगेसी है इनकी. दे आर द 9th जनरेशन डिसेंडेंट्स ऑफ द लेजेंडरी पटियाला घराना.
1: पटियाला घराना, बिल्कुल,
0: बिल्कुल क्या बात है.
1: और पूरी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन जानकारी ली हुई है, तो इनको मिस करना बिल्कुल भी नहीं बनता,
0: बिल्कुल नहीं बनता।
1: इतने बड़े घराने से हैं और इनका जो एक गायकी और वो जो है वो तो उसकी तो बात ही अलग है पटियाला
0: बिल्कुल। और पता है नाजिया जी, आई एम श्योर आपको पता है, लेकिन मैं अपने बाकी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि 20 साल होने वाले हैं इस ग्रुप को, हो गए हैं एक्चुअली इस ग्रुप को, दे स्टार्टेड इन 2006, तो ये 2026 एक बहुत ही स्पेशल सेलिब्रेशन आई एम श्योर इनके लिए भी, और वो डैलस में होगा, कैद मेला के साथ जो होगा। वी आर टोटली लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम श्योर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी इज टोटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। थैंक यू सो मच नाजिया जी। और फिर एक बार मैं बताना चाहती हूँ अपने लिसनर्स को, इस सैटरडे को August 22 को डोर्स खुल जाएंगी आपके लिए, गेट्स खुल जाएंगी दोपहर के 2 बजे, 3 बजे से शुरू होने वाला है और रात के 12 बजे तक चलने वाला है एट द फेमस साउथ फोक रैंच इन पाकर। थैंक यू वेरी मच। एंड यस,
1: लास्ट थिंग मीटू मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए, जो भी आपके पाकिस्तानी लिसनर सुन रहे हैं, और व्हाइट और ग्रीन में आए तो और अच्छा लगेगा क्योंकि पाकिस्तान के फ्लैग के ये कलर्स हैं, और भरपूर इस मेले का मजा लें August 22 3 PM ऑनवर्ड साउथ फोर्क रेंज।
0: परफेक्ट,
1: थैंक यू फनेशिया रेडियो फॉर बींग आर मीडिया पार्टनर, हमेशा वो कम्युनिटी के अच्छे इवेंट्स को प्रमोट करता है। थैंक यू मीटू, थैंक यू फनेशिया रेडियो।
0: इट इज़ आर कम्प्लीट प्लेजर नाजिया जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हो गए, ये महीनों की तैयारी होती है जो फाइनली एक दिन में कल्मिनेट होती है, तो आप लोगों को बधाइयाँ एंड ऑल द बेस्ट टू यू। और मैंने आपके लिए और हमारी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बहुत अच्छा सा रागा बॉयज का गाना लाइनअप किया, जरूर सुनिएगा।
1: थैंक यू
0: जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।

0: You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. Passion Health Primary Care के लिए यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो तसल्ली से आपको पूरा पूरा वक्त देते हैं, that you so deserve when you go to your doctor, right? आप जल्दबाजी वाला काम नहीं चाहते हैं when it comes to your doctor visit, right? बाकी सब चीज में हमें जल्दबाजी रहती है, लेकिन ये एक जगह है कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर हमें आराम से पूरे पेशेंट्स के साथ हमारी बात सुने और फिर हमें बताए. तो Yes, for you, your family, your entire community, make sure Passion Health Primary Care के बारे में सब जान जाएं. और यहाँ पे आपके annual physical से लेकर anxiety care, fibroscan for alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, और भी बहुत सारी चीजें covered रहती हैं. यानी कि everything under one roof that you get at Passion Health Primary Care. तो जरूर करें schedule अपना appointment, आज ही उनके साथ बात कीजिए. Feel the vibe of the people there, because that is what creates that long-lasting relationship, right? तो हमें चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स ना ऐसे नहीं कि बार बार हमें चेंज करना पड़े. तो ये वो जगह है जहाँ पे आपके वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विथ योर डॉक्टर यू कैन एस्टैब्लिश एज अ डॉक्टर एंड पेशेंट. ऑफ कोर्स 2146666259 इज द नंबर फॉर अपॉइंटमेंट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज देयर पैशन.
1: था जो कुछ भी तुझ

0: That's all the time I have with you all. कल 10 बजे का अपॉइंटमेंट आपका है मेरे साथ, जरूर याद रखिएगा 10 से 12:30 के बीच. इट इज गपशप गली विथ मी टू. अप नेक्स्ट इज स्निग्धा विथ आफ्टरनून अड्डा फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज मी टू साइनिंग ऑफ फॉर द डे.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
3: अजी सुनते हो?
4: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
5: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस. एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो.
6: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
6: ये क्या होता?
7: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
8: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन. Available. Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
9: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
10: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
8: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
11: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
8: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
12: तुमसे मिलके दिल का है.
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
8: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

हेलो डैलिस, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आफ्टरनून अड्डा विद स्निग्धा, ओनली ऑन फनीशिया 104.9 FM पर। लंच का प्लान चल रहा है, अब वो वक्त आ गया जब काम सामने पड़ी है लेकिन दिमाग वीकेंड के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो आज थोड़ी बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे आसपास हो रही है, खाने से लेकर घूमने तक, डैलस में बदलती जिंदगी से लेकर छोटी छोटी नई चीज़ों तक, क्योंकि नया देखने के लिए हमेशा डैलस से बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बस नज़र थोड़ी बदलनी पड़ती है। डोंट थिंक डैलस इज बोरिंग जस्ट बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स। इट्स वेंसडे और हम बात करते हैं फूड, ट्रैवल, एक्सप्लोर विद इन डैलस और नियर बाय डैलस। सुनते रहिए आफ्टरनून अड्डा विथ मी आरजे स्निग्धा एंड लेट्स गेट आवर वेंसडे आफ्टरनून अड्डा स्टार्टेड।

आप बात करते कि खाने के बारे में, बिकॉज इट इज़ लंच टाइम और वेडनेसडे के दिन हम बात करते हैं फूड के बारे में. सो इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया और बाकी दुनिया का खाना, डैलस में रहने का एक मज़ा ये भी है कि खाने के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है. एक ही शहर में आपको दुनिया भर की स्वाद मिल जाती है. लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत दिलचस्प लगती है, दैट इज़ अब बात सिर्फ इंडिया खाना और दूसरे देशों के खाने की नहीं है. इट इज़ लाइक दोनों एक दूसरे में घुल रहे हैं. आई विल टेल यू द मैथ इन दिस. मसालों का स्वाद बर्गर में भी आ रहा है, टैकोस में भी आ रहा है, पिज्जा में भी आ रहा है, और कभी कभी नाम सुनकर लगता है ये क्या बना दिया. फिर एक बाइट लेते हैं और कहते हैं अच्छा है यार. शायद नए खाने को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये भी है, पहले सवाल कम एक बाइट ज्यादा. लाइक यू नो इवन डोमिनोज इज कमिंग विथ न्यू ट्विस्ट, न्यू काइंड ऑफ. Before the Domino's was so plain, but right now they are also adding up so many spices and they're like making it so a little desi also. So even other pizza places now, I don't even feel कि सिर्फ अमेरिकन पिज्ज़ा नहीं खा रही हूँ मैं. एंड हम डैलस में रहते हैं, पिज्ज़ा की तो हमारी बात कभी कम होती ही नहीं है. लेट्स कीप आर पिज्ज़ा टॉक्स गोइंग ऑन एंड लिसन टू वन मोर सॉन्ग.

मन मेरा और क्रेविंग भी मेरी। अगर मन करे कुछ चटपटे हटके और फुल ऑन देसी खाने का तो सीधा चले जाइए पेस्ट्री ईटरी एट हब 121। सिजलिंग कबाब से लेकर फ्लेवरफुल चाट, फ्यूजन बाइट्स और रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, हर बाइट में बोल्ड इंडियन फ्लेवर्स विद अ मॉडर्न ट्विस्ट। तो ब्रंच हो, डेट नाइट हो या फ्रेंड्स के साथ फूडी अड्डा, मन मेरा बोले पेस्ट्री चलो। विजिट पेस्ट्री ईटरी एट हब 121 एंड एक्सप्लोर pastryeatery.com। पेस्ट्री ईटरी, जब मन करे कुछ डिलिशियस। इट इज लंच टाइम, मैंने तो डिनर का प्लान भी बता दिया और आपकी इवनिंग चटपटे स्नैक्स का प्लान भी बता दिया, तो प्लीज हेड ऑन टू पेस्ट्री एट हब 121। एंड मैं इससे पहले पिज्जा के बारे में बात कर रही थी, आपने शायद पकड़ा नहीं, आई वॉज राइमिंग द पिज्जा विद द सॉन्ग। हु एवर हर्ड इट और जिनको समझ में आया मुझे जरूर बताइएगा। अंटिल देन, वन मोर ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर यू गाइज़।

You are listening to Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phanesia 104.9 FM par. Should I talk something interesting at this time? अब क्या इंटरेस्टिंग होगा ऑफिस वालों को. ऑफिस लंच इंटरेस्टिंग होता है. ऑफिस का लंच भी कितना बदल गया है. यू रिमेंबर बैक इन दोज डेज लंच टाइम मतलब एक बजे सब साथ में, ओ इट्स लंच टाइम. बट अब कोई घर से काम कर रहा है, कोई 11 बजे खा रहा है बिकॉज दे थिंक अर्ली लंच, अर्ली डिनर, अर्ली वेक्स अप इज अ कूल थिंग राइट नाउ. सो सभी भी अपने अपने टाइम के हिसाब से, किसी को एक बजे मीटिंग होती है और कोई दो बजे को कॉफ़ी और कोई लंच कहकर कुछ और ही करते हैं कि बोलते कि आई एम जस्ट ऑन अ डाइट सो आई जस्ट हैव फ्रूट्स और आई जस्ट हैव अ लिक्विड डाइट. लेकिन एक चीज़ मिस हो गई है, वो अचानक होने वाली बातें. कभी किसी के साथ लंच पर बैठ कर पता चलता है कि वो इंडिया के किसी और शहर से भी है. बिकॉज इन आर ऑफिस वी हैव डिफरेंट कलीग्स, उनके बारे में अगर मुझे जानना है, आई नो ऑफिस गॉसिप्स आर अ थिंग, बट talking about life, talking about where are you from, what kind of foods you eat, it is something different. So you should always not just gossip, you should even talk something good also. किसी की घर की कोई अलग रेसिपी मिल जाती थी, किसी के पास किसी छोटे से रेस्टोरेंट की ज़बरदस्त सिफारिश होती थी. आजकल हर बात के लिए कैलेंडर में जगह चाहिए. कभी कभी सोचती हूँ लंच को बस लंच रहने चाहिए बिकॉज हर बात की कोई काम का नतीजा ज़रूरी नहीं होता है. सो इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लंच, जस्ट टॉक अबाउट लंच. डोंट थिंक कि ओ आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू मेक इट टुडे, लेट्स सी इफ वी कैन डू इट टुमारो. बस लंच की तो बात है यार, किसी अच्छे के साथ बैठो, गप्पे शप्पे लड़ो और अच्छे से खाना खाओ और उसके घर की रेसिपीज भी जान लो. इट इज़ जस्ट अ फन टॉक, नॉट जस्ट ऑफिस गॉसिप्स लंच टॉक.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route. Rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
2: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
1: क्यों?
2: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hurst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
7: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
4: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
7: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
8: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
6: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
13: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

आई विश डालिस की गर्मी भी पानी ओसा हो जाए. यू आर लिसनिंग टू द आफ्टरनून अड्डा विथ मी आर जे स्निग्धा ओनली ऑन फनीशिया 104.9 FM पर. डालिस में नई चीजें देखने को मिलती रहती है. मैं तो डालिस के बारे में ही बात करूंगी. आई नो आफ्टर लिसनिंग टू दिस आप सोच रहे होंगे ओ ये तो वापी भी हो रहा है. बट लेट मी टेल यू अभी हम खाने की बात कर रहे तो अब खाना मंगवाने का तरीका भी बदलने वाली है. इस हफ्ते डालिस में ड्रोन से खाना पहुंचने की बात काफी चर्चे में है. सोचिए अपने खाना मंगवाया, दरवाजा की घंटी नहीं बजी, कोई गाड़ी सामने ने नहीं रुकी और खाना आसमान से आ गया. पहले ये किसी फिल्म के जैसा लगता था मुझे बिकॉज आई हैव नॉट सीन दिस इन इंडिया येट और मैं यहाँ पे भी नहीं देखी हूँ. आई हैव सीन द कैब्स विदाउट ड्राइवर्स एंड ऑल पर मैं फूड का तो आई डिड नॉट. अब धीरे धीरे दिस फूड थिंग इज गोना गेट इन टू ड्रोन एंड वी डोंट हैव टू वेट फॉर 50 मिनट्स जो डोडैश बोलती है हमें कि 50 मिनट्स टू 1 आवर. और शायद इसीलिए डैलस इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज कितने रेस्टोरेंट्स हैं यार और हमें खाना भी बहुत जल्दी चाहिए बिकॉज वी आर नॉट समवन जो लंच पहले प्लान करते. जब खाना मंगवाना ओ लेट मी जस्ट ऑर्डर इट और हम सोचते कि 20 मिनट में खाना आ जाएगा. बट आई होप दिस ड्रोन वाली आइडिया से सच में 20 मिनट नहीं 10 मिनट में खाना आ जाए. अंटिल देन प्लेइंग द नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू गाइज़.

टू ऑल माय बिजी पीपल्स, बिकॉज यूएस में सब लोग तो आधे बिजी ही होते हैं, इवन आप घर पे भी हो, हम सब बिजी है, बट हेल्थ के लिए थोड़ा टाइम तो बनती है, राइट? इसीलिए पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में एवरी अपॉइंटमेंट गेट्स 30 मिनट्स, बिकॉज आपकी हेल्थ को समझने के लिए सिर्फ 5 या 10 मिनट काफी नहीं होते हैं. दे इवन हैव एनुअल फिजिकल एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मोर, ऑल अवेलेबल. आप सिर्फ पेशेंट नहीं, उनके लिए फैमिली बन जाते हैं. कॉल दैम एट 214-666-6259 एंड बुक योर अपॉइंटमेंट टूडे. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज देयर पैशन. अंटिल देन, वन मोर ब्यूटिफुल ट्रैक फॉर यू गाइस. सुनते रही है फनेशिया 104.9 FM.

It's August and it is all celebrations start time for us Indians. Rangi sari celebrations bhi honi chahiye ekdam colorful. Wedding ho, graduation, housewarming ya koi bhi special celebration. Planning ka stress kyun lena hai? Vanessa Evans brings it all together when you beautiful decor by Signature Evans, photography, hospitality and delicious catering services by the Basera Grand. Aap bas memories banaiye. बाकी अरेंजमेंट्स वेनेसा इवेंट्स पर छोड़ दीजिए. कॉल हरी बसेरा एट 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर. सो आई हैव गिवन यू ऑल द डिटेल्स. अगर कुछ है आपके लिए आपकी मन में, लाइक यू हैव एनी प्लान्स इन द फ्यूचर फॉर सेलिब्रेशंस, यू नो डैलस में तो शादियां हो रही है, हाउस वार्मिंग्स तो चलते ही रहते हैं, यू हैव द बेस्ट पीपल, दैट्स वेनेसा इवेंट्स. इफ यू नीड देम कॉल देम राइट अवे एंड प्लान योर मोस्ट सेलिब्रेटिव मोमेंट.

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
1: चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट डुरांड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली। व्हाट वुड हैपन टू योर बिजनेस इफ अ की ओनर, पार्टनर और टॉप एम्प्लॉय पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
3: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
4: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
5: Hey, tumne kabhi insurance liya?
6: Liya.
5: Kabhi policy samajh bhi aaya?
6: Nahi aaya.
5: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
7: Visit www.sanadainc.com today.
8: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.
9: Dad, property papers कहाँ हैं?
10: लैपटॉप में।
9: इन्वेस्टमेंट?
10: गूगल ड्राइव।
9: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
10: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
9: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
1: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
11: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
1: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess, leave a plan.
12: Dallas, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए।
13: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल। एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज।
12: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज,
13: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास। डोर्स ओपन एट 2 PM. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
1: Media partner Fun Asia Network.
14: Zindagi ke kai rang. Fun Asia Radio ke sang.

तैनू संग रखना सिर्फ एक गाना नहीं है, सिबलिंग बॉन्ड की वो फीलिंग है जो हमेशा दिल के पास रहती है। इस रक्षाबंधन फनीशिया रेडियो और चौकटो कैसीनो एंड रिसॉर्ट दुरंत के साथ शेयर कीजिए अपनी भाई या बहन के साथ की एक सबसे अनफॉरगेटेबल मेमोरी ऑन आफ्टरनून अड्डा। स्टूडियो को कॉल कीजिए 9722355555, अपनी स्टोरी सुनाइए और जीतिए एक्साइटिंग डेली प्राइजेस, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट, रिसोर्ट स्टेज और बहुत कुछ। एंड द ग्रैंड प्राइज सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटो कैसीनो एंड रिसोर्ट दुरंत। तो इस राखी तेनू संग रखना और अपने सिबलिंग के साथ वो स्पेशल मेमोरी हमारे साथ शेयर करने का ना भूलना। यू मस्ट बी 21+ एंड टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, प्ले रिस्पॉन्सिबिली एंड आई एम हियर अंटिल 2:30 टू लिसन टू योर ब्यूटिफुल सिबलिंग स्टोरीज। नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू गाइज।

are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Funisha 104.9 FM. So it's already Wednesday. I know aapki weekend planning already ho rahi hogi. So guys, agar is weekend Dallas ki heat se break chahiye, to ek slightly hidden spot try karo, Sunset Bay at White Rock Lake. Sunset, you heard me right, kyunki sunset mein hi jana, usse pehle na jana, kyunki ye heat ki wajah se aap sunset nahi dekh payenge, next day aapko sunstroke हो जाएगा। यहाँ का वाइब बिल्कुल मिनी गेटअवे जैसी है, लेक के काम वाटर, सनसेट के गॉर्जियस व्यूज और दूर से डैलस की स्काईलाइन। और इंटरेस्टिंग पार्ट, लोग यहाँ एक लिटिल हिडन डॉक भी डिस्कवर करते हैं, परफेक्ट फॉर दोज इंस्टा वर्दी मेमोरीज। सो दोस्त या फैमिली के साथ एक पिकनिक बास्केट लो, इवनिंग में निकलो, म्यूजिक ऑन करो और बस चिल करे डैलस की बीच में, इतना पीसफुल स्पॉट, वीकेंड प्लान सॉर्टेड। So I've already told you, I'm again telling you, it's Sunset Bay at White Rock Lake. I know some people might have already known it, but I have been there last weekend. It was so beautiful and worth watching. Picnic basket mat bhulna, because for us, you know, khana bahut zaruri hai wherever we are. Khakra, fafda, yeah, just take a cool chill juices because it's summer, stay hydrated.

आज की ट्रैफिक अपडेट लेकर आई है स्निग्धा। एयरविंग से फ्रिस्को, फ्रिस्को से मैकिनी, DFW रोड्स पर आज भी ट्रैफिक का प्रेशर फुल ऑन है और जब रोड्स बिजी होते हैं एक छोटी सी मिस्टेक भी एक्सीडेंट में बदल सकती है। सो ड्राइवर्स प्लीज स्टे अलर्ट, डिस्टेंस मेंटेन करें और फोन साइड में रखिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो ही जाए तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ सब कुछ अकेले हैंडल करना जरूरी नहीं है। अटॉर्नी उमर ख्वाजा आपके केस में फाइट करने और कॉम्पेंसेशन के लिए हेल्प करने में रेडी है। यू डोंट पे अंटिल यू विन। फॉर फ्री कंसल्टेशन एंड फर्दर यू कैन कॉल देम 4693005046। रोड पर सेफ रही है और एक्सीडेंट हो गई तो अपने राइट्स के लिए राइट फाइट भी कीजिए। एंड सुनते रहिए आफ्टरनून अड्डा विथ मी। नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू।

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Beta, 95% आए?
2: हाँ मम्मी.
1: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
3: मेरा?
1: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
6: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
5: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं.
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
1: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो.
10: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
11: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
10: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
11: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
10: और एंटरटेनमेंट?
11: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
10: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
11: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
12: ये तारा वो तारा हर तारा.
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
13: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
14: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग.

are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phoenicia 104.9 FM पर. और जब बात हो किसी हीरे को स्पेशल फील कराने की, तो स्पार्कल भी स्पेशल होनी चाहिए. इस सीजन सेलिब्रेट कीजिए तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के साथ. गेट अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस, प्लस 18 कैरेट से ऊपर की ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0% डिडक्शन. यू हर्ड मी राइट, 0% डिडक्शन. तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई हीरिए है, इस सीजन उसे दीजिए टाइमलेस स्पार्कल. विजिट तनिष्क इन फ्रिस्को. तनिष्क, कुछ रिश्ते प्राइसलेस होते हैं, उनका स्पार्कल भी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, विजिट कीजिए तनिष्क. अंटिल देन कीप लिसनिंग टू 104.9 FM. अगला गाना आपके लिए.

You are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phanisha 104.9 FM पर. अगर आपको लगता है farmers market मतलब सिर्फ vegetables और grocery shopping, तो इस weekend एक different experience try कीजिए. Cowtown farmers market is Saturday हो रही है White Settlement में. सबसे interesting बात, ये producer only market है, मतलब जो vendor sell करते हैं वो खुद grow भी करते हैं, raise या product करते हैं. यहाँ fresh seasonal produce के साथ eggs, meat, honey, baked goodies, salsas और local treats भी मिलते हैं. और yes, it's a dog friendly place too, so grab your tote bag अपना four legged friend के साथ इस Saturday morning, बना दो local food adventure, लोकल खरीदो, लोकल को सपोर्ट करो. आई लव फार्मर्स मार्केट एंड दिस सैटरडे इट्स हैपनिंग एट Cowtown Farmers Market. If you are a fan of organic things and if you want farming fresh, you must go here and shop it, because I am a lot of organic person.

0: सो इट्स वेंसडे, सो हम बात कर रहे थे अबाउट फूड एंड प्लेसेस टू गो. सो फूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो नाउ आई हैव अ गिव अवे रिलेटिंग अ फूड रेस्टोरेंट. इट इज़ नन अदर देन सैन इडली रेस्टोरेंट. हियर्स योर चांस टू विन अ डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस अ फिल्टर कॉफी एट सैन इडलीज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. इट इज़ 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ ऑथेंटिक फ्लेवर्स. क्रिस्पी डोसाज भी है, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स. और जिनको साउथ इंडियन खाना बनाना नहीं आती है, गो टू सैन इडली. एंड द गिव अवे इज एनी चॉइस ऑफ योर डोसा विथ वन फिल्टर कॉफी. तो गिव अवे तो सवाल तो बनती है. एंड यू नो हाउ आई आस्क द सवाल, इट इज जस्ट आई एम गोना प्ले अ फेमस एक्टर्स डायलॉग. आपको बस वो एक्टर कौन है मुझे कॉल करके बतानी है एट 972-235-5555 पर. सो हूएवर वांट्स द डोसा आराम से सुनो और जल्दी से कॉल करो. एंड आई एम प्लेइंग इट राइट अवे.
1: अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है?
2: ये आपके बड़े भाई से विकी ओबेरॉय की.
1: विकी ओबेरॉय की है? बेच मारो इस कैबिन को
2: जी.
1: और इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नया अकाउंट में डाल दो
2: जी.
1: ये कैबिन किसकी है?
2: ये आपके दोनों चाचाओं की है.
1: बेच मारो इसको
2: जी.
1: और इसके पैसे जो है
2: आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो.
0: समझ आ गई कौन है, तो कॉल कीजिए और बता दीजिए और पाइए डोसा विद अ फिल्टर कॉफी.

0: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
1: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
3: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
2: कैसे?
3: पेज 3 ईटरी?
2: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
3: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
2: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
1: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
5: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
4: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
5: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
4: इंडिया तक।
5: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
1: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
16: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
17: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
18: हेलो नमस्ते और आपका स्वागत है फन एशिया 104.9 FM पे। आवाज कुछ जानी पहचानी है पर वो आवाज नहीं है जो आप हर दिन इस समय पे सुनते हैं। जी हाँ, ये आवाज है आपके होस्ट आयुषी की। किरण जी आज हमारे साथ नहीं है तो बस भूले भटके दौड़ते भागते यहाँ वहां से पहुंच गई हूँ मैं स्टूडियो और आपको एंटरटेन करूंगी आज शाम 5 बजे तक। आप सुन रहे हैं फन एशिया 104.9 FM, आपकी होस्ट आयुषी के साथ एंटरटेनमेंट का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।

My Time Equity, led by CPA Sudhir Pai, helps individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunity, and alternative investments. Whether you are planning for long-term wealth, retirement, or growing your investments, My Time Equity offers personalized solution designed around your goals. MyTimeEquity.com पे जाइए और इनको कॉल करिए 4697021272. आई रिपीट, दैट्स MyTimeEquity.com और यू कैन कॉल देम ऑन 4697021272 टुडे. तो चलिए फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं मेरे शो में, जहाँ पे मैं आपके साथ शाम के 5 बजे तक हूँ और हम ढेरों खूबसूरत गाने सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आपके रिक्वेस्ट भी लेंगे, फरमाइशें भी लेंगे. तो स्टूडियो का नंबर याद दिला रही हूँ, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने पसंद के गाने बजवा सकते हैं. फिलहाल आज सोच रही हूँ किस विषय पर चर्चा की जाए, तो विषय तो याद करके सोच के नहीं आई हूँ, बट हाँ फिलहाल ना मैं एक शो देख रही हूँ और बड़ा ही फेमस शो है ये. बहुत दिन से मेरे फ़ोन पे इसकी रिकमेंडेशन आई जा रही थी, क्लिप्स आए जा रहे थे, तो मेरा मन किया क्यों ना इसके बारे में बात करें. और बहुत ही यू नो लोग उस उनके कैरेक्टर्स में से किसी को चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, और वो शो है मुसाफिर कैफ़े. मुसाफिर कैफ़े एक नॉवल पे बेस्ड है और उसकी कहानी है. कहानी मैंने अभी जस्ट 2-3 एपिसोड्स देखे हैं, बड़ी प्यारी सी कहानी लग रही है. लेकिन अब क्योंकि क्लाइमैक्स तो हमें पता लग गया है ये रील व्हील के थ्रू, बट स्टिल देखने में बहुत मज़ा आ रहा है. और लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, आप किसको चूज़ करेंगे, प्रीति को या सुधा को? अब पता नहीं किसको चूज़ करेंगे, पर यार देख करके ना मज़ा बहुत आ रहा है. और हर किसी के ज़िंदगी में वो टाइम, ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में मैं कहूँगी टाइम आया होगा जब प्रीति या सुधा दो ऑप्शंस होंगे, और किसको चूज़ किया ये बताना बहुत मुश्किल है. ऐसे बहुत सी कहानियाँ मैंने रेडियो पे सुनी है, जब मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो लोग बोलते हैं और अपनी कहानियाँ मुझसे शेयर करते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम लेके किस्सा मत सुनाइएगा, पर बहुत सी कहानियाँ हैं जहाँ हमें अपने पहले प्यार को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, और उसके बाद जो इंसान आता है उसमें हम अपने पहले प्यार की झलक ढूंढते हैं या नहीं, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है. तो अगर आप इस पर चर्चा करना चाहें तो कॉल करें. वैसे मुसाफिर कैफ़े बहुत ही प्यारा शो है, अगर नहीं देखा है तो देखिए जाके.

तो भाई हम बात कर रहे हैं बहुत ही प्यारे और खूबसूरत एक ओटीटी शो की, जिसका नाम है मुसाफिर कैफ़े। मुसाफिर कैफ़े से चर्चा, मतलब इसके बारे में सोच रही थी कि ये इतनी जल्दी जल्दी लोगों की ज़िंदगी में प्यार बदलता है, ये तो रियल लाइफ में थोड़ा मुश्किल होता है। नॉवल पे बेस्ड है इसलिए कहानी देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, पर यार एक सिचुएशन तो लाइफ में ज़रूर आई होगी जहाँ पर आपको हुआ होगा प्यार और मम्मी पापा ने कहा होगा कि बेटा प्यार नहीं करना है, शादी करनी है, भी हमारी मर्ज़ी से। ऐसा सिचुएशन मुझे लगता है हर किसी के जीवन में आया होगा। कुछ लोगों ने अपने माँ बाप को बताया होगा, बाकियों की तो हिंदुस्तान में हिम्मत ही नहीं होती है बोलने की कि हमको प्यार हुआ है। आई डोंट नो आज का सिनेरियो क्या है, बट अगर यू नो आई आई आई गो बैक सम 10-15 ईयर्स बैक ऑफ माई लाइफ, देन आई थिंक मेरे में हिम्मत नहीं थी मम्मी पापा को बोलने की, और अगर हिम्मत करके बोल भी दिए थे उसके बाद से भी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई ये नहीं पता। करना सबको अपनी मर्जी का था, और एक एक मन में ख्याल आया कि चाहे अरेंज मैरिज में कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, माँ बाप को एक वो फीलिंग आती थी कि बस मेरे बच्चे ने मेरी मर्ज़ी से शादी कर ली, समाज में और दुनिया में हमारा नाम रह गया, बस यही इम्पोर्टेंट है। पता नहीं ये चीज़ें अभी बदली हैं या नहीं बदली हैं, यहाँ तो बदल गई हैं, हिंदुस्तान का मुझे नहीं पता। लोग बड़े शहरों की बात करेंगे तो मे भी सब कुछ बदल गया है, बट छोटे शहरों में आज भी लोग शादियों को लेकर के, लव मैरिज को स्पेशली लेकर के बड़े ही स्केप्टिकल्स हैं। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में ज़रूर बताइए मुझे स्टूडियो के नंबर पे कॉल करके, और उसके पहले हम आपको दे दें कुछ ज़रूर जानकारी, मतलब गाने के पहले एक ज़रूरी जानकारी दे दें। तो भाई एक्सीडेंट कैन हैपन इन सेकेंड्स, बट रिकवरिंग फ्रॉम इट कैन टेक मच लॉन्गर। इफ़ यू हैव बीन इन्वॉल्व इन अ कार क्रैश, ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल, लेट अटर्नी उमर ख्वाजा हैंडल द लीगल बैटल विथ यू and yeah, while you focus on healing, he'll fight for the compensation you're entitled to and you pay nothing unless your case is won. You can call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com for your free consultation. तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं। अगर कुछ ये अरेंज मैरिज लव मैरिज पे आपके विचार हैं तो ज़रूर दीजिएगा मुझे स्टूडियो के नंबर पे कॉल करके।

0: तो भाई गजब का मतलब स्टूडियो में कॉल, तो कॉल्स की भरमार हो गई है। अगर मैं आपके कॉल नहीं ले पाई हूँ इस बीच में तो माफी चाहूंगी। बट हाँ, ये टॉपिक बड़ा पसंद आया सबको, अपनी कहानियाँ और किस्से लोग मुझे बता रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब आज की नहीं, 1986 की कहानियाँ और आज से 50 साल पुरानी कहानियाँ मेरे सामने आई, जहाँ पर लोगों ने अपने मर्जी से प्यार किया। यार एक बड़ी प्यारी सी लव स्टोरी आई सामने, जहाँ पर लोग कैनेडा में मिले। एक जो हमारे लिसनर थे वो खुद कनाडा में रहते थे, उनकी वाइफ यूएस में रहती थी, वो आई वहाँ कनाडा छुट्टियों में, प्यार हुआ, फिर दोनों ने अपने अपने स्कूलों कॉलेजेस पूरे किए यहाँ, अब कनाडा और यूएस में। और उसके बाद फ़ोन आया कि भाई देखो मेरी पढ़ाई पूरी होगी, मम्मी पापा शादी कर देंगे अगर तुम नहीं करोगे मुझसे शादी। तो भाई करना क्या था, जनाब ने सामान उठाया, बैग पैक किया और वो चले आए डैलस, और तब से लेके आज तक डैलस में ही है और अपने प्यार के साथ अपनी उम्र बहुत प्यार से बता रहे हैं। तो मज़ा आता है यार ऐसी कहानियाँ सुन के या किस्से सुन के, एंड लोगों को मेरा टॉपिक पसंद आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से आपको जानकारी दे दें कि भाई पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ प्राउडली केयर फॉर आर कम्युनिटी, नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग लग्जोनी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्या। लग्जोनी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सिटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ। Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime, no appointment needed. और अब वक्त हो रहा है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन आपके होस्ट आयुषी आपके साथ बनी रहेगी और आपको बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर खूबसूरत गाने आपके पसंद के सुनाते रहेगी। कहीं मत जाइएगा, अपनी कहानियाँ शेयर करिए। भाई देखिए, अब सक्सेसफुल प्यार की तो बहुत कहानियाँ सुनी है हमने, दिल टूटा हो उसकी भी एक कहानी हो जाए यार। मतलब कहीं तो ऐसा हुआ होगा जहां पर दिल टूटा होगा, अगर नहीं टूटा तो बहुत अच्छी बात है, टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फिलहाल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं और फिर गप मारेंगे इसी बात पे, इसी टॉपिक पे।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM

0: HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM.
3: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
4: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
3: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
4: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
5: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
6: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
7: Calculating route. Rerouting.
6: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
7: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
6: क्यों?
7: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
6: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
8: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट।
7: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
2: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
3: जिंदगी एक रंगमंच है
4: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
5: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
6: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
5: कहाँ?
7: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vive, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
0: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
8: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
9: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट. एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
10: Tracks that put you on the right track.
11: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और आज इस समय मैं स्टूडियो में हूँ किरण जी की जगह पे. किरण जी नहीं आ पाई, कुछ अपना काम था उनका, तो बस मुझे मौका मिला और मैं स्टूडियो तक आ गई. मजा आता है आपके साथ बातें करने में, शो करने में, तो हम यहाँ पहुंच गए हैं. फिलहाल आपकी फरमाइशों की लिस्ट मेरे पास आ गई है, तो उन गानों की तरफ चलते हैं. और चर्चा कर रहे थे लव मैरिज और अरेंज मैरिज, जो कि आज के टाइम में भी बहुत बड़ा टैबू है कई जगहों पर, कई शहरों पर. माँ बाप आजकल मान जा रहे हैं, कहीं नहीं भी मान रहे हैं. तो जहाँ नहीं मान रहे हैं वहाँ पहले ज़्यादा कुछ नहीं होता था, ज़िंदगी चल जाती थी. आजकल बड़े बड़े कारनामे हो जा रहे हैं, तो इसलिए ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, बहुत सारी प्यारी कहानियाँ सुनी जहाँ पर किस तरह अपने प्यार के लिए लोगों ने स्टैंड लिया और कई लोग चुप भी रह गए, क्योंकि भैया मम्मी पापा की बात तो माननी पड़ेगी. अब किसकी बात मानी जाए, क्या किया जाए, इस पर हम राय नहीं देंगे. बस बात इतनी सी है कि अगर प्यार है और अगर आपको कोई सच में पसंद है, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो एक बार अपने पेरेंट्स को बोलिए, थोड़ी सी कोशिश करिए, शायद वो आपकी बात मान जाए. मानी जाएंगे मोस्टली. आजकल सब लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए, पुरानी बातों पर, पुराने समय वाली बात नहीं रही है अब.

कहाँ हम मुसाफिर कैफे की बात कर रहे थे और कुछ लोग मेरी ही बैंड बजाने पे लगे हुए हैं। लोग बोल रहे हैं कि आप ही बात कर लो, हमसे तो हो नहीं पा रहा है, आप ही हमारा काम करवा दो बात करके। मैंने बोला मुझे क्यों बसा रहे हो, घर पे बात करो यार, मतलब वहाँ सेटिंग करो, बेचारे बच्चे की जान क्यों ले रहे हो, है ना। हम बात कर रहे थे मुसाफिर कैफे और ये लव मैरिज अरेंज वाले मैरिज वाली चीज़ों पर, जिस पे चर्चा चलती रहेगी। लेकिन उसके पहले आपको जानकारी दे देते हैं। तो फॉर 13 ईयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी, नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग लिनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाई डॉक्टर मनदीप आचार्या। लिनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्स रे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ। तो भाई सातों दिन हफ्ते में खुला रहता है, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। यू कैन वॉक इन एनी टाइम, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। सुधा और प्रीति मुसाफिर कैफे की दो लड़कियां और उनको प्यार हुआ है चंदर से। सुधा वो जिसका जो पहले आती है चंदर की जिंदगी में, जो कि एक अरेंज मैरिज के थ्रू इनको मिलाया जाता है, फिर वहां से ना बोल के निकल जाते हैं, फिर से इनका मिलना शुरू होता है और लव स्टोरी बन जाती है। और फिर सुधा एक एम्बिशियस लड़की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए चंदर को बोलती है, मैं अपने सपनों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। चंदर बोलते हैं जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और फिर चंदर अपने सपनों को लेके निकल जाता है पहाड़ों में। वहाँ वो प्रीति के साथ अपने सपनों को पूरा कर रहा होता है, लेकिन सुधा वापस आ जाती है। और सुधा जब वापस आती है तो चंदर सुधा और प्रीति के बीच में से किसी एक को चुनता है। ये है कहानी मुसाफिर कैफे की। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, एक नॉवल पे है। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो आप वो किताब पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इस सीरीज़ के बीच में हूँ, मैं पढ़ने की उतनी शौकीन नहीं हूँ, बहुत आलसी हूँ, इसलिए मैं देखना पसंद करूँगी। पर अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो ज़रूर पढ़िए इस नॉवल को जा कर के। और जहाँ तक रही अरेंज मैरिज और लव मैरिज की बात, भाई देखिए अल्टीमेटली दोनों में मैरिज कॉमन है, वो तो होना ही है। और फिर लव हो या अरेंज हो, पंगे तो होने ही हैं भाई, इसलिए शादी कर लो, घी का लड्डू खाओ भी ना खाओ भी तो पछताओ, ना खाओ भी तो पछताओ। फिलहाल ये गाना हमारे कॉलर के लिए।

0: Attention, Texas business owners looking for a smarter commercial energy solution? Trust Tara Commercial Energy, proudly serving Texas business since 2002. जी हाँ, तो तारा कमर्शियल एनर्जी इज प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002 विद कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स. तो आप कॉल कर सकते हैं इनको 844-428-2808. विजिट taraenergy.com टुडे. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. अगला गाना लाइनअप करके रखा है. कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है हमारी यार, ऐसा नहीं, हम हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते. क्योंकि बात ही ऐसी कर रहे थे, भी मेरी कॉल लगा होने आया था एंड वी वर डिस्कसिंग मुसाफिर कैफे कि चंदर, सुधा और प्रीति, ये तीन कैरेक्टर्स. आई एम सो इंटरेस्टेड अबाउट दिस टॉपिक टुडे बिकॉज आई एम वॉचिंग इट एंड आई एम रियली लविंग इट. आई जस्ट वेंट बैक अ कपल ऑफ इयर्स. अगर आपने नहीं देखी है मुसाफिर कैफे, देखिए, मेरा रिकमेंडेशन है, देख लेना चाहिए एक बार. तभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि किसको आप खुद में किसको देखते हैं, प्रीति को या सुधा को. तो अगर हम अपनी बात करें ना, तो आज से अगर हम अपने 20s में अगर वापस चले जाते हैं तो हम खुद में प्रीति को देखते हैं. लेकिन अगर आज की इस समय की बात करो, जिस समय का ज़माना है और जिस समय का जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, हम सुधा हैं. तो अगर आयुषि छोटी होती तो वो प्रीति बन जाती और अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए बिल्कुल उस ज़िंदगी में ठहराव ढूंढती, बस उस बंदे के साथ रहना चाहती जिसे वो प्यार करती है. लेकिन आज के टाइम में सुधा बनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बात मेरी कॉलर ने मुझे समझाई. तो अगर ऐसी कुछ बात आप मुझे समझाना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और आज मैं आपके साथ 5 बजे तक हूँ. आपको बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने सुनाती रहूंगी.
1: Blackmail your present to ruin a beautiful future.

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, यू रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

So if your child is in third grade through fifth grade, Next Gen Speakers Academy can help them build their communication and leadership skills they'll use for a lifetime. Ji haan. And it's created by experienced coaches Sunhee Simon Santiago and Audra Langston, who have mentored debate champions and Ivy League graduates. This online program is designed to help young minds grow into confident leaders. To learn more, you can visit nextgenspeakersacademy.com or you can call 214-724-2867. I repeat, it's 214-724-2867. Give your child the confidence to lead tomorrow. Starting today. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और बड़ी ही प्यार मोहब्बत वाली चर्चा हो रही है और इसमें बात हो रही थी कि आपको आप खुद में किसको देखते हैं, प्रीति या सुधा, मुसाफिर कैफे, उसकी बात कर रहे हो जिनने अभी सुनना शुरू किया है। बट दूसरा सवाल मेरे मन में आता है, क्या क्लोजर्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं एक रिलेशनशिप में? एक रिलेशनशिप में कई बार अनसेड एग्जिट्स होते हैं ना, पता नहीं होता है क्या होने वाला है। तो क्या क्लोजर सच में इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में? क्या लगता है आपको? अगर आपने ये शो देखा है या फिर आपके जो विचार हैं एक रिलेशनशिप को, प्यार को लेकर के, कि अगर कोई आपका पार्टनर है जो आगे बढ़ना चाह रहा है तो हम उसको जाने देते हैं, पर क्लोजर किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की बात को क्लोजर का नाम देंगे, बस यही कहना है मेरा फ़िलहाल। ये गाना मुसाफिर कैफे से।

0: So here was this beautiful song from Musafir, and I just had a beautiful discussion with one of my callers, and हमने अपनी अपनी बातें शेयर की. उन्होंने अपना तर्क दिया कि जिंदगी से जब कोई चला जाता है, चाहे प्यार क्यों ना, अपना कोई परिवार का भी क्लोज हो, वो चला जाए ना, तो हम उसको धीरे धीरे भूल के ओवरकम कर जाते हैं. बट मैंने उनसे ये पूछा, चला तो गया है वो, ठीक है, लेकिन वो गया हुआ इंसान अगर वापस आ जाए तो दिमाग में 2 मिनट के लिए तो घंटी बजेगी यार, पुरानी यादें फिर से आएंगी सामने. वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, जाइए वापस आइए और फिर.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Weekend ka plan abhi tak nahi mila. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
3: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
3: ये क्या होता है?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
6: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं.
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं.
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं.
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
10: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: It's Hoko.
14: अरे बस भी करो यार.
13: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
15: नाम Hoko हो या Ocho, क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
16: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko, अब Frisco में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
17: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
18: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
19: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
2: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
3: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
2: Fikar not. We have the perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
7: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
7: ओ हाँ, ये तो अलग है.
13: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज़,
12: Discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
20: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
21: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
12: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
22: तुमसे मिलके दिल का है।
21: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
12: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
23: नेशन का फन स्टेशन फन एशिया रेडियो।
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और आज किरण जी की जगह पे मैं आपको एंटरटेन कर रही हूँ शाम के 5 बजे तक। मेरी बातें सुनिए, मेरे साथ गाने सुनिए, मुझे अपनी रिक्वेस्ट दीजिए, मैं आपके पसंद के गाने प्ले करूंगी और हाँ ऐसे ही गप्पे मारते रहेंगे। आज फिलहाल हम प्यार मोहब्बत इश्क पुराने प्यार की बातें कर रहे हैं, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं एक ऐसी ही नॉवल सीरीज जो कि अभी बड़ी फेमस है, मुसाफिर कैफे। उसके ऊपर उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ करा, प्यार के बारे में बात करी, शादी के बारे में बात करी, पुरानी कहानियाँ सुनी सबसे और फिर ये जो कैरेक्टर्स है ना इनके बारे में बात करें। और सबको कहना है ना चंदर बड़ा ही कंफ्यूज कैरेक्टर है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। कहीं 8 साल तक कोई किसी के लिए उसी तरह का प्यार वापस रख सकता है और 8 साल पहले कोई इसको छोड़ के चला गया है और उसके बाद वो वापस आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसी ही कुछ चर्चा हम कर रहे थे हमारे कॉलेज के साथ। बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो अगर आपने भी ये शो देखा है या देखना शुरू किया है तो बताइए आपके क्या विचार हैं, चंदर कन्फ्यूज है, प्रीति सही है या सुधा सही है।

रक्षाबंधन आ रहा है। जी हाँ, रक्षाबंधन आ रहा है, आ गया है, बस कुछ दिन और बचे हैं। तो रक्षाबंधन पर फन एशिया और चौक टॉक कैसिनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट आपसे आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू हियर योर मोस्ट मेमोरेबल और अनफॉरगेटेबल मेमोरी विथ योर ब्रदर और सिस्टर। आपको करना है बहुत सिंपल सा काम, फोन उठाना है, व्हाट्सएप एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है उस मेमोरी के साथ और भेजना है 214-837-7147 पे। एंड यू कुड विन एक्साइटिंग प्राइजेस, डेली प्राइजेस। इसमें से डाइनिंग एक्सपीरियंसेस हैं, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौक टॉक कैसिनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट। तो कंप्लीट डिटेल्स है हमारे सोशल मीडिया पेज, फन एशिया के सोशल मीडिया पेज पे अवेलेबल है। जस्ट गो देयर, क्लिक एंड चेक। एंड यस, चौक टॉक कैसिनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए यू शुड बी 21 और ओल्डर। टू टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। गानों की फरमाइश बहुत सारी आ गई है, हर तरह के गानों की फरमाइश आ गई है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 5 बजे के पहले आपकी फरमाइशें पूरी करके ही जाऊं यहाँ से। फिलहाल हम बात कर रहे थे क्लोजर्स की, कि क्या एक रिलेशनशिप में क्लोजर इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी कॉलर साहिबा का फ़ोन आया था, बोला यार है क्लोजर इम्पॉर्टेंट, आज 25 साल बाद भी मुझे वो क्लोजर चाहिए, मैं उसका वेट कर रही हूँ और मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला है। तो भाई, एक हमारे कॉलर का कहना है कि क्लोजर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड आई पर्सनली बिलीव यस दे आर। यू नीड टू नो द रीज़न why somebody just walked out of your life. So closures are really important and we are talking about a very famous show right now, jiske sequel ka wait kar rahe hain, jo jaldi hi aane wala hai aur usi ka gana aapke liye.

The Pakistan Society of North Texas presents Quaid Mela. तो जी हाँ, एक spectacular celebration के लिए तैयार हो जाइए North Texas वालों. Pakistan Society of North Texas लेकर क्या आ रहा है Quaid Mela 2026, a celebration of heritage, culture and community. Enjoy live music, delicious food, shopping, cultural festivities and family fun for all ages. Live performances by Raga Boys. Join us Saturday, August 22nd from 3 p.m. to 11:45 p.m. at South Fork Ranch in Parker, Texas. Doors open at 2 p.m. and sabse achhi baat, parking free hai, entry free hai, bilkul free hai. Bring your family, friends and come and celebrate at Quaid Mela 2026. Media partner Fun Asia 104.9 FM. और शो को आगे बढ़ाते हैं. बहुत सारे गाने लाइनअप करके रखे हैं हमने आपके लिए, आपकी फरमाइश पर. तो भाई याद दिला दूँ, राखी आ रही है, 12 दिन ही बचे हैं, जल्दी से यार राखी भेज दो. नहीं भेजी है, मतलब पहले का टाइम था कि हम पोस्ट से राखियाँ भेजा करते थे. मतलब मेरे कज़न तो भारत के ही आसपास थे, तो भारत में थे या भारत के आसपास थे, तो हम भेजा करते थे राखी, चिट्ठियाँ लिखा करते थे, चिट्ठी लिख करके ना राखी भेजा करते थे. तो स्पेशल करो कुछ इस बार. इस बार हाथ से लिखी हुई चिट्ठी ना, अपने जज्बातों को कागज़ पे डालो और वो चिट्ठी अपने भाई बहन को भेजो, चाहे वो बगल में ही क्यों ना रह रहे हो. जाके बगल में मेल बॉक्स में भी डालना है ना, जस्ट राइट योर हार्ट आउट. एक बार कोशिश करो. चैट जीपीटी की आदत पड़ गई, मतलब छोटा सा लाइन लिखने में भी उसकी मदद ले रहे हैं. क्या ही ज़माना आ गया है. हाथ से चिट्ठी लिखो. और भाइयों को बोल रही हूँ, अगर ऐसी चिट्ठी आ जाए ना, संभाल के रखो. These are the real treasures of life that you can cherish. तो भाई राखी भेजना मत भूलिए अपने भाई बहन को. राखी जल्दी ही आ रही है. फिलहाल ये प्यारा सा गाना आपकी फरमाइश पर.

It was this beautiful track from the movie Sayyara और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे और स्टूडियो में बज रहे हैं 5:53। 53 मतलब 3:53 ऑन द क्लॉक एंड यू लिसनिंग टू आयुषी और वक्त ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, हम भी आपसे बातें करते रहेंगे और आपके कॉल्स लेते रहेंगे, आपकी फरमाइशें लेते रहेंगे। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने लाइनअप करके रखे हैं और क्योंकि मैं मुसाफिर कैफे पे चर्चा कर रही थी, एक रिक्वेस्ट उसकी भी आ गई है, मुझे भी इस सीरीज़ के गाने बड़े पसंद आए जो अभी तक सुने हैं मैंने, इंस्टाग्राम पे सुनते आ रही हूँ, दे आर अमेजिंग। और इंस्टाग्राम से याद आया कि यार मेरा भी प्रोफाइल है बिहारी मॉम इन अमेरिका, हम हैं बिहारी और हम बन गए हैं मॉम, सो या यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर माई बग बग गप शप एंड माई बातें थ्रू सोशल मीडिया एज वेल, अगर इसके बाद भी आप मुझे सुनना चाहें तो। और आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं आयुषी भूषण के नाम से। तो चलिए गाने की तरफ चलते हैं, अगला गाना आ रहा है मुसाफिर कैफे से, फिर से याद दिला दे रही हूँ अभी एक घंटा है मेरे पास, मैं और फरमाइश ले सकती हूँ, कुछ गाने लाइंड अप हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9722355555 पर। क्लोजर्स की बात कर रहे थे तो हमारे कॉलर ने कहा कि क्लोजर्स सिर्फ मतलब यू नो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में क्लोजर नहीं होता यार, बहुत से हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं, दोस्ती में भी ऐसे कई बार खटास आ जाती है, कुछ लोग ना आपके लाइफ से बिना बोले एग्जिट मार देते हैं, कुछ कन्फ्यूजन के कारण, कुछ यहाँ वहाँ की गॉसिप्स के कारण हो जाता है, बट वी शुड टॉक इट आउट। आई थिंक हैविंग ए डायलॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेम डज माई कॉलर थिंक। तो हमारी यही चर्चा हो रही थी अभी इस गाने के दौरान कि क्लोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं तो उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बात करके कोई हल नहीं निकल सकता है, हल ना निकले कम से कम सामने वाले को पता तो होना चाहिए कि उसकी गलती क्या थी, या उसकी गलती नहीं थी तो हुआ क्या, हुआ क्या जो इतनी दूरी आ गई, इतनी खटास आ गई कि रिश्ता ऐसे पल में टूट गया। सोचिए इस बारे में, क्लोजर्स इंपॉर्टेंट है, It's not always in terms of प्यार मोहब्बत दोस्ती रिश्ते, घर में आपस में खटास हो जाती है, कई बार भाइयों बहनों में ऐसी खटास हो जाती है कि सालों तक बात नहीं होती है, बट क्या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हम रिश्ता खत्म कर दें? Yes, so thinking about this in the studio and you can think with me, call me, discuss with me and I can share your stories and make stories out of it. तो चलिए गाना आपके लिए,

0: Myself, unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye million dollar property bhi.
1: Hi, this is Hussain Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
2: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender. NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
3: Heere moti main na chahu.
4: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
5: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan kal kya ho, kisne jana.
6: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaizerway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
7: Mere kal wale khane mein dosa. आने वाले खाने में डोसा।
6: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
8: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
6: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 और कस्टर जंक्शन.
9: ये तारा वो तारा हर तारा.
6: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
10: Floors clean.
11: Check.
10: Windows clean.
11: Check.
10: Kitchen clean.
11: Check.
10: Air ducts clean.
11: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
12: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
14: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
6: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
16: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी। जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
19: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
20: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
21: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
20: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
21: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
20: सच में सब संभाल लेंगे?
21: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-877.
22: Tracks that put you on the right track.
23: हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पे। और हमारे बीच काफी लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है फंडिंग का। तो आज हमारे साथ फोन लाइन पर है एक SBA लोन एक्सपर्ट जो लोगों को बिजनेस परचेज, फ्रेंचाइज स्टार्टअप्स और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ऑप्शंस समझाने में ना हमारी हेल्प करेंगे। और हाय शाहिद, कैसे हैं आप?
24: I'm doing great, thanks for having me.
23: Yeah. तो आज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बिजनेस लोन अप्रूवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्रेडिट स्कोर, कोलैटरल या कैश फ्लो?
24: Most people assume कि उनको क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए अगर बिजनेस खरीदना है, तो ये बहुत कॉमन परसेप्शन है। वी हैव टॉक्ट अबाउट दिस ऑन एयर सेवरल टाइम्स एंड आई लाइक टू टॉक अबाउट इट ओवर एंड अगेन, सो मोर एंड इट गेट्स टू मोर एंड मोर पीपल। अगर आप बिजनेस खरीदना चाह रहे हो, आप फ्रेंचाइज खरीदना चाह रहे हो या आप मे बी आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाह रहे हो, मेनी पीपल अज्यूम दैट आई हैव टू हैव द बेस्ट क्रेडिट स्कोर एंड देन ओनली देन आई कैन गेट अप्रूव्ड, बट That's not the number one priority. If lender is looking at your file, या underwriter आपकी file देख रहा है और आप mainly bottom line what they are looking is the at the cash flow of the business. जो business आप खरीद रहे हो, how much revenue it is generating? Can it support the loan payment? जिस जो amount loan आप मांग रहे हो, क्या उस business में इतना revenue है कि वो loan को support कर सके? सेम रूल अप्लाइज टू अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, और चाहे भले आपका एक्टिव बिजनेस नहीं, आप एक पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, क्या वो जो रेंटल प्रॉपर्टी के लिए आप जो लोन मांग रहे हो, कैन इट सपोर्ट द लोन पेमेंट? एज सिंपल एज दैट। सो डोंट वरी अबाउट द क्रेडिट स्कोर। वी हैव एसेट बेस्ड फंडिंग ऑप्शन, वी हैव फंडिंग ऑप्शन वेयर वी आर लुकिंग एट जस्ट द कैश फ्लो, सो इवन इफ योर स्कोर इज लो वी कैन स्टिल हेल्प यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज that you need not have any derogatory items, koi negative cheez, collection, bankruptcy, agar ye sari aapke credit mein nahi hai, then we can help you. At the same time, existing business owners ko kaafi time working capital chahiye hota hai, expansion ke liye paisa chahiye hota hai, or for whatever reason, if an existing business owner is looking for funding, they think ke I have to have a very solid credit score, otherwise I won't qualify. If you had an 800 score, but if your business is not generating enough revenue to support the loan payment, then that 800 score is not going to help. But at the same time, agar aapka score, let's say 630, 640 hai, but aapka business enough income generate kar raha hai ki jo us loan jo aap maang rahe ho, uski payment ko support kar sakta hai, then a low score is not going to be harder. Each scenario is different. We help with SBA loans, we help with conventional loans, we help with bridge funding, we help with asset based funding, we can help you with a HELOC or HELOAN where you can tap into the equity of your residential as well as your commercial property. So whatever may be your scenario, it's not like one size fits all approach. Each scenario is different. I encourage call one on one. Do not assume ke आपकी एक शायद कैश फ्लो का इशू है तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा, क्रेडिट का इशू है, आपके पास कोलैटरल नहीं है, देन वी कैन कम अप विद सम अदर ऑप्शन। सो डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो वी माइट बी एबल टू फाइंड अ वे टू हेल्प यू गेट योर फंड्स।
23: ओके, परफेक्ट। तो इसी बात पे जल्दी से अपना वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमारे लिसनर्स को दे दीजिए, सो इफ यू नो जस्ट इन केस दे वांट टू कॉल यू दे कैन डायरेक्टली
24: sbaloanexperts.com or they can reach me directly on my direct line 817-786-3338, 817-786-3338.
23: Thank you so much for coming on air and guiding our listeners. Thank you, sir.
24: Thanks for it.
23: तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, गानों की लाइन लगा ली हमने और अगला जो हमारा कुछ टाइम है ना, सिर्फ और सिर्फ फरमाइशों वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, लेकिन हमारे कॉलर्स ने रिक्वेस्ट किए हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जल्दी से उन गानों को प्ले करूँ। तो चलिए अगला गाना, जो लोग मेरी बातों में उलझ गए हैं ना उनके लिए ये गाना।

तो अच्छा भाई, डैलस वालों आप तैयार हो जाइए एक अनफॉर्गेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए. जी हाँ, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट. एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन सैटरडे सितंबर 26th एट 8:30 PM at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite song, that iconic voice, all live. Tickets available at Ticketmaster. For more information, you can call 855-360-SHOWS. I'll repeat it. It's 855-360-SHOWS. Revolution Sonu Nigam Live. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते. जैसा कि मैंने कहा, ये सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ फरमाइशों का है, और फरमाइश आई है हमारे अपने पटनावासी की तरफ से. तो विजय जी ने कॉल किया था और एक बहुत ही प्यारा सा गाना अपनी बहन के लिए डेडिकेट किया है. तीन भाइयों में एक प्यारी सी बहना हो तो उसके लिए गाना तो बजता है. और याद दिला दो, राखी आ रही है, नहीं भेजिए भेज लो. और भाई मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस बार ना अपनी राखी में एक हैंड रिटन नोट डालना मत भूलना, ठीक उसी तरह जैसे हम पहले डाला करते थे, हाथ से चिट्ठी लिखते थे. मुझे आज भी याद है, मम्मी लिखवाती थी बैठा करके, और सबसे पहले उस पर लिखवाती थी, प्रिय भैया सादर प्रणाम.

0: अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड अ ब्यूटिफुल रिक्वेस्ट. मेरे पटना वाले कॉलर थे भाई, तो इनकी फरमाइश तो पूरी करनी थी. और भी गाने हैं जो लाइन अप करके रखे हैं और आपको सुनाएंगे. तो फिलहाल मेरी कॉलर का फोन आया, प्रियंका, एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू नो मेकिंग योर राखी अ लिटिल स्पेशल विद अ हैंड रिटन नोट. एंड शी जस्ट टोल्ड मी दैट आपने बात बोली और मुझे याद आया कल ही मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के थ्रू इंडिया राखी भिजवाई है भाई के लिए. वो आई हुई थी एंड मैंने वो हाथ से चिट्ठी लिख के डाली. बहुत कुछ लिखा, पहले लगा कि यार क्या लिख दिया, पर लिखा लिखो यार, मन की बात बोलो. ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ना ये फालतू के ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो जो हाथ से चिट्ठी पर्सनली जाएगी ना भाई को या बहन को भी यार, तोहफे में भी गिफ्ट डाल के मतलब चिट्ठी डाल के भेज सकते हो, बहुत मज़ा आएगा. तो एक टाइम के बाद मिस करोगे भाई बहन से. हम लोग दूर हो गए हैं, एक तो हम लोग प्रदेश में बैठे हैं और इतना मिलना नहीं होता. जिनके भाई बहन यहाँ पर साथ में हैं दे आर सो लकी, जिनकी फैमिली साथ में है दे आर सो लकी. मैंने एक बात अभी कुछ दिन पहले कही थी, बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था मेरे सोशल मीडिया पर. बहुत लोगों ने मुझे बोला चली क्यों नहीं जाते हो. हम मैंने बस इतना सा कहा था यार कि सब कुछ है फिर भी कुछ मिसिंग है यहाँ पर, और वो मिसिंग है परिवार. हम जिसके परिवार यहाँ पे नहीं है, जिसके भाई बहन मम्मी पापा नहीं, कभी कभी कमी खलती है. और मेरे सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी हो गई भाई, बहुत लोगों ने डांट लगा दी मुझे, फिर मैं भी चुप हो गई. छोड़ो क्या ही करें, अब चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, मेरी बकबक ऐसे ही चलती रहेगी. तो फिलहाल बात करते हैं मिराज लाउंज की. सो डैलस, इफ यू आर लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट फेवरेट हैंग आउट, इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस मिराज लाउंज. Enjoy premium hookahs, delicious bites, handcrafted cocktails, live music, and exciting DJ nights all under one roof. And here's the best part, Happy Hour runs Monday through Thursday from 11 a.m. to 6 p.m. featuring hookahs starting at just $24.99 and shots only for $4.99. Plus, don't miss the fun with ladies night and college night. Visit Mirage Lounge on McKinney Ranch Parkway. Because miracles happen at Mirage. और आज एक सिंपल सा सवाल जो मैं पूछूंगी अभी उसका जवाब दीजिए और आपको $20 का एक डिस्काउंट कूपन मिल सकता है विद अ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $20. यस यू कैन डू दैट. तो जल्दी से फोन उठाइए, स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. ये गाना प्ले कर रही हूँ, बस आपको बताना है कौन से फिल्म का गाना है. जल्दी से कॉल करिए और मिराज लाउंज की तरफ से ये $20 का ऑफ लेके जाइए.
1: ओया लिटिल सैड

0: सो नाउ इट्स टाइम फॉर आवर गिव अवे. मिराज लाउंज की तरफ से एक और गिव अवे है और आपको एक सिंपल से सवाल का जवाब देना है और आप जीत सकते हैं 20% ऑफ विद अ मिनिमम बिल, मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50. तो चलिए बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फुर्ती दिखानी जनाब. नंबर है स्टूडियो का 9722355555. फ़ोन उठाइए और सवाल पूछने के पहले कॉल मत कर दीजिएगा, ऐसा भी हो जाता है मेरे साथ. तो अगला गाना लेकर के आ रही हूँ, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही नया सा गाना है, बिल्कुल नई वाली फिल्म का है. तुरंत पहचान जाएंगे आप, फ़ोन उठाइए और कॉल करिए. ये रहा गाना, फिल्म का नाम बताना है आपको बस, और कुछ नहीं.
1: तो वैसे ही लगेंगी मलिका.

बड़ा ही प्यारा गाना है यार। और इसमें ना, इस गाने में जब वो लाइन आती है ना, कहाँ से लाई हो शो खदाएं, मजा आ जाता है। मतलब बहुत ही प्यारा लगता है उस पॉइंट पे, गाना और खूबसूरत हो जाता है। चलिए, हमें हमारे दो विनर्स मिल गए हैं आज के, दोनों के लिए एक बार तालियां बजा दें जोर से। पहले श्रद्धा बसेरा एंड द सेकेंड वन इज मिस्टर विजय रेडिवारी। तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। और आप जीत गए हैं मिराज लाउंज की तरफ से $20 ऑफ विद अ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50। मिराज लाउंज जाइए और खाना पीना सब कुछ एंजॉय करिए यहाँ पे। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। यार समय हो गया जाने का, मन नहीं कर रहा जाने का। ऐसे लग रहा है कि अगले 2 घंटे भी मैं ही बैठ जाऊँ, पर आप बोर हो जाएंगे मेरी आवाज़ सुन सुन के। अगले आ रहे हैं हमारे मारविन दास जी, तो उनका अगला 2 घंटा उनका है, वो नहीं लेंगे हम। बस हम आपको आज एंटरटेन करेंगे और फिर मौका मिला तो आ जाएंगे स्टूडियो। यार हम तो ऐसे ही भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, और पहुँच जाते हैं स्टूडियो आपको एंटरटेन करने के लिए। वैसे आप सुन रहे थे अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे। और अगर आप मुझे यहाँ के अलावा कहीं देखना और सुनना चाहते हैं तो बिहारी मॉम इन अमेरिका को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे है तो वहाँ आयुषी भूषण को फॉलो कर लीजिए, और मेरी बक बक पटपट चटपट सुनते रहिए। फिलहाल ये बहुत प्यारा सा गाना है हमारे एक लिसनर जिन्होंने कल कॉल किया था, और उनको कहा गया कि आपको हिंदी गाना बजाइए तो हम प्ले करेंगे। तो वो बहुत ही मुश्किल से ढूंढ के ये हिंदी गाना लेकर के आए थे जो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था। सो हियर्स दिस ब्यूटिफुल ट्रैक, इसको सुनिए और मुझे आज के लिए विदा दीजिए। हम आपसे फिर जल्द ही मिलेंगे जब भी मौका लगा। तो आज के लिए बाय बाय एंड यस, हैव अ हैप्पी वेंसडे। आधा हफ्ता निकल गया है, इसी बात पे खुश हो जाइए और इस गाने का मजा लीजिए।

0: MyMortgage.com. Number restrictions apply. Equal housing lender. NMLS 334616. Division of Brazos National Bank.
1: Breaking news. Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: तीन पे क्यों अटक गया?
8: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
9: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
10: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
11: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
12: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
13: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
14: इस रक्षाबंधन चौक टॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौक टॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
13: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

अखियों से गोली मार दी। देखिए ऐसा होता है, ये वैसे मैंने रीमिक्स लगाया है, लेकिन मुझे पता है जैसे ही ये गाना लगता है याद आ जाते हैं गोविंदा और रवीना टंडन। एंड दैट इज द मैजिक विद ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल इतना अच्छा है, नंबर वन है, नंबर वन हीरो ने किया है इसके ऊपर काम। एंड इट वॉज सच अ कैची, ऑब्वियसली गाना तो है ही बट डांस। तो ये मैंने रीमिक्स लगाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खाली मैं ही नहीं, आप बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो 90s और अर्ली 2000s के एरा में पहुंच गए। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अनु जी ने कॉल किया और उन्होंने कुछ उसी वक्त का गाना निकाला। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस राइट, हमारी मेमोरी जो है वो एसोसिएशन से बनती है। जब आप कोई एक चीज सुनते हैं तो आप उसके एसोसिएशन से कहीं और मेमोरी में पहुंच जाते हैं, और ऐसे ही फुदक फुदक के अनु जी ने गाने की करी है रिक्वेस्ट। फिलहाल बताना चाहती हूँ दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज। योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज। जी हाँ, ड्रीम होम मॉर्गेज का यही है वादा कि आपकी पसंद का, आपके जो ख्यालों में जो घर है वो आप अफोर्ड कर सकें। सिंस 1998 ये काम कर रहे हैं, मतलब ये इनको 25 साल से ऊपर हो गए, 28 साल हो गए टू बी एग्जैक्ट। सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री एंड दे हैव टर्न होम ओनरशिप इन टू रियालिटी विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस। और ये आपको प्रोवाइड करते हैं स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। सबसे अच्छी बात है कि खाली टेक्सास ही नहीं, दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 states। कहीं बाहर टेक्सास के आप खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे लिसनर्स टेक्सास के बाहर भी हमें सुन रहे हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना, जहां जहां ब्रह्मांड है वहां फनिशिया है, जहां जहां इंटरनेट है वहां फनिशिया है। सो यस, इफ यू आर आउटसाइड टेक्सास यू कैन स्टिल कॉल देम, एंड देयर एक्सपीरियंस्ड टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस टेलर्ड टू योर नीड्स। चाहे वो आपका पहला घर हो, अपग्रेड हो, रिफाइनेंसिंग हो, आप अपनी होम ओनरशिप जर्नी शुरू कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल ड्रीम होम मॉर्गेज के साथ। नंबर है इनका 9722455626, या फिर विजिट कर सकते हैं dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स। आप वेबसाइट विजिट करिए इनकी, ड्रीम होम मॉर्गेजेस मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन। और ये गाना चलेगा जो गुप्त का गाना करा है, बड़ा गुप्त वाला गाना है, सीक्रेटिव गाना। अनु जी ने सिर्फ मुझे बताया है, लेकिन मैं अब आप सब लोगों के साथ ये सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, किसी को बाहर मत बताइएगा, सिर्फ ये पारो और आप सब लोगों के बीच की बात है, क्योंकि गुप्त राज की बात है। राज की बात एक और बताती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक होगा और उसके बाद पारो यहीं पर मिलेगी आपको 104.9 FM में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
2: Aji sunte ho?
3: Aji nahi, AG sunte hain.
4: The OG of tax planning, AG Fintax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
5: Jaane wo kaun sa desh jahan tum chale gaye.
4: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन.
6: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
9: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
8: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूड Enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
10: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
11: अरे यार, घर मिल गया.
12: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
13: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं, और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
12: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
13: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
14: Floors clean.
15: Check.
14: Windows clean.
15: Check.
14: Kitchen clean.
15: Check.
14: Air ducts clean.
15: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
16: बिल्कुल. जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
17: साथिया। कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
17: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
18: तुमसे मिलके दिल का है.
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
17: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क, इश्क है, इश्क, इश्क ये, इश्क, इश्क है.

ये पारो दिल के टुकड़े नहीं जोड़ने के लिए आती है, जो टूट गए हैं, बिखर गए हैं, उनको इकट्ठा करके हम जोड़ लेते हैं। वैसे तो दिल के टुकड़े होने नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानती हूं, लेकिन अगर ऐसा कभी है, किसी वजह से आप दुखी हैं, कुछ बात है, कुछ ऑफिस में हुआ है, एनीथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू, वेल लिसन टू अस, कॉल अस, शेयर विद अस, लिसन टू अ सॉन्ग दैट ब्राइटन्स योर इवनिंग, क्योंकि एक गाना जो आपको पसंद हो, जिससे मेमोरीज आपकी बहुत प्यारी जुड़ी हुई, दैट इज द क्योर टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सारी चीजें नहीं हम सुलझा सकते, कुछ लेकिन हल्के कर सकते हैं, भारी भरकम चीजें, भारी भरकम परेशानियों को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं, ये वादा है, दावा है पारो का। 9723555555 है स्टूडियो का नंबर। एंड विद दैट, एक गाने की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, और ऐसा होता है कि जब कोई एक 90s का या 2000s का कोई गाना रिक्वेस्ट करता है, देन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द ट्रेजेक्ट्री। ये मेरी आदत है, कुछ है मुझे कि आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दैट एक्टर, जो उस एक्टर्स हैं उस गाने में, एंड यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली फिल्म्स इन बिटवीन, एंड सो चूंकि मेरे पास गुप्त के गाने की रिक्वेस्ट आई, और जब भी मैं गुप्त के बारे में सोचती हूं, मैं काजोल, मनीषा कोइराला, और मैं सोचती हूं हमारे अब्रार के बारे में, फ्रॉम एनिमल, यू नो हु दैट इज।

This part of the show is brought to you by Shri Krishna. Shri Krishna Jewelers jewelry is more than an accessory. It is a reflection of tradition, elegance and timeless beauty. Agar aap koi function aane wala hai and you know bahut this is a festive season, a lot of people are buying gold, diamond jewelry, bahut shaadiyon ka season hai, ghar mein agar hai ya kisi parivar mein aap kisi ko gift karna chahte hain, kisi special ko kuch dena chahte hain. So Shri Krishna Jewelers is a place to go. From classic gold designs to sparkling diamonds and from intricate kundan to stunning polki collections, every prize is crafted to celebrate life's special moments. Now welcoming you at their new location. Unki new location ke baare mein bata deti hun, jo Main Street Frisco mein hai, which is 13154 Suite 220 Main Street Frisco. Shri Krishna Jewelers is we're crafting fine jewelry and cherished memories happen, and they have been doing that since 1967. Ashok sahab ki request aayi hai, aur अशोक साहब ने कहा कि ये गाना उनके दिमाग में कई दिनों से चल रहा है. ये मेरे साथ भी होता है और सच्ची बताती हूँ अशोक साहब, जब ये मेरे साथ होता है एंड वेन एवर, क्योंकि आई एम कवरिंग फॉर मार्विन टुडे एंड सो यस, जब भी मैं यहाँ आती हूँ कवर करने के लिए रेडियो पर, मेरे दिमाग में जो गाना चल रहा होता है वो मैं आप लोगों के दिमाग तक पहुँचा देती हूँ, यानी कि चला देती हूँ. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इफ़ यू हैव अ सॉन्ग जो आपके जहन में चले जा रहा है या कुछ है जो, जैसे कहते ना, कीड़ा है गाने का, कीड़ा वो चल रहा है, तो वो हमें दे दीजिए और हम उसको लगा देंगे हमारे स्टूडियो में और पूरा डैलस अब उसको सुनेगा. एंड दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग बिकॉज अ सॉन्ग दैट हैज बीन विद यू, नाउ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद द रेस्ट ऑफ द सिटी.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Ocho.
2: Hoko.
5: Ocho.
2: Hoko.
5: Ocho.
2: It's Hoko.
6: अरे बस भी करो यार।
2: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
6: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
4: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
7: हेलो टेक्सास परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आर यू स्ट्रगलिंग विद योर क्वालिफिकेशन? यस, वी हैव लोन ऑप्शंस फॉर यू, सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641।
8: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
2: लिया.
1: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया.
1: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
3: Visit www.senadainc.com today.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

0: वेलकम बैक, वेलकम बैक. घड़ी में हुए हैं 5:46. वेरी वेरी हैप्पी हम्प डे, यानी कि आधा रास्ता हो गया है इस वीक का और आधा है बाकी. एक्चुअली आधे से थोड़ा कम ही है, स्पेशली फॉर पीपल हु वर्क 5 days. 3 दिन हो चुके हैं हमारे काम के और अब सिर्फ 2 हैं बाकी. फ्राइडे को ज्यादा काउंट भी नहीं करते क्योंकि फ्राइडे की मस्ती थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है, तो यानी 1.25 दिन बचा है काम का एंड देन इट्स फुल मस्ती. लेकिन इफ यू लिसन टू फन एशिया, वेल इट्स 24/7 मस्ती. एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स. 972-35-5555 स्टूडियो का नंबर. कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई स्पेशल मेमोरेबल गाना, स्पेशली फॉर रिटर्निंग बैक फ्रॉम वर्क, समथिंग जिस सारी थकान दूर कर दे. गाने वैसे मैं वही लगाती हूँ जो मुझे ऐसे लगते हैं जो मेरी थकान दूर कर सकते हैं. एंड स्पेशली डांस नंबर्स आई एब्सोल्युटली लव टू प्ले और स्टूडियो में थोड़ा सा मैं भी थिरक लेती हूँ. एंड इफ यू आर नॉट ड्राइविंग एंड यू डोंट हैव टू फोकस इन एंड वॉच द रोड, तो थोड़ा सा आप भी हिलिए, इंजॉय करिए. स्पेशली इफ यू आर वॉचिंग अस ऑन funisha.net या फिर हमारी ऐप पर, यू कैन वॉच दीज सॉन्ग्स एंड यू कैन डांस विद दीज सॉन्ग्स. Funisha Radio, यू आर ऑन एयर.
1: Yeah, I want to request a song.
0: हाँ जी बोलिए.
1: That is from Gadar to Khairiyat song.
0: अरे एक तरफ आपने कहा गदर, दूसरी तरफ खैरियत, मुझे तो डर ही लग गया.
1: गदर से ही खैरियत होती है ना.
0: अच्छा अच्छा, देखिए गदर बिल्कुल सन्नी पाजी है तो फिर तो खैरियत ही खैरियत है, मतलब.
1: एब्सोल्युटली.
0: आपका नाम मैडम?
1: माय नेम इज मिनी.
0: मिनी, बड़ा प्यारा गाना है. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू.
0: Funisha Radio, यू आर ऑन एयर.
1: हाय.
0: बड़े प्यार से आपने हाय बोला, मुझे अच्छा लगा. हाँ जी बोलिए रिक्वेस्ट.
1: थैंक यू. आई वाज थिंकिंग हाउ टू से एक्सप्लेन इट. सो इट्स अ सनी देओल मूवी. द सॉन्ग इज लाइक कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए.
0: अरे मैं, आप बताइए कहाँ जाना है. लाख दुआएं अगर मुझे मिलती हैं तो मैं कहीं पे भी जाने को तैयार हूँ. और सन्नी पाजी की तो मतलब एक एक हाथ उनका इतना इतने दुआओं वाला है. सो यस, आपका नाम मैडम?
1: प्रतीक्षा.
0: प्रतीक्षा किसकी कर रही हैं? ये कॉल की पारों से बात करने की. देखे हो गई प्रतीक्षा पूरी आपकी. हमें कभी भी कॉल करिए, एवरी टाइम वी आर रेडी. थैंक यू सो मच. लगाती हूँ आपका गाना राइट आफ्टर दिस अदर सॉन्ग.
1: थैंक यू वेरी मच.
0: तो ये लगाते हैं मिनी का गाना, उसके बाद हम प्रतीक्षा जी का गाना लगाएंगे.

0: खैरियत पूछनी चाहिए, खैरियत से रखना चाहिए और खैरियत से हमारा शो सुनना चाहिए. फनीशर रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: हाउ आर यू?
0: आई एम गुड. हां जी रफीक जी,
1: आप सफी के लिए कोई गाना लगा दीजिए.
0: बिल्कुल जी, सफी के लिए लगाती हूँ. अभी एक दो रिक्वेस्ट है, उसके बाद सफी का ही नंबर आता है. थैंक यू सो मच. आपके लिए सफी एक चीज जरूर कहूंगी, बातें सितारों की.
1: थैंक
0: यू सो मच सफी. एक चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि बातें सितारों की मेरा सिग्नेचर शो है, कई सालों से मैंने करा है ये शो, और अभी थोड़ा सा ब्रेक पर है, बट आई हैव डन इट. जो हम मुझे कई टाइम से सुन रहे हैं वो जानते होंगे, 3 या 4 साल से तो मैंने करा है. तो सफी मेरे बड़े प्यारे लिसनर हैं और वो सुनते हैं, और वो कभी कभी मुझे कहते हैं कि आपने वो नहीं बोला. तो यस, इस तरह की बात हो जाती है ना, सनी पाजी की बात हो और 2.5 किलो के हाथ की बात नहीं हो तो मजा नहीं आता है. चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे बड़ी सीरियस एक्टिंग कर रहे हो या कभी फनी एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन वो 2.5 किलो के हाथ वाला डायलॉग लोग उनसे बुलवा ही लेते हैं. तो ऐसा होता है, एक सिग्नेचर चीज होती है आदमी की, वो उससे आइडेंटिफाई करता है या हो जाता है. जैसे कि मेरा है दोस्तों यारो मैं हूं पारो, और बातें सितारों की, क्योंकि सितारे जो हैं वो हम सब हैं, ये मैं जरूर बोलना चाहती हूँ. बिकॉज सितारे वो नहीं जो आसमान में रहते हैं, सितारे हैं आप, मैं, हम सब और हमारे आसपास हमारे चाहने वाले और जिनसे हम प्यार करते हैं. एंड विद दैट है मेरे पास, जैसे मैंने कहा, बड़ी सारी रिक्वेस्ट. अगली गाना चलाती हूँ मैं प्रतीक्षा के लिए.

ममता कुलकर्णी जी की दुआएं चाहिए तो आप ले आइए, इनका चुग गुम गया है। बट विद दैट एक छोटे से ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन गानों की मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स। सफी जी आपका गाना मैं लगाती हूँ राइट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। उज्मा जी आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट करी उसका मुझे कुछ, क्योंकि वो तो काफी पुराना गाना है, 90s के बाद के हम गाने चलाते हैं इवनिंग के मूड के, लेकिन मैंने सोचा ये अगला गाना मैं आपको भी डेडिकेट करती हूँ। और हमारे बड़े प्यारे डालस के कपल हैं सोहेल जी और मरियम जी, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा, उन्होंने भी मेरे ऊपर छोड़ दिया, उन्होंने कहा जो गाना मुझे पसंद है, और ये गाना मुझे पसंद भी बहुत है, और इस गाने के को जब मैं सुनती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों का ही गाना है सोहेल जी मरियम जी। और सोहेल जी ने एक बड़ी प्यारी बात करी कि जैसे ये गाना चलेगा उनका हाथ भी पकड़ लेंगे, और डेफिनेटली मैं यही दुआ करती हूं कि हमेशा आपका हाथ और साथ ऐसे ही बना

है कि ये आप लोगों का ही गाना है सोहेल जी, मिरियम जी. और सोहेल जी ने एक बड़ी प्यारी बात करी कि जैसे ही गाना चलेगा उनका हाथ भी पकड़ लेंगे. और डेफिनेटली मैं यही दुआ करती हूँ कि हमेशा आपका हाथ और साथ ऐसे ही बना रहे और आप मुझसे बात करते रहे, कॉल करते रहे. एंड विद दैट, उज्मा जी आपके लिए और सोहेल मिरियम जी आपके लिए ये गाना मेरी तरफ से.

थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वंडरफुल कॉल्स. आपको बताना चाहती हूँ बहुत सारे अमेजिंग इवेंट्स होने वाले हैं. पाकिस्तान सोसाइटी नॉर्थ टेक्सस का एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर सेलिब्रेशन होने वाला है. सो नॉर्थ टेक्सस गेट रेडी फॉर अ स्पेक्टेकुलर सेलिब्रेशन. द पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस प्रेजेंस कुएद मेला 2026, अ सेलिब्रेशन ऑफ हेरिटेज कल्चर एंड कम्युनिटी. आप इंजॉय कर सकते हैं लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल फेस्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर ऑल एजेस. और लाइव परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं रागा बॉयज की. ये कब होगा? ये होगा सैटरडे को अगस्त 22nd, व्हिच इज गोइंग टू बी दिस सैटरडे फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर टेक्सस. डोर्स खुलते हैं एट 2 PM एंड हियर इज द बेस्ट पार्ट. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि आप ये जानना चाहते होंगे कि टिकट कैसे लिया, क्या आप कैसे पार्किंग, एंट्री एंड पार्किंग आर एब्सोल्युटली फ्री. यस, दिस इज अ वेरी बिग इवेंट एंड दिस एंट्री एंड पार्किंग इज एब्सोल्युटली फ्री. आपको सिर्फ तैयार होकर पहुंच जाना है. ब्रिंग योर फैमिली, ब्रिंग योर फ्रेंड्स और सेलिब्रेट करिए कुएद मेला एट 2026, विच इज गोइंग टू बी दिस सैटरडे इन साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर टेक्सस. मीडिया पार्टनर योर्स ट्रूली फनीशिया, दैट इज 104.9 FM. एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. अगेन जो हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है उनको कहना चाहती हूँ, वैसे तो एक घंटे से आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द शो एंड आई एम कवरिंग टूडे अंटिल 7 PM एंड आई डू वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वेलकम टू द हम्प डे. आधे से ज्यादा हो गया है रास्ता, बाकी आधा से कम बचा है रास्ता. एंड विद दैट, मेरे पास थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट आई थी सफ़ी के कोई सफ़ी का कोई गाना जो सफ़ी को पसंद है, क्योंकि सफ़ी के कुछ गाने हैं जो मुझे अच्छे से पता है सफ़ी को पसंद है, क्योंकि सफ़ी हमारे एक बहुत प्यारे लिसनर हैं, बहुत सालों से सुन रहे हैं. तो ऐसा ही होता है, लिसनर और RJ का मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त आवाज़ का दिल का रिश्ता बन जाता है. तो इनफैक्ट एक और मैंने इंटरेस्टिंग बात बताती हुई, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सफ़ी के कुछ गाने हैं, स्पेशली जो अगला गाना है, ये सफ़ी ने कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया और मैंने चलाया और मुझे इतना ये गाना पसंद आ गया कि अब ये मेरा फेवरेट हो गया. सो रियली सफ़ी, ये गाना सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है. थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी प्यारी आप रिक्वेस्ट लाते हैं कि पारो भी इन्फ्लुएंस हो जाती है और ये गाना मुझे भी बड़ा पसंद है. गोज़ आउट टू सफ़ी.

0: कैरी का जूस नहीं पिया होगा ना, इससे लू लग गई होगी. मैं दिल्ली को बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ लू का बड़ा, ये लू के वैसे बड़े मीनिंग होते हैं, लेकिन ये जो दिल्ली वाला मीनिंग और ये जो मीनिंग है, दैट इज लग गई लू, दैट इज गर्म हवा. ये जो गर्म हवा होती है बहुत सारी जगहों में, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली, राजस्थान उस साइड में, एंड उससे गर्मी लग जाती है, और वो जो गर्म हवा होती है, दैट्स नॉट गुड फॉर यू. स्पेशली अगर आप बाहर जा रहे हैं, ऐसी गर्म हवा चलती है जो ये बहुत भयानक सी इन द मंथ ऑफ मे एंड जून. तो हम लोग कैरी का जूस पीते थे. कैरी होता है जो कच्चा आम होता है, कच्चे आम का आप जूस बना के पिए ना, तो उससे लू नहीं लगती, उससे आपकी तबीयत ठीक रहती है. तो इसलिए मैं कह रही हूं कि लग गई लू क्योंकि कैरी का जूस नहीं पिया. लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि एजी फिनटेक्स को से आप बात कर सकते हैं. क्यों, क्या होगा, बात करने से बताती हूं आपको. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स. दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. बहुत सारे लोग उनको ट्रस्ट करते हैं, एंड दैट इज द रीजन दैट दे आर सो फास्टली एंड फास्ट ग्रोइंग. वेदर यू आर एन इंडिविजुअल, चाहे आपका स्टार्टअप है या एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, एजी फिनटेक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर्ड टू योर नीड्स. चाहे बुक कीपिंग हो, पेरोल अकाउंटिंग हो, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलेशंस टू प्रोएक्टिव tax planning, tax compliance, financial reporting, business advisory services, ye sab ya isse bhi zyada, they help keep your finances organized, compliant and future ready. Ye trusted hain, ye efficient hain, ye committed hain aapki success ke liye, aapke liye. Sirf AG Fintechs is your partner in building a stronger financial future. Aap call kar sakte hain, number hai inka 4699742. फिर से बताती हूँ, 4699429888, और विजिट agfintechs.com. हमें कॉल करना चाहते हैं कि नहीं, फन एशिया पर पारों से बात करना चाहते हैं, कोई गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बताना. पहले ही चाहती हूँ मैं कि कई सारी मेरे पास रिक्वेस्ट है, शायद मैं एक और दो, एक या दो और रिक्वेस्ट ले सकती हूँ. देर आर अ फ्यू गिव अवेज एज वेल. और आज के दिन कुछ एक स्पेशल दिन है, वेंसडे है, हम डे है, यस, लेकिन एक और दिन है 19th August. वो क्या है वो तो मैं बता ही नहीं पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव सो मेनी बैक टू बैक रिक्वेस्ट प्लेइंग, और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग घर पहुंचने वाले हैं, तो मैं इंतजार नहीं कराना चाहती उनको कि पता चले वो घर जाके बोले, देखो पारो ने ना, मैं पूरा 15-20 मिनट गाड़ी चलाई लेकिन पारो ने मेरा गाना नहीं चलाया. ऐसे ऐसे ऐसी चीजें हम नहीं करते. मैं चाहती हूं जल्दी से जल्दी आपका गाना लगा दूं, ऑल दो आई नो थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि जब 4-5 रिक्वेस्ट होती है तो लाइन तो लगती है, राइट, क्यू के साथ ही जाते हैं हम लोग. तो अगली रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी प्रणय साहब की, उन्होंने कहा कोई सा भी गाना अरिजीत सिंह जी का लगा दीजिए. फनेशा रेडियो, यू आर ऑन ईयर. हाँ जी बोलिए, फनेशा रेडियो, यू आर ऑन ईयर.
1: हेलो, या आई नो, आई हर्ड यू हैव सो मेनी रिक्वेस्ट ऑनलाइन.
0: फेमस है जी, हम फेमस फनेशा जी.
1: यस, आई जस्ट वांट यू टू रिक्वेस्ट माय लक इफ आई गेट टू हियर इट ऑन दैट, बट
0: व्हिच सॉन्ग,
1: आई डोंट वांट टू मिस अ चांस. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग बाय दिलजीत दोसांझ, लहंगा.
0: लहंगा, आपका नाम मैडम?
1: दिनेश.
0: दिनेश,
1: yes,
0: Dinesh, very lovely name. Yes, I will be playing in a little bit. Your request and then yours. Sure, thank you.
1: Sure, thank you so much. I really appreciate it. You're doing great, amazing, and have a wonderful evening.
0: Oh, I'm so happy I took you on air. Thank you. Yeah, next thank time you. When you call, text me so I can take you on air. Thank you, Dinesh.
1: You're okay, welcome.
0: Thanks. Sure. Bye. तो चलिए अगला गाना, प्रणय जी ने कहा कि कोई भी अरिजीत सिंह जी का गाना लगा दिया. अरिजीत सिंह जाने जाते हैं, ही इज नोन फॉर अ सॉफ्ट मेलोडियस रोमांटिक गाना, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनकी रेंज बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जालिम आवाज है. सो लेट्स लिसन टू दिस जालिमा.

0: Hello listeners, I am Humaira Jamani from Sanada Inc. I'm here to talk about the bundle insurance. Many insurance companies offer discounts when customer bundle policies. If you get auto and home policy, they give you several discounts on that. Business and commercial auto policies also give you several discounts. Beyond savings, bundling often simplifies policy management and claim services. Contact me or my team at 972-863-7772. 972-863-7772. We will review the policies and we will provide you all the available options or the discounts that you can get on bundling up your policies. Thank you.
1: दोस्तों यारों मैं हूं पारो, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक में जाने वाले हैं बट लौट कर यहीं आएंगे. हैव योर रिक्वेस्ट सेफ विद मी एंड आई एम गोइंग टू प्ले देम राइट वन आफ्टर द अदर राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route. Rerouting.
4: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
5: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
4: क्यों?
5: क्योंकि फोर्ट वर्थ, केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
4: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
7: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
6: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
7: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
8: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: No, not another restaurant again.
9: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
8: मतलब great food, great drinks and great company. यानी कि मैं.
10: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
11: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
12: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
4: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
13: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की best filter coffee, family dinners to catering services with jain friendly options.
4: Visit San Idli Veg Restaurant at the highway 121 or Custer Junction.
14: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
4: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa, sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care, open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
15: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
16: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया.
17: Plano, Richardson and now at a brand new location. Sal's Hot Chicken coming soon.
18: Dallas, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए.
19: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026. A tribute to our heritage and a celebration for all. Enjoy live music, delicious food, shopping, cultural activities and family fun for every age.
20: Live performance by Raga Boys.
19: Saturday, August 22nd from 3 p.m. to 11:45 p.m. at South Fork Ranch in Parker, Texas. Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
21: Media partner, Fun Asia Network.
1: वेलकम बैक दोस्तों यारों, मैं हूँ पारो. बताना चाहती हूँ आपको हिमालयन बाजार के बारे में. जी हाँ, हिमालय के बारे में बहुत लोग जानते हैं. आई मीन हर कोई जानता है. बाजार तो खैर हम लोग जाते ही रहते हैं तरकारी वगैरह लेने के लिए, लेकिन डिस्कवर हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी सर्विंग दिस एंटायर साउथ एशियन कम्युनिटी विद ऑथेंटिक ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, प्रीमियम हलाल मीट्स एंड एवरीडे एसेंशियल्स. आप यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको एकदम गरम गरम समोसा और लाजवाब पानीपुरी. मैं कहती हूँ गोलगप्पे. दिल्ली वालों को पानीपुरी नहीं गोलगप्पे पसंद आते हैं कि चीज़ें नाम अलग है. मसाला चाय एंड कॉफ़ी वाई शॉप. आई मीन इट्स अमेजिंग. यू कैन शॉप एंड यू कैन एंजॉय इवनिंग स्नैक, चाय, कॉफ़ी. कंपेटिटिव प्राइसेस, फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $50 विद इन 5 miles एंड लॉयल्टी रिवॉर्ड्स विद एवरी परचेज. ये जो है दिस इज लोकेटेड जस्ट ऑफ हाईवे 360 साउथ एट 5103 मैग्ना कार्टा बुलेवार्ड ग्रैंड परेरी. हिमालयन बाजार एक ऐसी जगह है वेयर एवरी आइल फील्स लाइक होम. और एक दो बातें मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े सारे आज लिसनर्स से मेरी बात हो रही है. मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं वैसे देखिए लगता है कि शायद मैं बहुत बातूनी हूँ. आई लव टू टॉक बट आई एक्चुअली इवन मोर देन टॉकिंग आई लव टू लिसन. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं और मुझे सुनने का मौका मिलता है. एंड समबडी सेड दिस, वसीम साहब आपने एक बात बोली अभी और उन्होंने कहा कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ काफ़ी देर से आपको सुनता हुआ जा रहा हूँ और रास्ता कैसे कट रहा है पता ही नहीं चलता. सच में कह रही हूँ वसीम साहब, ये आपने जो बात बोली मुझे एकदम आंखों में आंसू से आ गए क्योंकि इट्स सो ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल. आपने ऐसे ही हल्के में बात कह दी लेकिन मेरे दिल को छू गई बिकॉज दिस इज सो ट्रू दैट अगर आपका अच्छा सफर अच्छा जा रहा है तो दैट इज सच अ वंडरफुल फीलिंग. और अगर किसी की वजह से थोड़ा सा भी सफ़र में कुछ स्मूथनेस आती है, कुछ प्लेजेंट सफ़र हो जाता है तो उस इंसान के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है. तो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी कि आप में से कुछ लोगों का सफ़र मेरी वजह से अच्छा हो रहा है. और जिनका नहीं हो रहा आप क्यों नहीं सुन रहे 104.9 FM, जल्दी चलिए चलिए सुनिए ताकि आप भी इंजॉय करें. एंड विद दैट मैं चलाना चाहती हूँ अगली रिक्वेस्ट. धर्मेंद्र साहब की आई थी काफ़ी पहले और वो अपनी हेमा मालिनी के पास जा रहे हैं घर पर, कह रहे हैं कई दफ़ा फ़ोन आ चुका है मालिनी का यानी कि उनकी मशूका का, तो वो मशूका गाना सुनना चाहते हैं. तो चलिए आपके लिए ये गाना.

व्हाट अ वंडरफुल गाना. और अगला गाना मैं अब कुछ गिव अवेज है मेरे पास, सो आई वॉन्ट टू एंड ऑल्सो टॉक अबाउट सम इवेंट्स. तो वक्त थोड़ा सा ही कैसे देखिए, आप लोग जब कहते हैं आपका सफर, अब आप ड्राइव कर रहे हैं तो बड़ा जल्दी बड़ा प्यारा निकल रहा है. मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मेरा तो बहुत ही तेज दौड़ रहा है ऐसा लगता है मुझे. मुझे लगता है अभी मैं आई थी, मैंने शो शुरू किया था और मुझे तीन चार बातें करनी थी, तीन चार में से एक बात भी शायद नहीं कर पाई हूँ मैं. और शो जो है खत्म होने वाला है 6:30 है 7 बजे तक. बट दैट इज द थिंग, आई एम एंजॉइंग इट सो मच लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स दैट यू वॉन्ट टू लिसन टू. और जब आप कॉल कर रहे हैं कि मेरा, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरा ये फनेशिया का जो छोटा सा प्यारा सा 5 से 7 का सफर है कैसे फिसलता जा रहा है, बट दैट इज अ गुड थिंग, दैट मींस यू आर एंजॉयिंग. जब वक्त आपको पता ना चले ना, इसका मतलब आप अच्छा एंजॉय कर रहे हैं. एंड द वक्त इज गोइंग फाइन, वक्त आपका अच्छा चल रहा है, क्योंकि जब पता चलता है तो बहुत भारी महसूस होता है. लेकिन अब जो महसूस होने वाला है वो बड़ी भारी भरकम आवाज है सोनू निगम जी की. सोनू निगम जी की मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव अटेंडेड हिज शो, कई दफा आ चुके हैं यहाँ पे, और इतना हाउसफुल होता है, सोल्ड आउट होता है, दूर दूर तक लाइंस होती हैं, अकेले ही होते हैं कई बार वो, मतलब ही इज नॉट इवन, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार होते हैं उनके साथ, वो अकेले बड़े कलाकार होते हैं, बाकी जूनियर सिंगर्स होते होंगे. बट द पॉइंट इज कि खाली उन्हीं के दम पर इतना जबरदस्त, मतलब डैलस में ट्रैफिक जम जाता है, ऐसी सोनू निगम साहब की आवाज है और कशिश है. आ रहे हैं फिर से सोनू निगम रेवोल्यूशन, सो गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन. ये कब होने जा रहा है? सैटरडे सितंबर 26 को 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. बहुत बड़ा बढ़िया इवेंट सेंटर है वहां पर, यह सितंबर 26 को. यू हैव टाइम, तो अभी आप नहीं कह सकते कि टिकट नहीं है, बिकॉज टिकट अभी तो अवेलेबल है, लेकिन कब तक रहेंगे कोई कुछ कह नहीं सकता, तो जल्दी जल्दी झटपट झटपट ले लीजिए. योर फेवरेट सॉन्ग्स, दैट आइकॉनिक वॉइस, ऑल लाइव. टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉल कर सकते हैं 855-360 शोज. रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव, एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर्स, योर ट्रूली फनेशिया नेटवर्क. एक चीज और सोनू निगम जी की बताना चाहती हूं मैं, बड़ी यूनिक है, शायद और कोई सिंगर और कोई कॉन्सर्ट इस कदर तक नहीं करता. मतलब बहुत सारे वेरिएशन बहुत सारे लोग करते हैं और इनोवेशन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ग्रेट सिंगर्स और परफॉर्मर्स हैं, लेकिन सोनू निगम जो करते हैं, जिस तरह का एवरी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, ही डज समथिंग सो यूनिक, या तो वो कुछ फ्यूजन होगा या समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब माइंड ब्लोइंग, कोई सोच भी नहीं सकता व्हाट ही डज. एंड ही डज वेरी यूनिक इन एवरी कॉन्सर्ट, जो उन्होंने पहले नहीं किया है. सो दैट इज सच अ मेसमराइजिंग थिंग. मुझे अभी भी याद है जब कुछ साल पहले, मैंने 2-3 साल पहले उनका अटेंड किया था, मतलब लोग हिल गए थे. दैट वॉज व्हाट ही डिड. क्या किया उन्होंने मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि आप टिकट लीजिए और खुद देखिए कि वो करते हैं क्या करते हैं, क्या बढ़िया करते हैं. एंड दिनेश जी, वक्त थोड़ा सा कम है तो मैं आपको ये गाना ही डेडिकेट कर देती हूँ, सोनू निगम जी का गाना लगा रही हूँ. वी गोइंग टू आल्सो डू सम गिव अवे राइट आफ्टर दिस.

क्या जबरदस्त लिरिक्स है, तुमको पाया है तो खोया हूँ, मतलब किसी को पा के आप खो गए हैं. एंड विद दैट आई वांट टू डू अ गिव अवे ऑफ समथिंग दैट यू एब्सोल्युटली लव. आई एब्सोल्युटली लव दैट इज फन पिज्जा किचन, सबका फेवरेट. फन पिज्जा किचन हैज लॉन्च्ड अ ब्रांड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइन अप. यस, मेक्सिकन इंस्पायर्ड, एंड दोज आरंट जस्ट पिज्जाज, ये खाली पिज्जाज नहीं है, दे आर लाइक फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा, फ्रॉम द फ्रेश फिएस्टा वेजी टू द फियरी पोयो लोको, द सी फूड पैक सीनियर कमरॉन, एवरी बाइट इज बोल्ड, एक्साइटिंग एंड मेड टू इम्प्रेस. अगर आप नहीं गए हैं या गए हैं लेकिन रिसेंटली नहीं गए हैं तो आप जरूर जाइए, और रिसेंटली गए हैं तो बार बार जाइए. हेड ओवर टू फन पिज्जा किचन एंड टेस्ट द न्यू ऑब्सेशन फॉर योर सेल्फ, न्यू फ्लेवर्स, न्यू ऑब्सेशन. ज्यादा बाकी डिटेल्स के लिए तो आप जानते हैं हमारी वेबसाइट विच इज फन पिज्जा किचन डॉट कॉम, आप जा सकते हैं. नाउ दिस इज योर चांस टू विन अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन बाय आंसरिंग अ सिंपल क्वेश्चन. एंड मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है लेकिन वो मैं चलाती हूं आफ्टर दिस सॉन्ग एंड आफ्टर गिव अवे, क्योंकि सोनू निगम साहब की बात हो रही है तो ये गिव अवे उन्हीं से रिलेटेड है, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दैट क्योंकि उनका बड़ा इवेंट आने वाला है. एंड नाउ दिस इज योर चांस टू विन $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. ये आप जानते हैं रूल, अगर नहीं जानते तो बता दूं, रूल सिंपल है. कॉल करना है आपको 972-35-5555. सवाल अभी पूछा नहीं है मैंने, पूछूंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले एक महीने में, इन द लास्ट वन मंथ, यू हैव नॉट वन दिस पर्टिकुलर गिव अवे. और दूसरा ये कि यू कैन एक्चुअली गो टू फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को टू कलेक्ट दिस, क्योंकि अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप किसी और को मौका दे दीजिए. एंड सवाल क्या है, सोनू निगम साहब का मैं गाना लगाती हूं, ये इनका बड़ा फेमस, ये रीमिक्स है लेकिन इसका जो ओरिजिनल गाना है, जैसे ये म्यूजिक चलेगा आप पहचान जाएंगे कि कौन सा ओरिजिनल है, ये उनका एल्बम गाना है. बहुत बहुत ज्यादा तहलका मचाया था इस गाने ने 90s में. आपको बताना है ये गाना कौन सी एल्बम का है और कौन से साल में रिलीज हुआ है. जी हाँ, जो इस गाने का टाइटल है वो एल्बम नहीं है, एल्बम का नाम कुछ और है, और ये कौन से साल में रिलीज हुआ है. सो दो है सवाल, छोटे छोटे हैं, एंड वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्बम, एक वर्ड का नाम है, एंड व्हाट ईयर वाज दिस एल्बम, ओरिजिनल एल्बम वाज रिलीज. लाइंस बजने लगी हैं, गाना मैंने चलाया नहीं है लेकिन लोग समझ गए किसकी बात कर रही है. पारो 972-35-5555. इस गाने के बाद एक छोटे से ब्रेक में चले जाएंगे, आप कॉल करते रहिए. आई विल अनाउंस द विनर आफ्टर द ब्रेक.

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
1: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांत, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
6: फ्लोर्स क्लीन
7: चेक,
6: विंडोज क्लीन
7: चेक,
6: किचन क्लीन
7: चेक,
6: एयर डक्ट्स क्लीन।
7: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
8: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
13: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
14: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं, और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 214-869-2668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

हेलो एंड वेलकम दोस्तों यारो, मैं हूँ पारो। द लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द शो, कैसे वक्त निकल रहा है, फिसल रहा है, ये क्या हो रहा है। बट विद दैट आई डोंट वांट टू से दैट, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। मेरा बड़ा फेवरेट दिन है, लेकिन आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, लेकिन आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करी हैं एंड आई कुड नॉट टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डे विच इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। बहुत नमन करती हूँ, जय करती हूँ, सल्यूट करती हूँ हमारे फोटोग्राफर्स जिनका पेशेंस इतना जबरदस्त होता है कि पारो जैसे लोगों को सहन करते हैं। बिकॉज आई लव नॉट टू टेक पिक्चर्स, बट आई लव व्हेन पीपल आर पेशेंट एंड दे टेक माय पिक्चर्स, क्योंकि एक से तो काम नहीं चलता ना, 50-100 तो होनी चाहिए। डिजिटल कैमरे ने बहुत आई थिंक हम सब लोगों का, जिन्हें अपनी फोटोग्राफी का शौक है या अपनी पिक्चर्स लेने का शौक है, तैयार होके वो बड़े अलग अलग जगह, स्पेशली अगर आप वेकेशंस पे जाते हैं तो मुझे तो बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे अलग अलग जगहों पर पिक्चर्स लेना। बाद में उन्हें देखे नहीं देखे वो अलग बात है। एंड I think this digitalized age has made it so much possible and cheap. नहीं तो मुझे याद है इतना बुरा लगता था जब इतनी सारी पिक्चर्स आप लेते थे और इतनी महंगी पड़ती थी, उनको डेवलप वगैरह कराना पड़ता था जब हम छोटे थे। तो यस, दैट इज अ बिग डे फॉर ऑल द फोटोग्राफर्स, सो इट इज अ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, सो बिग शॉट आउट टू देम एंड थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग आवर मेमोरीज। बहुत मेहनत करते हैं आप हम लोगों के मेमोरीज के लिए। एंड विद दैट एक गाने की आई थी रिक्वेस्ट, लेट्स लिसन टू द सॉन्ग। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देना चाहती हूं, आप लोगों को बताना चाहती हूं दैट दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय टेक्सास स्टार रिहैब। टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर इज प्राउड टू अनाउंस अवर न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिस्को लोकेशन, फ्रॉम ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरीज टू पेल्विक फ्लोर थेरेपी, मसाज थेरेपी, जीरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, रेड लाइट थेरेपी एंड फंक्शनल न्यूट्रिशन। ये सारी चीजें दे डिलीवर पर्सनलाइज्ड, वन ऑन वन करते हैं ये। देयर केयर इज डिजाइंड टू हेल्प यू परफॉर्म एट योर बेस्ट। ये ट्रस्टेड है बाई प्रोफेशनल एथलीट्स, एंटरटेनर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स, और ये ऐसा बिलीव करते हैं, ये इनका ऐसा मानना है दैट एवरी पेशेंट डिजर्व्स VIP treatment. Visit texasstarrehab.com to schedule your consultation today, conveniently serving Frisco and Irving. Texas Star Rehab and Performance Center. Move better, feel better, live better. And इसके बाद होगा एक और बढ़िया सी चीज, another better गिव अवे। फिलहाल बताना चाहती हूँ कि जो गिव अवे थोड़ी देर पहले हुआ था, जिसकी मैंने बात करी थी, बात कर नहीं पाई मैं विनर की, महेश कुमार है विनर, कंग्रेचुलेशन महेश जी, फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर। इनके पहले एक दो लोगों ने कॉल किया, आई थिंक दो लोगों ने कॉल किया बट सही जवाब नहीं दिया। बिजुरिया का जो ओरिजिनल गाना है उसकी एल्बम का नाम मौसम है, एंड इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोग इसको बिजुरिया समझते हैं या कुछ और समझते हैं, लेकिन इट इज मौसम। तो यस, एल्बम का नाम है मौसम और ये बहुत फेमस एल्बम थी। ये गाना तो बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट है, बिजुरिया सोनू निगम जी का, एंड ये 1999 में आई थी एल्बम। तो ये पूछा था मैंने कि एल्बम का नाम मौसम और ईयर है 1999। फर्स्ट पर्सन टू गिव द करेक्ट आंसर इज महेश जी, तो आपको हो मुबारक फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। और एक चीज बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया पर बहुत सारे लोगों ने सही जवाब नहीं दिया, तो आई थिंक टाइम टू ब्रश अप नॉलेज ऑन सोनू निगम एंड वॉच हिज शो, राइट?

टाइम फॉर अनदर गिव अवे. यस यस, आज मेरे पास दो दो गिव अवे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस डिलिशियस थिंग, दिस वंडरफुल गिव अवे और डिलिशियस. इसमें क्या चीज मिलने वाली है वो बताती हूँ. फिलहाल आपको बता दूं, अगर आपने नहीं हमारी चेक करी है फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम, और या फिर नहीं फॉलो करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं फनीशा रेडियो. यस, कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, सो यू कीप गेटिंग ऑल दीज अपडेट्स, गिव अवेज, ट्रिविया, बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं. सो स्टे कनेक्टेड विद अस इवन ऑफ एयर. और पारो के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्रिंसेस पारो 27 इंस्टाग्राम में और पारो कौशिक ऑन फेसबुक. लॉट ऑफ माई लिसनर्स, सम ऑफ आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद मी, बट अगर आप नहीं है तो यस, इट वुड बी ग्रेट टू बी कनेक्टेड ऑफ एयर एज वेल. फिलहाल अगला गिव अवे होको की तरफ से, HOCCO. यस, यू नो यू हैव फाउंड, यस यू नो यू हैव फाउंड अ ट्रूली आइकॉनिक फूड ब्रांड व्हेन जस्ट हियरिंग इट्स नेम ब्रिंग्स बैक अ फ्लड ऑफ मेमोरीज. यस, मेरे साथ तो यही होता है, स्पेशली व्हेन आई लिसन टू होको. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट होको हैज बीन फॉर जनरेशंस अक्रॉस इंडिया. नाउ इट्स हियर इन नॉर्थ टेक्सास. We cannot be luckier. Whether you have been craving their legendary chana puri, iconic sandwiches, flavorful curries, or the famous Hoko cold coco, ये तो बहुत ही बढ़िया होता है उनका, that people absolutely swear by. You don't have to wait for the next trip to India anymore. सारे हम इंडिया आप लोगों के लिए यहीं ले आए हैं. Visit Hoko at 2693 Preston Road, Suite 1000, Frisco, Texas 75034, and experience the authentic flavors that have made it one of the India's most loved फूड ब्रांड्स. एंड ये बहुत ही फेमस फूड ब्रांड है, और इसके फुल मेन्यू के लिए या फिर और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप विजिट करिए hoko.us. दैट इज HOCCO.us. कम हंग्री एंड लीव विद द टेस्ट ऑफ इंडिया. अब आप कैसे जीत सकते हैं इनकी यमी डमी, डमी तो नहीं बट यमी डिलिशियस, वेरी वेरी डिलिशियस, एंड दिस इज द रियल डील, दैट्स आलू टिक्की चाट. बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बिकॉज मैं दिल्ली को बिलोंग करती हूँ, और हमारे दिल्ली वालों को कभी आप आलू टिक्की चाट बोल देना, मतलब बस आई थिंक जन्नत मिल जाती है. तो इनकी जो फ्लेवरफुल आलू टिक्की चाट है वो बिल्कुल फ्री आपको कैसे होको से मिल सकती है, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. अब बात हुई है आलू चाट की, तो मुझे आलू चाट याद आ गई, यानी आलू चाट फिल्म याद आ गई. आपको मुझे बताना है, गाना चला रही हूं आलू चाट का, आपको मुझे बताना है कि इस फिल्म के लीड हीरो कौन थे. वेरी क्यूट चॉकलेट बॉय. 9723555555. द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आंसर इज गोइंग टू गेट दिस गिव अवे आलू टिक्की चाट फ्रॉम होको. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने ये पिछले एक महीने में नहीं जीता हो.

0: आलू चाट है, ये बहुत फनी फिल्म थी, फनीशा रेडियो यू आर ऑन एयर।
1: या आई वांट टू आंसर।
0: हाँ जी बोलिए।
1: दैट इज आफ्ताब शिवदासानी।
0: एब्सोल्युटली राइट, विनर मुझे मिल गया, बट थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग। फनीशा रेडियो यू आर ऑन एयर।
2: हेलो, हाय, मैं सईदा बोल रही हूँ।
0: हाँ
2: ये फिल्म चाट का गाना है, चाट, आलू चाट।
0: बिल्कुल जी, आलू चाट का गाना है और ये तो मैंने बता ही दिया था, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हेलो फनीशा रेडियो, बहुत सारे कॉल्स आए एंड यस, ऑलमोस्ट एवरीबडी, आई थिंक एक दो लोगों को छोड़ के एवरीबडी गॉट इट राइट। आफ्ताब शिवदासानी, द फर्स्ट पर्सन टू गिव द करेक्ट आंसर इज अतुल मिश्रा। अतुल मिश्रा साहब, मिश्रा जी आपको हो, उन्होंने कहा कि वो लखनऊ के हैं, तो बड़ा प्यारा शहर है लखनऊ। और आलू चाट वॉज अ वेरी फनी फिल्म, मुझे याद है तब भी मैंने देखी थी जब ये आई थी 2009 में। हिलेरियस फिल्म, उसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपने नहीं देखी और अच्छी मजेदार फिल्में आपको पसंद है तो आप जरूर देख सकते हैं 2009 की। और आलू चाट, जब भी मैं वो फिल्म देखती हूं तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे मैंने कहा, दिल्ली वालों की कमजोरी है आलू चाट। और आलू टिक्की चाट अगर बढ़िया वाली खाना चाहते हैं डैलस में, तो होको जरूर जाइए। और विद दैट आई डू वांट टू टेल दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। देखिए कितना टाइम लगता है अगर आप अपने डॉक्टर को देखते हैं, कितना वक्त लगाते हैं डॉक्टर आपके साथ, यू नो इट्स एवरीबडी हैज डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का ये मानना है दैट एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ये ऐसा मानते हैं दैट योर हेल्थ टेक्स

कितना वक्त लगाते हैं डॉक्टर आपके साथ, यू नो इट्स एवरीबडी हैज डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का ये मानना है दैट एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ये ऐसा मानते हैं दैट योर हेल्थ टेक्स टाइम. पैशन हेल्थ पे आप सिर्फ एक पेशेंट ही नहीं, यू आर फैमिली, फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ देयर कम्युनिटी. हमारी जो प्यारी सी कम्युनिटी है, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर है इसके लिए, एंड दे बिलीव दैट 30 मिनट्स is all it takes to complete your annual physical, chahe wo anxiety care ho, fibro scan for alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing ya fir aur kuch ho, annual physical all are available at Passion Health. Schedule your appointment today. Number hai inka 214-666-6259 to book your appointment. Passion Health primary care is what they believe is that your health is their पैशन. और इसके साथ मेरा ये प्यारा सा छोटा सा पैशन यहीं पर ख़त्म होता है बोलने का. वैसे ऐसी बात नहीं, घर जाके भी मैं बोलती रहती हूँ, सुनता नहीं है कोई, अलग बात है. पर उसमें क्या है, हम बोलते हैं, कोई नहीं है, सुने ना सुने. बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली लिसनर्स ऑफ डालस फॉर नॉट ओनली लिसनिंग बट ऑल्सो कॉलिंग एंड पार्टिसिपेटिंग एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम. और आप लोगों से फिर कभी होगी और मुलाकात. बट विद दैट आरजे पारो साइनिंग ऑफ, छोटा सा ही प्यारा सा गाना चलेगा एंड विद दैट I will see you next time. कुछ दो दो गाने क्यों चला दिए.

0: मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
6: Ocho.
7: Hoko.
6: Ocho.
7: Hoko.
6: Ocho.
7: It's Hoko.
8: अरे बस भी करो यार.
7: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
8: नाम Hoko हो या Ocho क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
9: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko. अब फ्रिस्को में वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं.
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं.
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं.
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
12: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए.